ओम शांति। बाबा हम सभी को कैसा देखना चाहता है कि जो भी हमें देखे हम उसे चलते फिरते फरिश्ते नजर आए। देखिए बाबा की कितनी श्रेष्ठ इच्छा हमारे लिए है, वैसी श्रेष्ठ इच्छा हम भी स्वयं के लिए निर्धारण कर लें तो जल्दी ही हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है। तो चलते फिरते फरिश्ते अर्थात जो सदा डबल लाइट रहते हों, जिनके चेहरे पे टेंशन की तनिक भी झलक दिखाई न देती हो, जिनका चेहरा सदा खुशी से भरपूर हो, प्योरिटी की दिव्यता जिनके ललाट पर दीप्यमान हो, और जो सदा योग युक्त रहते हों, जिनके कदम धरती पर पड़ ही न रहे हों, इसे कहते हैं फरिश्ता स्वरूप, जो यहाँ से पूरी तरह उपराम हो गए हों। तो हम स्वयं को तैयार करें कि हम चलते फिरते फरिश्ते बन जाएं, ताकि लोगों को देखने वालों को ऐसा आभास हो कि हमारे अंग अंग से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये सब होना ही है, क्योंकि अंतिम समय में सभी धर्मात्माओं को हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही बाबा का दिव्य संदेश प्राप्त होगा। हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा ही चारों ओर सबको सकाश प्राप्त होगी। इसलिए हमें अपना फरिश्ता स्वरूप बढ़ाते ही चलना है। देह का भान टूटता चले, देह की ओर जो आकर्षण है, अपनी देह में मनुष्य का सबसे अधिक आकर्षण होता है, यह आकर्षण नष्ट होता चले और हम उपराम होते चलें। साथ साथ अभ्यास भी करते रहें कि जैसे हम इस संसार में नहीं हैं, इस संसार से ऊपर हैं, इस संसार का निर्माण हमारे लिए हुआ ही नहीं, ये कलियुगी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो बाबा नया संसार रच रहे हैं। हमारा संसार तो सूक्ष्म लोक है, हमारा संसार तो मूल वतन है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें अपनी चलते फिरते भी बना देनी है। तो इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान का चिंतन निरंतर हम रखें। अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। इसलिए रोज मुरली सुनने के बाद हम मुरली से दो चार पॉइंट्स अपने साथ ले जाएं, जिनका हम चिंतन करते रहें। चिंतन का अर्थ है उन्हें हम याद करते रहेंगे। तो जिस चीज को हम स्मरण करते हैं उसका चिंतन हमारे अंदर स्वतः ही होता रहता है, और इस चिंतन से व्यर्थ की छाया हम तक आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब हमारा मन दूसरे सुंदर चिंतन में तत्पर रहता है तो व्यर्थ चिंतन की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम अपने लक्ष्य को भी इतना मजबूत कर दें कि दूसरों को देखने की हमें आवश्यकता न हो। जैसे कोई विद्यार्थी जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसको बहुत श्रेष्ठ पोजीशन लानी होती है, वो संसार की ओर कदापि नहीं देखता है, उसे तो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की श्रेष्ठ तमन्ना रहती है। हम भी अपने लक्ष्य को बहुत महान बना दें और उस लक्ष्य में इतने मग्न हो जाएं कि हमें और कुछ दिखाई न दे, हमें और कुछ सुनाई न दे, हमें हमारा और कुछ चिंतन रह ही न जाए, फिर देखो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप बनती है। तो आइए आज सारा दिन हम इस संसार से उपराम रहने का अभ्यास करें। ये संसार हमारे लिए नहीं है, चारों ओर के संसार को देखते हुए हम ऊपर देखें। हमारा संसार तो वो है, हमारा संसार तो स्वर्ग है। और अभ्यास करेंगे जैसे मैं आत्मा इस देह में हूँ ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, और फरिश्ते स्वरूप द्वारा
उड़कर ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता कभी आकाश में चला गया, कभी भिन्न भिन्न देशों के ऊपर चला गया और वहां जाकर सकास देने लगा। कभी मैं फरिश्ता सागर के ऊपर चला गया, पूरे जल को पवित्र वाइब्रेशंस देने लगा। और कभी चले गए हम फरिश्ते सूक्ष्म लोक में बाबा के पास, बाबा से शक्तियां लेने लगे, बाबा के साथ सैर करने लगा, बाबा के साथ घूमते हुए चारों ओर खुदा दोस्त के रूप में उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। आज सारा दिन हम फरिश्ते स्वरूप के ये भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे। ओम शांति।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं और वे उनकी सेवा भी करते हैं, परंतु आप देखते हैं कि कई बच्चे बड़े होकर संस्कारी, पावन, उच्चाशयी और चरित्रवान सिद्ध नहीं होते। शिक्षक चाहते हैं कि शिष्य महान बने, परंतु उनका भी यह मनोरथ और प्रयास सफल नहीं होता। गुरु यत्न करते हैं कि उनके शिष्य साधु स्वभाव के बने, और नेता भी चाहते हैं कि वे समाज का उत्थान करें, परंतु आज आप परिणाम देखते हैं कि ब्लैक मार्केट, मिलावट, रिश्वत, झूठ,

छल प्रपंच ही समाज के सूत्रधारी बने हुए हैं। चाहने पर भी माता पिता, शिक्षक, गुरु, नेता आदि आदि कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यह है कि उनके अपने जीवन में शक्ति, उच्च संस्कारों या महान चरित्र, अथक सेवा भाव या मानव स्वभाव आदि की कमी है, अर्थात वे इस कला में निपुण नहीं है। सबके कल्याण करने की कला तो केवल एक परमपिता परमात्मा में ही है। इसी कारण से उनका तो नाम ही शिव अर्थात कल्याणकारी है। उन्हें ही माता पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु और लोकनायक आदि संबंधों से त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव आदि छंदों द्वारा किया गया है, क्योंकि वे ही इन संबंधों को सामर्थ्य एवं सद्गुण पूर्ण रीति से निभाकर कल्याण करते हैं। उनके बाद मानव सृष्टि में साकार रूप में प्रजापिता ब्रह्मा ही ऐसे हैं जिनको जगत पिता, ज्ञान का आदि दाता, श्रेष्ठ गुरु आदि के रूप में भक्त लोग भी याद करते हैं, क्योंकि वे ही शिव के साकार माध्यम के रूप में जगत कल्याण का कार्य अथवा सेवा करने में कला कौशल संपन्न सिद्ध हुए। हमने स्वयं अनुभव किया है कि उनका हर संकल्प, हर वचन, हर कदम लोक कल्याण अर्थ होता है। इस कला वाले की पहचान कैसे की जाए? अब ध्यान देने पर आप देखेंगे कि दूसरों के कल्याण का कार्य तो वही कर सकता है जिसकी अपनी स्थिति उच्च हो। दूसरों की सेवा में वही सफल हो सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। अतः यह कला आत्मिक शक्ति और दिव्यता का सूचक है। यह कार्य वह कर सकता है जो इतना महान हो कि वह दूसरों का शुभ चिंतक हो, सबका भला चाहे। सचमुच जिसका मन सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प से ओतप्रोत हो, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, यही उसकी उत्कट अभिलाषा अथवा हृदय की वाणी हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह उसका केवल नारा नहीं विचारों का ताना बाना हो, वही कल्याण का कार्य करने में सफल सिद्ध हो सकता है। मैं सर्व के कल्याण का कार्य कैसे करूं? यह शुभ चिंतन निरंतर उसकी अंतरात्मा में ऐसा चलता ही रहे मानो उसका मन इन्हीं विचारों से निर्मित हो, दूसरा वह कुछ सोच ही नहीं पाता हो। अपकार करने वालों का भी उपकार करना है, निंदा करने वालों को भी मित्र बनाना है, कृतघ्न से भी घृणा नहीं करना है, बस सबकी सेवा, सेवा और सेवा ही करनी है, यही उसकी बात, यही उसका संकल्प हो। जिनकी सेवा करनी है उनको अपने मन रूपी नेत्र के सामने ला ला कर वह कहे, शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दो ताकि उसकी आत्मा भी जाग उठे और अपने जीवन को उच्च बना ले। वह उसके अवगुणों को न सोचकर उसके किसी गुण से उसको ऊंचा प्रेम से, आत्मीयता से निकट संबंध स्थापित करके हित वचन कहकर मित्र भाव से समझाकर उसका उद्धार करा ही डाले। देखिए कितनी बड़ी लगन, कितनी तेज रफ्तार और कितने बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। किसी में भगवान के प्रति लगन पैदा करने के लिए पहले अपनी लगन का पक्का होना जरूरी है। दूसरे को मग्न करने के लिए स्वयं मग्न होना आवश्यक है। अन्य को गति देने के लिए अपने में गतिमता होना नितांत आवश्यक है।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

सर्व का कल्याण करने की कला के लिए कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी है। इस कला के लिए मुख्य रूप से इन गुणों अथवा विशेषताओं का होना आवश्यक है। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन और शुभ कर्तृत्व, लोक संग्रहार्थ सतर्कता और अपने जीवन का निरंतर सुधार, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायित्व, हर्षोल्लासपूर्ण चेहरा, परिस्थितियों का सामना करने की सूझ, सामर्थ्य और सात्विकता, अटूट निश्चय, अदम्य हिम्मत और अथक कार्य प्रवृत्ति, उदारता, त्याग, नम्रता और निमित्त भाव, आदर्श जीवन, आत्मविश्वास और पक्की धुन। स्वाभाविक बात है कि जो सदा दूसरों का शुभ सोचता होगा, उसकी बुद्धि ही जन कल्याण की कोई योजना बनाने में तत्पर होगी और शब्द तथा हाथ कल्याण कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। पुनश्च जो दूसरों का कल्याण अथवा उत्थान करना चाहता है, वह सदा लोक संग्रह का ख्याल रखेगा, अर्थात यह ध्यान रखेगा कि मनसा वाचा कर्मणा उससे ऐसा कुछ न हो जिसे देखकर यदि दूसरे भी वैसा करने लगे तो उनका पतन हो अथवा अकल्याण हो। अतः वह आत्म उन्नति पर ध्यान देगा, अपने जीवन के बारे में सतर्क रहेगा, स्वयं की भूलों को सुधारता चलेगा और यदि कोई भूल हो तो खुल्लम खुल्ला उसे भूल मानेगा, ताकि दूसरे उसे गुण मानकर उसका अनुकरण न करने लगे। वह हर परिस्थिति में सात्विकता ही का प्रयोग करेगा, वरना अन्य किसी भी निकृष्ट उपाय से तो उत्थान हो ही नहीं सकता, नहीं दूसरों पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अतः उच्च लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह आत्मिक बल, प्रभु की सहायता और सद्गुणों के व्यवहार ही पर निर्भर करेगा और उसमें आत्मविश्वास को नहीं छोड़ेगा। फिर यह भी निश्चित है कि सेवा करने के लिए त्याग, उत्सर्ग और उदारता की आवश्यकता है, परंतु ये सभी गुण मनुष्य में योग द्वारा ही आ सकते हैं। जब कल्याणकारी परमपिता परमात्मा से बुद्धि की लगन लगी हो, तभी मनुष्य के मन में दूसरों का कल्याण करने की लगन पैदा होगी। उसके लिए कोई उपाय भी सूझेगा, सामर्थ्य और सफलता भी मिलेगी। जब मनुष्य देह भान छोड़ेगा, दिव्यता को ही प्रभु से प्राप्त संपत्ति मानेगा, तभी उसमें त्याग, उदारता, दानशीलता और सेवा भाव पनपेगा। तभी उसका जीवन निर्मल एवं उच्च भी बनेगा और वह कार्य क्षेत्र में उतरकर अपने सात्विक जीवन से दूसरे में सात्विकता को भरेगा। अतः इस कला को प्राप्त करने के लिए भी परमपिता परमात्मा शिव ही से योगी युक्त होना चाहिए। सदा उनकी याद में रहकर हर कार्य करने चाहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब और आगे चलते हैं नेतृत्व कला को लेकर। संसार में प्रायः लोग दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे बहुत सी भेड़ें आगे वाली भेड़ को देखकर उधर ही जाना शुरू कर देती हैं, जिधर वह आगे वाली भेड़ जा रही हो। ऐसे ही प्रायः लोगों का हाल होता है। वो रास्ता उन भेड़ों को अपने घर की तरफ या चारागाह की तरफ ले जाता हो या रेगिस्तान की दिशा में ले जाने वाला हो, वे इस बात पर सोच विचार नहीं करती। इसी प्रकार कई लोग कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालते, वे लकीर के फकीर होते हैं। जो रस्म रिवाज चलते आए हैं उन पर वे पुनर्विचार नहीं करते, गोया वे दूसरों ही की बुद्धि के बल पर चलते हैं। बहुत थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि रचनात्मक होती है। चीजों को अधिक आसान बनाने, वस्तु में नवीनता लाने, उसे अधिक उपयोगी बनाने, उसके सौंदर्य को निखारने, कम खर्च में भी चीज को गुणवत्ता देने की योग्यता और कला किसी विरले में ही होती है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से समाज, बहुत से देश दिनों दिन अवनति और गिरावट की ओर इस कारण गतिमान होते हैं कि वहां कोई अच्छा नेता नहीं होता, उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, कोई प्रगति का पथ प्रदर्शक नहीं होता। बड़ी बड़ी सेनाएं भी युद्ध में तब हार जाती हैं जब उनका नेतृत्व करने वाला कमांडर कुशल ना हो। परिवारों में भी फूट पड़ जाती है यदि उनको कोई मिलाने वाला, उनमें कोई वरिष्ठ व्यक्ति ना हो जो उन्हें प्रेरित करता रहे। अतः नेतृत्व कला तो ऐसी कला है कि उससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का अथवा देश और समाज का भला हो सकता है। परंतु नेतृत्व वो कर सकता है जो कोई नए विचार दे सके, नई योजना बना सके, नया मार्ग दिखा सके, मुर्दा दिल इंसानों में भी नई जान डाल सके और बिखरे हुए लोगों को एकजुट कर सके और उस संगठन को दिनों दिन बढ़ाता हुआ चला जाए। नेतृत्व वह कर सकता है जिसे व्यक्तियों की पहचान हो, जिसे ये मालूम हो कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कौन वफादार है, कौन धोखा दे सकता है, किस पर निर्भर हुआ जा सकता है और किस पर भरोसा करने में खतरा है, जिसके बारे में आम लोग यह कहते हैं कि वह काम का आदमी नहीं है। नेता उसको भी एक जिम्मेदार आदमी बना सकता है। वो सब में उमंग उत्साह लाकर एक नया जोश, नई जवानी ला सकता है। वो कभी पूर्णतः निराश नहीं होता, उसका अपना उत्साह अदम्य होता है। उसकी चित्त शक्ति यानी कि विल पावर फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होता है। वो न तो तोपों से डरता है, न पहाड़ों से घबराता है, न नदी देखकर रुक जाता है, न फिसलन देखकर घर बैठ जाता है, बल्कि जो लक्ष्य वो निर्धारित कर लेता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अपने आप ही साधन जुटा लेता है। साधन स्वयं उसके पास खींचे आते हैं, परंतु वो अपनी लग्न का पक्का होता है। वो खाली हाथ हो और कोई भी उसके साथ न हो तो भी वो एक झंडा लेकर चल पड़ता है और धीरे धीरे काफिला बन उठता है और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और ऐसा नारा लगाते हैं कि आसमान में गूंज उठे। कमजोर से कमजोर और डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी उसके बनाए संगठन में अब शक्ति का अनुभव करते हैं और कुछ कर गुजरने की सोचते हैं। और तो क्या, अपनी कमर कसकर सिर पर कफन बांधकर वो जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। तो इतना चमत्कार है नेतृत्व कला का।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बात कर रहे हैं नेतृत्व कला के बारे में, परंतु ऐसा नेतृत्व वो कर सकता जो न केवल लग्न का पक्का हो बल्कि मन का सच्चा हो, चतुर हो परंतु बेईमान न हो। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी साख है। ऊंचे आदर्श, श्रेष्ठ विचार, निस्वार्थ मन, कम खर्च वाली जीवन पद्धति, सबकी भलाई का दृढ़ संकल्प, सबको अपना बनाकर चलने की योग्यता, सबसे प्रेम और मधुरता का व्यवहार, अनुशासन और प्रशासन की योग्यता व्यक्ति को एक अच्छा नेता बनाती है। नेता को समय की पहचान होती है, कौन से अवसर पर क्या कहना और क्या करना है और किस प्रकार के भाव भाव प्रकट करने हैं, इस बात की उसमें सहज बुद्धि होती है। वह अच्छे अवसरों को अपने हाथ से टलने नहीं देता। यदि कोई भूल चुक हो जाए तो उसके लिए वो क्षमा मांगना या प्रायश्चित करना जानता है। लोगों द्वारा प्रशंसा या निंदा किए जाने पर वो डावाडोल नहीं होता। वो सदा चौकन्ना होकर चलता है और जनता से तालमेल बनाए रखने की उसमें क्षमता होती है। व्यक्तियों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वो सराहना करता है और जो कार्य दूसरों ने किया उसका श्रेय वह उनको ही देता है। दृढ़ मन वाला होने के बावजूद भी वो नम्रचित होता है और नम्रचित होने के बावजूद भी वो अपने स्वमान को नहीं छोड़ता। अतः ज्ञानी और योगी बनने के साथ साथ नेतृत्व कला का अभ्यास करना भी जरूरी है, क्योंकि इस द्वारा हम जन शक्ति को संगठित करके बड़े बड़े कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन के समय और शक्ति का भी कई गुना लाभ लोगों को दे सकते हैं और स्वयं में कई सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। परंतु जीवन में इस कला का अभ्युदय और विकास तभी हो सकता है जब हमारी बुद्धि का योग ईश्वरीय शक्ति से जुटा हो। यदि परमात्मा से योग न हो तो बार बार गलतियां होने की संभावना है और जीवन में कई परीक्षाएं आने पर निराश होने की भी संभावना है तथा पथ से हटकर कुपथ पर चलने का भी खतरा है। यदि परमात्मा हमारा मार्ग प्रदर्शक हो, उससे हमें ईश्वरीय शक्ति का लाभ होता रहे, तभी हम स्वयं भी अनुशासन बद्ध होकर चल सकेंगे और दूसरों का भी कुशल नेतृत्व कर सकेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम पवित्रता को सुदृढ़ करें और योग शक्ति द्वारा स्वयं को मर्यादित करें और उच्च लक्ष्य को सामने रख कर योग युक्त होकर, यानी कि परमात्मा की याद में रहकर स्वयं आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम अपने वेलबींग के बारे में बात करते हैं या अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर देखते हैं, तो प्रायः सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अनेक आयामों के बारे में हम समझते आए हैं। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के नीचे की जो परतें हैं वो भी हमें समझ में आ रही हैं। प्रायः जब हम अपनी तबीयत खराब है ये बात कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। जब तक वो शारीरिक गड़बड़ी दिखती नहीं है तब तक हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या ऐसा संभव है कि हम स्वास्थ्य को बिगड़ने से पहले पहचान ले? क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है? अगर ये समझ में आ जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि हम स्वस्थ बने रहें? ऐसे ही विषयों पर सही जानकारी हासिल करना आवश्यक है जिससे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकें। रेडियो मधुबन की यही कोशिश है कि हम ऐसी सही जानकारियां आप तक लेकर आए जिससे हम सभी स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य कहते ही हम आज अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य समझने लगते हैं। जब तक शरीर में कोई गड़बड़ी, किसी प्रकार की व्याधि दिखाई नहीं देती या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, असहजता महसूस नहीं होती, तब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान देते ही नहीं है। आज हम स्वास्थ्य के अनेक परतों के बारे में जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर भी हमारा चिंतन चलता है। तो ऐसे में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को सही तरीके से आप कैसे देखते हैं? क्या स्वास्थ्य के विषय में बेहतर समझ होने से क्या हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं?
1: अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, ये जरूर संभव है। जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि हमको बादल दिख रहे हैं और तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी, तो हम घर से एक छाता पहन के निकले। तो इसी तरीके से यदि हमको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा कि हम क्या चीज नुकसान कर सकती है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप ही क्या एग्जांपल लें भैया, जो अगर हम आबू रोड स्टेशन पे रहते हैं तो हमको गर्मी लगती है और अगर हम सीधे

0: गाड़ी या टैक्सी लेके ऊपर माउंट पे चले जाते हैं तो हमें ठंडक लगने लगती है, तो हम अब नीचे में टी शर्ट में या एक पतला कुर्ता में घूम रहे हैं तो ऊपर जाके हमें एक पतली जैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको सही ज्ञान है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि आप क्या चीज जो आपको फायदा कर सकती है, क्या चीज आपको नुकसान दे सकती है, तो आप अपने आप को ज्यादा बचा लेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, हम सारे लोग जो भी ब्रह्म कुमारी में जाते हैं हम एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी तरीके का नशा हमें नहीं करना चाहिए। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जो कोई भी अगर हम नशा करते हैं वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग हमारी सोचने की शक्ति का भी नुकसान करता है। हमें मालूम है वो चीज हमें नुकसान कर रही है तब भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और हमें किसी एक अच्छे व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति या समाज में कोई अपना बहुत इष्ट मित्र रिश्तेदार की जरूरत है जो हमें अगर समझा देता है कि ये चीज तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन दोनों को नुकसान कर रही है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। अधिकतर जगहों में ये देखा गया कोई गुरु अगर है वो बता देता है कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए चीज अच्छी नहीं है तुम छोड़ दो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। एकदम यही बात है, अगर आपको मालूम है कि आपको ये चीज नुकसान कर सकती है आप अपने आप को बचा लें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, तो आप मेंटली फिजिकली और सोशली तीनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।
1: ये बात समझ में आती है कि स्वस्थ रहना संभव है अगर हम थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, हमारा भोजन खान पान इत्यादि चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना सहज है, ये बात समझ में आती है। आज स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम कई बीमारियों को आम समझ लेते हैं, या हम समझते हैं कि ये तो कॉमन चीज है, ये होना तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है डायबिटीज। पिछले दिनों हमने डायबिटीज के विषय पर बहुत गहराई से चिंतन किया और उसको बेहतर तरीके से समझा, और एक दूसरी बीमारी जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आम रीति बोलचाल में सुनने को मिलता है वो है बीपी। लोग कहते हैं कि आप कोई डायबिटीज बीपी की गोली तो नहीं लेते, ये जैसे दोनों साथ साथ की बात की जाती है। और बीपी के बारे में जब हम समझने की प्रयास कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, क्या चीजें हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर को समझ कर उसका सही निदान, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसका सही निदान क्या है, इन चीजों को भी हम समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जब हम हृदय रोग से संबंधित चीजें हो या बीपी से संबंधित चीजें हो तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, वो है डैश डाइट। हमारे कई श्रोता मित्रों के लिए नई चीज होगी, मगर जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं वो इन चीजों को ज्यादा सुनते होंगे, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये डैश डाइट है क्या, इसके बारे में आप
0: डैश डाइट इसके बारे में बात करें तो ये है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका सीधा साधा ये मतलब है कि हम भोजन में ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर पाए। और अब सबसे अच्छी बात इस डैश डाइट की है कि हमारा मतलब ये अमेरिका में विकसित देशों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है, और उन्होंने अब हमारे भारत में भी इसके बारे में लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। डैश डाइट कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम साधारण भाषा में ये समझिए कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हाइपरटेंशन को, अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भोजन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले भी बात की कि बहुत ज्यादा चाय पीने से, बहुत ज्यादा कॉफी पीने से, सिगरेट पीने से और शराब या अल्कोहल पीने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और सबसे पहली बात, जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो कहा जाता है कि ये चाय कॉफी सिगरेट और शराब या जिसमें भी निकोटीन होता है इसको प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। अगर हम बहुत सिंपल परिभाषा में बोले कि जिस चीज को रिसर्च करके अमेरिका और यूरोप के कंट्री के रिसर्चर्स ने, डाइटिशियंस ने, डॉक्टर्स ने ढूंढा, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने बातों में बहुत पहले बता रखा था कि आप सब्जी, फल और अनाज खाइए, पूरा अनाज खाइए, आप घी की मात्रा, मांस मछली एकदम नहीं खाइए, घी को बहुत कम खाइए, तेल को बहुत कम खाइए, आप नमक को एकदम कम कर लीजिए। तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन में हम सबसे पहले जो चीज को कंट्रोल करने या एकदम कम करने की बात करते हैं वो है नमक। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहता है कि आप नमक की जगह थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए जिससे खटास आ जाए, आप कुछ ऐसे मसालों का हल्का प्रयोग कर लीजिए जिससे आपके स्वाद में उतनी परेशानी ना हो, पर अगर आपको जरूरत है तो आप करीब 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक नमक रोज खा सकते हैं। सोडियम के लिए ये बोला जाता है कि 2.5 ग्राम तक आप नमक दिन में खाइए। आप अपने जो आपका पूरा भोजन है उसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि आपको खूब सारा फल खाना है, खूब सारा सलाद खाना है और आपको होल व्हीट ग्रेन्स जो है उसको खाना है। अगर यंग जनरेशन के लिए मैं बात करूं, जिन आजकल तो बहुत छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो चीज को उनको छोड़ देना चाहिए वो है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। ये श्रोता मित्रों को जान के अचंभा होगा कि इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कैफीन और शुगर और इवन सॉल्ट का भी कंपोनेंट होता है। तो कृपा करके अगर हम फ्रोजन फूड को, कोल्ड ड्रिंक को, आइसक्रीम को, इसको अगर हम छोड़ दें तो हम अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा पाएंगे। हमें खाना क्या है, हमें खाना है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलेड, घर में बना हुआ भोजन, उसमें तेल और नमक की मात्रा हमें कम रखनी है, हमको जहां तक हो सके थोड़ा सा नमक को नींबू से चेंज करना है कि जिससे हमें खट्टापन थोड़ा सा मिल जाए जो हमारा काम कर पाए। बस ये एकदम सरल भाषा में डैश डाइट का मतलब है।
1: अब ये बात समझ में आती है कि हम नमक की मात्रा को लेकर सजग हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम तो ये बात समझना आवश्यक है कि नमक को हम इतना हानिकारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, अक्सर ये चीज कहा जाता है अनेक जगहों पर, ये कहावतें हैं कि नमक से स्वादिष्ट कुछ नहीं, अगर एक चिटकी नमक डालो तो स्वाद बिल्कुल ही बदल जाता है, स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, इत्यादि लोग कहते हैं। और खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, या कहीं पार्टीज वगैरह पे जाते हैं, या कहां पर भी जब हम डाइनिंग टेबल पे नमक की शीशी रखी हुई देखते हैं, अब लोग सोचते हैं ये तो अच्छी चीज है, स्वादवर्धक चीज है, इसको हम ऊपर से छिड़क लें। कई बार लोग सलाद के ऊपर नमक छिड़क लेते हैं, या किसी चीज में जैसे दही खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल लेते हैं। तो ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस सी नजर आती है कि नमक तो अच्छी ही चीज, इसमें खराबी क्या है?
0: भैया, नमक में सोडियम है, नमक को अगर हम केमिकली ब्रेक करें तो वो सोडियम क्लोराइड है, और हमारे हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हमारे हृदय को सिकुड़ने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास ज्यादा सोडियम होता है तो हमारा हृदय तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए नमक का एक कंपोनेंट है सोडियम, उसको रोकने की बात की जाती है। इसमें जो नमक है उसको NaCl कहते हैं, और NaCl का जो सोडियम है ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, नमक जो है वो शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, तो इसकी वजह से हम जब नमक ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और हमारा खून की का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए वो जो प्रेशर है ब्लड का तो बढ़ जाता है। नमक के लिए इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि एलोपैथी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो थोड़ा सा काम करना कम कर देती हैं कि अगर हमें नमक जो है वो अगर हम सॉल्ट को खा रहे हैं, तो इसीलिए नमक को रोकने की बात की जाती है कि अगर नमक ज्यादा रहेगा तो वो हमारे शरीर में बॉडी में पानी को जो है वो रिटेंशन करेगा, उसका हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी रक्त की धमनियां हैं उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए नमक को हम भोजन में कम करने की बात करते हैं।
1: यानी ये जो हम टेबल सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फलों के ऊपर, जैसे अभी वाटरमेलन खाते हैं, तरबूजा खाते हैं या फिर ककड़ी या खीरा खाते हैं, तो कई चीजों के ऊपर नमक छिड़कने की आदत जो है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए?
0: भैया प्रकृति ने अपने स्वाद दिया है। हम लोग एक पुरानी बीरबल और अकबर की कहानी भी कहते हैं कि भोजन में सबसे स्वादिष्ट क्या है, तो बोलता है नमक। आपने भी एग्जाम्पल दिया कि एक चुटकी नमक डालते खाने का स्वाद जो है वो बदल जाता है। सबसे बेसिक बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति ने अपना स्वाद दिया है, तो भैया वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी या तरबूज ये बिना नमक डाले भी खाया जा सकता है। और आप खुद देखते हैं कि नमक और नींबू दोनों डाला जाता है, तो जिनको भी अगर ये ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें नमक को रोक लें और आप प्लीज नींबू का प्रयोग करके खीरा और ककड़ी को खा लें। तरबूजे में प्लीज उसको अवॉइड करें, तरबूजा खुद इतना मीठा है, उसमें इतना अच्छा पानी है, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज नमक डाल के उसका स्वाद न डिस्टर्ब करें।
1: एक और चीज जो प्रायः हम देखते हैं कि हम चीजों को स्वादिष्ट बनाने के प्रयासों में ये भूल जाते हैं कि इसका शरीर पर असर क्या होता है, और ऊपर से नमक इन चीजों में ऐसा इस्तेमाल करना, और खासकर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आज आपने डैश डाइट के बारे में बताया, तो ये आखिरी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये डैश डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं, या सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे फॉलो करने की जरूरत है?
0: अगर आप हफ्ते में दो दिन डैश डाइट में कोई भी चमत्कारिक चीज नहीं है, वो एक बेसिक बात ये बोलती है कि फल खाइए, सब्जी खाइए और आपका मन करे और आप होल व्हीट खाइए, मतलब चोकर समेत आटे की रोटी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, छिलका लगा हुआ चावल खाइए, आप मिलेट्स खाइए, तो एक सिंपल्स की बात है कि जो हेल्दी फूड है वो डैश डाइट का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया गया है कि नमक कम खाने की बात की गई है। अगर आप डैश डाइट हफ्ते में दो या तीन दिन करते हैं, मतलब आप खूब फल, खूब सब्जी, खूब सलाद, खूब सारा होल व्हीट ग्रेन खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तेल और घी कम खाते हैं, तो आपका वजन भी कम होगा। आप ये हल्का भोजन है और इससे कोई भी कर सकता है कि जो भी कर ले उससे उसको फायदा ही होगा, क्योंकि एक तरह से स्वस्थ भोजन है जिसमें सिर्फ हेल्दी खाने की बात कही है, कम नमक खाने की बात करी गई है और शाकाहारी भोजन करने की बात की गई है।
1: बहुत स्पष्टता से आपने ये बात हमको कही कि हम डैश डाइट के बारे में सिर्फ ये न सोचें कि ये सिर्फ बीपी के मरीजों के लिए है, मगर हम सभी लोग भी इसका पालन कर सकते हैं, और अगर हफ्ते में हम एक आध दिन भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम उठाते हैं, ये बात समझ में आती है। प्रायः ये चीज देखने को मिलती है कि लोग ये सोचते हैं कि घर में कोई एक बीपी का मरीज है तो उनके लिए अलग भोजन हो और बाकी लोग नॉर्मल भोजन करेंगे जिसमें अधिक मात्रा में नमक हो या इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्ट होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक नहीं है, मगर घर में जो एक व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। हम सब अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबको धीरे धीरे इन बदलावों को लाने की जरूरत है, जिससे हम ज्यादा सब्जियां खाएं, चुकर सहित आटे की रोटियां खाएं, नमक की मात्रा को कम करें। इन सभी चीजों को समझकर हम भी एक स्वस्थ समाज की रचना करने में, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ राष्ट्र की रचना में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े, उन्होंने हम सभी श्रोता मित्रों के लिए सुलभ मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य में उपलब्ध कराया। आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने बीपी की इस समस्या के लिए डैश डाइट कैसे कारगर है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज डॉक्टर रोहन मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने ही भोजन में अगर इन परिवर्तनों को लाते हैं, जैसे डैश डाइट का परिवर्तन उन्होंने बताया, तो उन छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और घर परिवार में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपी के मरीज हैं उनको भी ठीक करने में हम सहयोग दे सकते हैं, उन्हें भी हम बेहतर स्वास्थ्य की ये तोहफे प्रदान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं। अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़े हुए और भी विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे समीना जी से, जो सिंगापुर से हमारे बीच आई हैं। आप पिछले एक साल से ये प्रोग्राम देख रही हैं और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।
1: समीना, आपसे बात करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि जिस मिराकल को हम ढूंढ रहे थे, ज़्यादातर जब भी हम बात करते हैं, खासकर सच मानिए अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो बात हमेशा करते हैं चमत्कार हुआ। तो अगर हम आपको देख रहे हैं और जिस तरह से आपके जीवन की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो है वो काफ़ी क्लियर दिखता जा रहा है। अगर हम सिचुएशंस को भी लें, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज भी उनसे जूझ रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो अब वो गुस्सा अभी भी अंदर अगर होता भी है तो वो बाहर नहीं आता है, उस तरह से नहीं करता। एंड देन यू अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ इट। आपको लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ऐसे ही सिचुएशंस को अगर हम देखें जब पहले आप जी रहे थे, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, और फिर जब ज्ञान मिला और जब प्रोग्राम के द्वारा ही आपने बहुत कुछ समझा, तो फिर जो वहाँ एक आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट होके सिचुएशन कैसे बदलती गई, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने?
2: मैनी, जैसे बहुत सारी फैमिलीज में फ्यूज होते हैं, यू नो, और कभी कभी फ्यूज इतने हो जाते हैं कि यू नो टेबल पे बैठ कर रिकनसाइल भी नहीं हो पाते हैं, फिर जाते हैं वो कोर्ट केसेस में। हमारे साथ भी ऐसा ही है, तो इतनी इंटीमेट फैमिली के अंदर ऐसा हुआ, एंड देन यू नो अभी तो कोर्ट में गए। पहले क्या होता था कि जब यू नो हमारे साथ गलत होता था या हमारे यू नो हमें चीट किया गया या जो भी, तो गुस्से के साथ ऑलमोस्ट उस आदमी के लिए और या उन आदमियों के लिए हमारे मुंह से बद्दुआएं निकलती थी कि हमारे
1: गलत,
2: यू नो जिस तरह से हमें सफ़र करना पड़ा है, एक दिन आप भी ऐसे ही सफ़र करोगे। दैट्स कम्प्लीटली गॉन। अभी बिल्कुल भी ऐसा एक बार भी हमें नहीं लगता। एक्चुअली हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो बोलेंगे देखो उनके साथ भी ऐसे ऐसे, नो आई डोंट प्रे फॉर दैट ऑल्सो, उनके साथ भी ऐसा ना होवे।
1: बट क्यों? क्योंकि वो राइटियस सा जब होता था, जब आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी होना चाहिए, यू नो वो नेचुरल रिएक्शन उस वक्त हमारा होता था, यू नो टिट फॉर टैट एंड वी यूज्ड टू जस्टिफाई कि ये सही है। तो अब क्या आपको, कौन सा वो थॉट है? एक्चुअली हम बार बार इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक थॉट है जो ट्रिगर करता है कि नहीं कुछ नहीं होता, उसके साथ नहीं होना चाहिए
2: नहीं। इट इज़ बिकॉज अगर मैं इतनी नेगेटिविटी वहाँ फेंकूंगी तो मुझे ऐसा लगता है वापस वो बूमरैंग होके मेरे ऊपर ही आएगी। मुझे वो करना ही नहीं है। मुझे ना तो किसी को नेगेटिव एनर्जी देनी है, ना तो एक्सेप्ट करनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अगर मैं इस तरह से किसी के ऊपर मैंने बदुआ दी है तो फिर वो वापस टर्न होके मेरे ऊपर भी आ सकती है। मुझे ये नहीं करना है। उन्होंने जो किया सो किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो हमेशा ब्लेसिंग्स उनको भेजती हूँ कि जिस तरह से आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन एंड मुझे ये ज्ञान मिला है और मुझे ये नॉलेज मिला है, आई होप कि समहाउ द अदर उन्हें भी ये नॉलेज मिले।
1: लेकिन वो अभी भी सिचुएशन आपके साथ
2: है? ऑफ कोर्स, मैं आई एम गोइंग थ्रू इट। वी आर गोइंग, माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ, वी आर गोइंग थ्रू इट। We are going through it, but our mindset is changed.
1: So we just talked about this, Shivani, अपनी अभी series में ही हम ये बात कर रहे थे कि situations जब आ जाती हैं तब हम उसके साथ या तो हम उसको hit करते हैं या हम उसके साथ बह जाते हैं, carried away हो जाते हैं। So अगर हम आज आपको देखें, हमारे सभी दर्शकों के सामने एक live example ये है।
3: Because our whole series, this series, we were talking on self-management and हमने यही बार-बार discuss किया कि situation है लेकिन वो मेरे control में नहीं है। Like you said, किसी ने कुछ गलत किया और उसका कोर्ट केस भी चल रहा है। Now this is a situation X which is there outside, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि how do I respond to the situation? तो I can't change। अभी पहले क्या होता था, हम गुस्सा करके और डिस्टर्ब होकर हम सोचते थे कि हम सिचुएशन को किसी तरह से चेंज कर दें, हम उन लोगों को ठीक कर। Now I know कि there is only one thing which is in my control and that's my response. अब नॉलेज शायद पहले भी थी लेकिन करने की पावर नहीं थी। अब वो अपने अंदर जब शक्ति भरती गई तो वो करना भी इजी हो गया। एंड आई थिंक अनदर रीजन व्हाई इट कम्स फॉर इट इज नाउ बिकॉज़ प्रोबेबली मनी इज नॉट एवरीथिंग।
2: यस,
3: That also makes all the difference.
1: And you know, like,
3: it makes a big difference.
1: पिछली बार जो होता होगा वो अब सारा सारा दिन बैठे रहे, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें इतनी बड़ी चीज कुछ हो रही होती है जिसपे सब कुछ मेरा दारोमदार होता है, मैं सब कुछ छोड़ के उसी पे बार में
3: लेकिन सब कुछ मेरा दारोमदार मतलब सब कुछ मतलब क्या
1: मैंने माना
3: सब कुछ मतलब मेरा धन मेरी प्रॉपर्टी. अब मुझे समझ में आया कि मेरा सब कुछ मतलब क्या, मेरा सब कुछ मतलब पहले मेरी शांति मेरी खुशी. तो अगर It's not that we will say, okay, ठीक है मेरा सब कुछ आप ये ले जाओ. No, I will do whatever I have to do to work on it, to protect what is my right. लेकिन at least मेरी शांति और खुशी तो ना मैं उस चीज़ के लिए गवा दूँ ना. तो I think if you maintain this thing, you will have stability in doing what you have to do आगे.
2: But also because when you have a relation with the divine, the almighty, जो relation अभी है, I feel that okay, शायद वो एक दरवाज़ा बंद हो जावे या वहाँ से नहीं आवे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वो दूसरी तरफ से भी मुझे देगा ही, ये मुझे कॉन्फिडेंस है.
3: लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी तभी दिखाई देती है जब हम दर्द में नहीं होते हैं.
1: यस, बिकॉज़ में धुंध नहीं होती,
2: बिकॉज़ वी आर नॉट, या बिकॉज़ वी हैव एक्सेप्टेड इट एंड वी आर सेइंग ओके इफ दिस इज इट देन देयर विल बी समथिंग. यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट, लाइक यू से अनकंडीशनल लव, आई ऑल्सो से अनकंडीशनल फेथ इन हिम, दैट आई विल नॉट wiver from there, that he will do only what is right for me.
3: But like what she said, the first step is accepting the situation.
1: Yes.
3: And that's what we've been talking, ke situation ko resist nahi karna, reject nahi karna, usse andar aur bhi dwand chalta hai. Pehli cheez hoti hai situation ko accept karna. Now what? Now what do I have to do? And then see, this is an example. I mean, everything that we spoke about in all our last episodes, you've just come and shared with your own personal experience.
2: Right. I only am here to talk about myself. That's why I feel that if I'm so ordinary a human being, and if it can happen to me, then there are so many people out there whose life can be changed. Unki zindagi badal sakti, that is for sure, because हम तो बहुत आम इंसान हैं. नाइदर मैं तो ना कोई गुरु हूँ, ना कोई कभी ना मैं कभी रिलीजियस भी नहीं थी, यू नो, कुछ नहीं, जस्ट अ वे ऑफ लाइफ जो चेंज हो जाती है,
3: अ वे ऑफ थिंकिंग जो चेंज हो जाती है,
1: पहला थॉट प्रोसेस,
2: थॉट प्रोसेस जो हमारा चेंज हो जाता है, एंड वो थॉट प्रोसेस से देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट.
1: समीना, जैसे आपने कहा कि यू हैव नॉट बीन रिलीजियस, लेकिन आप प्रेयर्स तो कर ही रहे थे. तो ये जब प्राप्ति हुई, जब आपको परिवर्तन दिखा और डिवाइन के साथ एक इतना खूबसूरत रिश्ता, अब इनफैक्ट आपसे बातें करते करते मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भी उतने ही अभिभूत, और शिव बाबा के साथ जो रिश्ता, जो कई अभी भी शायद तलाश रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, दे कैन फील नाउ. ओके,
2: प्रीवियसली व्हेन आई टू डू, व्हेन आई टू प्रे, इट वाज ऑलवेज अ प्रेयर कि मुझे ये चाहिए. एंड जो रटा हुआ हम जो आइदर श्लोक्स है हमारी जो दुआएं, हम जो रटे हुए हैं सब पढ़ लेते और हम मांग लेते हमें ये चाहिए. दिस इज द चेंजेस कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते तब हम लोग शांत बैठते, बिल्कुल क्वाइट, बिकॉज हमने तो जो बोलना था वो बोल दिया. उन्हें डिवाइन फोर्स जो हमें कह रहा है वो भी तो सुनना है. दैट ओनली कम्स इन क्वाइट, दैट यू सिट. It's not easy in the beginning. It was only 5 minutes, 10 minutes, but as you become quiet and as you achieve that quietness inside of you, it can now I can almost sit up to 40 minutes, and I'm very shocked with myself because मैं इतनी हिलती हूँ, मैं इतनी फिजिटी हूँ, और मैं एक सेकंड बैठ नहीं पाती हूँ. तो मुझे खुद को लगता है कि मैं कैसे इस तरह से 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, वॉट एवर जितना टाइम होता है, वो कैसे मैं बैठ जाती हूँ और कैसे मैं इतना ध्यान कर सकती हूँ.
1: और बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम प्रेयर्स में अपनी बात तो बार बार कह देते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं था कि वहाँ से जवाब भी तो आएगा. अब आप जब साइलेंस में इंतजार कर रहे हैं उनका कि वहाँ से जवाब आएगा,
2: नॉट इमीजिएटली, लेकिन जब माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है और कोई थॉट्स नहीं होता है, I feel, I don't know whether this is, I'm on the right track or not, but I feel that when your mind is completely unclogged, कुछ नहीं होता है वहाँ, कोई rubbish नहीं होता है, कोई thoughts नहीं होता है, तब I feel that he is also seeing me clearly. I think मैं भी उनको साफ दिखती हूँ, you know, smoke glass से नहीं दिखती हूँ.
1: Clarity
2: से वो भी मुझे देख पाता है कि ये है कौन, ये क्या, कौन सी आत्मा है.
3: This is how I feel. That's because the disturbance in between has gone. That's right. Very important. God can always see you. It's just that we get to see him better now.
2: Yes, possibly.
3: Because the dust was not in front of him. लेकिन डस्ट है डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड डस्ट इज ओनली माय नॉइज ऑफ थॉट्स यू नो जो आपने कहा क्लॉगिंग जो हो जाती है तो इट्स इधर उधर की संकल्प थॉट्स इमोशंस वो सब है इफ यू आर एबल टू साइलेंस दैट देन यू आर एबल टू फर्स्ट सी योर सेल्फ एंड देन यू आर एबल टू कनेक्ट टू हिम एंड देन द आंसर इज डजंट हैव टू कम इमिजिएटली बट द आंसर कम्स
2: यस इन सम I cannot explain, but in some form or the other, एक incident हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ call आ जाएगा. Also, once we have talked about lightness, which he keeps saying, become light. Don't carry burden of thoughts. So once you become light, you feel also that I feel even now that I have become. I have. There are things जो हमारे previously जो हुआ है हमारे साथ बुरा हुआ है जिस किसी ने कहा है या whatever happened थोड़ा बहुत तो वो रहता है because we are so human you know but now I've like you've always said that whatever is not necessary try and delete it immediately you know so I do be conscious about it and say okay this is not important
1: finish it out delete
2: yeah delete
1: press
2: please get it out you know if somebody said something to me also that's hurtful it's not important get it out so you feel lighter you feel better
1: very true yeah. hum apne apne sabhi darshakon ke sath ek baar phir share kare ki hum samina ji ke sath jo ki khas singapore se aayi hui hai hamare sath wo इसी प्रोग्राम के एक दर्शक के रूप में जुड़ी थी लेकिन अब हमारे परिवार का एक हिस्सा बनती जा रही है जैसे आप बन गए हैं और हम उनके साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं समीना अगर हम देखें लाइफ में जो परिवर्तन हुआ एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बात ये भी जनरली कही जाती है जो बहुत से लोग अपने मन में कई बार सोचते हैं कि फैमिली लाइफ के साथ साथ रहते हुए अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते जैसे अब आप कह रहे हैं कि 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ रही हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा दिन ना फिर ध्यान में ही बैठे रहेंगे ये सारा ये अलग ही हो जाएंगे या मतलब फैमिली से दूर हो जाएंगे आपका अपना अनुभव ने क्या कहा कि क्या हुआ मतलब
2: एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसकंसेप्शन जो ब्रह्मा कुमारी के साथ ही है दैट जो भी उनकी बातें सुनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब यू नो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज मैं माउंट आबू भी गई और जब मैं वहाँ से विदाई भी ले रही थी उन सीनियर ब्रदर्स के साथ दे ऑल सेड गो इन हैप्पीनेस एंड स्टे हैप्पी इन योर फैमिली
3: नोबडी सेड स्टे हियर
2: नोबडी सेड कम बैक किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ वापस यहीं पर रहो ऐसा कुछ नहीं है एंड यू नो इवन इन रिलेशनशिप्स यू नो अगर देखा जाए तो इनफैक्ट रिलेशनशिप्स उन लोग कहते हैं स्ट्रेंथन करो ना कि वीक करके तोड़ के चले जाओ तो इट्स वो मिसकंसेप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि लोग अगर लोग कोई छोड़ के चले जाते हैं तो दैट इज़ देयर अप टू देम कि वो अब उनकी चॉइस है ये कोई नहीं कहता वहाँ पे कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे आ जाओ और मुझे छोड़ना भी नहीं है आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दैट ध्यान में बैठना वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर लाइफ हम लोग चार चार घंटे टीवी देख लेते हैं तो 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठना क्या प्रॉब्लम कोई है आई डोंट थिंक सो आई वुड रादर I'd rather take out time. This is my priority. Hum sab apne liye waqt nikalte for a lot of different things. This is my priority that I want to sit
1: some
2: time.
1: And it's giving you happiness.
2: But it's giving me, it's benefited me. So I don't see, I've not heard anybody in the family complain.
3: They will not complain when there's a transformation. Jahan result dikhai dega ki aapke andar itna change aa raha hai, to they will say it's good. This thing is working for her.
2: Yes.
3: So wo isliye fir mana nahi karenge. Yeah. But did it clash with your, let's say, religious beliefs?
2: No, not at all. Because I am, there's nothing religious about this belief system or this the way of life that you all are teaching. Because it's not telling me to stop. Being a Muslim. I've not stopped being, I've become a better Muslim. Because when I pray with single-minded thought that I am this time with God. So, ulta, ye to hume fayda deta hai. And it's another thing that yahan pe na koi mantar hai, ya koi puja karni hai, ya nothing. It's just telling you a way of life. That's all. They're just telling you that you can make your life better. That's all we're doing. There's nothing wrong in that, you know. Agar hume, agar mujhe kaha jata ki यू नो, अगर आप मंदिर में जाओ, ये पूजा करो 10 दिन, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो शायद मैं ना करूँ बिकॉज इट इज़ नॉट माई बिलीफ सिस्टम. बट यहाँ तो दिस इट डजंट क्लैश विद एनी थिंग. सो आई फील दैट ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स मेड मी अ बेटर मुस्लिम टूडे.
3: But did others have a problem with that? Did
2: yes.
3: your friends, families or whatever?
2: I would say the most important people in your life is your parents and your spouse. You know, those are the two most important people. My mother, she had a little problem because she... उन्हें ये मेरी भी मिस्टेक थी कि मैंने उनको समझाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ. वो समझे कि मैं जब मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं कुछ जाप कर रही हूँ या ऐसा कुछ. उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं सिर्फ शांत बैठी हूँ. तो जब she understood this, then she also stopped saying anything to me. Of course, my husband, to beginning se, almost from the beginning, he's been with me on this journey. He also meditates before he leaves for work and after he, when he comes back, just before he sleeps in the night, both of us, you know, are quiet for that time. That's all. There is nothing more happening. So it's just a way of life. Your thought process is changing and you're meditating. That's all we do. Nothing more. Let me make it clear, there is no religious things happening anywhere.
1: Samina, it has been amazing jab aap sabne jo baat ki aur jo aapka jis tarah ki personality aa rahi hai, you come across as a very very loving person aur jis tarah ki attachments family ke sath rahi hongi aur you know like aap ek mother hain, ek wife hain, ek daughter hain, ek daughter in law bhi hain, jis tarah se aapke parivar ke bare mein baat hai, to aapka relationship apne pure parivar ke sath kitna strong बाइंडिंग्स का था जो हम कहते हैं सपोजिटली, वो कैसा रहा है, कैसा था पहले?
2: ओके, देयर वाज ऑलवेज लव, बट वी ऑलवेज लव्ड एंड वी वर अटैच्ड. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट केम अप, दैट यू हैव टू लव अनकंडीशनली, लव कंप्लीटली, यानी दिल खोल के प्यार करो, लेकिन अटैच थोड़े डिटैच रहो. इन द सेंस के जब हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो जब वो इंसान गिरता है तो आप उसके साथ गिरते हो. दिस इज समथिंग दैट आई लर्न, दैट व्हेन द पर्सन, जब इंसान गिरता है तो तुम्हें संभलना चाहिए,
1: क्योंकि आप साथ साथ गिर रहे होते हो.
2: अगर तुम भी साथ गिरोगे तो सब गिर जाएंगे. तो दैट्स हैपन वेरी मेनी टाइम्स विद माई हस्बैंड, दैट अगर इफ ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम, देन आई डोंट गो डाउन इन डिप्रेशन विथ हिम. आई स्टे वेयर आई एम सो दैट आई कैन हेल्प हिम आउट. देयर इज नो पॉइंट इन टू ऑफ अस डाइविंग इनटू द पूल एट द सेम टाइम. तो हमें डिटैच्ड इन दैट सेंस कि हमें स्टेबल रहना है.
1: लेकिन आप जो पहले बहुत ज्यादा अटैच्ड थे,
2: yes.
1: तो एक कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ये आदत भी हो जाती है,
2: yes.
1: कि मैं रोऊंगी तो वो रोएगा ही रोएगा, या मैं करूंगी, मैं प्रॉब्लम में आऊंगी तो मम्मी को प्रॉब्लम आएगी ना, मम्मी भी तो प्रॉब्लम में आएगी आएगी. देखिए, सो मच यूज टू ऑफ इट. तो अब आपके में जो परिवर्तन आया कि आप उतने प्रॉब्लम में नहीं आते थे, कहीं आपके कहीं बच्चों को या हस्बैंड को या किसी को ऐसे लगा कि अब मम्मी मेरी केयर नहीं करते?
2: नो, आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट आई टेल माई मदर दिस, बिकॉज हम लोग अलग रहते हैं, मेरी मदर इंडिया में है, मैं सिंगापुर में हूँ, एंड शी वरीज ऑल द टाइम. आई सेड डोंट वरी फॉर मी, प्रे फॉर मी, मेडिटेट फॉर मी, सेंड मी ब्लेसिंग्स. आपके वरी करने से मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका प्रेशर बढ़ेगा, मुझे और प्रॉब्लम हो जाएगी.
1: पर मैं हेल्प थोड़ा कर सकती हूं वरी करना. शी वाज जस्ट टू से कि कैन आई हेल्प नॉट वरी अबाउट यू,
2: एंड आई सेड डोंट वरी. इफ यू आर कंसर्न्ड, क्या यू नो, इफ आई एम सिक ओवर देयर, या इफ आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी विल शी अराइव, देन सिट इन दैट टाइम एंड सेंड मी ब्लेसिंग्स. यू नो, वो पॉजिटिव मेरे लिए काम करेगा, वो नेगेटिव वरीज मेरे लिए कुछ नहीं करते.
1: लेकिन अब जो आपका बच्चा कभी पेन में जाता है,
2: हाँ.
1: या आपका हस्बैंड कभी पेन में जाते हैं, पेन किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी थॉट प्रोसेस को लेके, अब आपका रिएक्शन कैसे स्टेबल रह पाता है? यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज यही एक बहुत अभी भी बात होती है कि जैसे ही हम सारी चीज़ें अपने ऊपर तो कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारे अपने पे आने लगती हैं चीज़ें, जो हमने समझा होता है वो कहीं ना कहीं यू नो लाइक हमें सोचना पड़ता है उसके ऊपर.
2: नो, एक्चुअली पेन के साथ स्पेशली बिकॉज बोथ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग ओवरसीज, तो जब वो पास नहीं होते हैं, इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट उसके साथ प्रॉब्लम में वो भी चले जाते हैं. ओह माई गॉड, अभी क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा, आई एम कंसर्न्ड, यू नो, इट हैसल्स मी बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, यू नो, आई हैव ब्रॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड. बट I will first think, now what should we do? You know, there's no point in reacting immediately. But is now ye situation hai, abhi karna kya hai? You know, so in fact it works out it works out more positively, because if you go in the trouble with them, then you are not helping them, neither you're helping yourself. But if you become a little bit detached and think, now how should we handle this, then I think you can give them more I think jo results nikalte hai usme se, they are more positive. And if I have really some situation jahan I don't know an answer, mujhe pata hi nahi ke what I should do, ye bhi theek lag raha hai, wo bhi theek lag raha hai, I really don't know what to choose, then I will leave it to the divine. I just sit down in meditation. I said, jo bhi wahan se jawab aayega, jo bhi situation banegi, I am going to accept, because I cannot control this. This is beyond me. And whatever works out, it usually works out okay.
1: Fine. Finally, it's the best.
2: Finally, it works out okay. Yes.
3: But then yes. Such a big example of detachment. Like in वही हमने program पे भी कितनी बार discuss किया कि जब हम detachment theory में discuss करते हैं तो जो first एक image आता है detachment का, that looks like a very रूखा person, mm-hmm. you know, जिसको बिल्कुल concern yes. नहीं है किसी के लिए. And even now, spirituality, detachment, these two words go hand in hand, mm-hmm. you know. A lot of people feel के spiritual mark par jayenge to hum logon se detached ho jayenge, and that's what we've been sharing again and again, ki logon se nahi detach honge, paristhiti aur logon ke prabhav se detach ho jayenge, influence se detach ho jayenge, aur influence se detach honge to dard mein nahi aayenge, stable rahenge, aur stable rahenge to fir unki aap help kar sakte hain, and then you help them to come out of pain.
2: Also, because attachment sometimes brings possessiveness. It's an ownership, you know.
1: You don't own anything.
2: Actually, you know, you can't own your husband. You can't own your children. They're there because they love you. That's all. So if they want to go away, I will not be able to help that. They will go away anyway. But if they love me honestly, then they will be with me. There's no question about that. And for me, this is more important.
3: That means the relationship should be, you know, ki hum snehe ka ek dusre ke saath jo exchange kar rahe. So even if they go away, let's say they just go on their own and they're not there. Normally what happens is if children go away once they've grown up, the parent on the other side is just in pain.
2: Yes.
3: Ab wo mere saath nahi hai, ab mera kya, ab meri wo parwaah bhi nahi karte hain. Kyunki you're used to those two children just running around you, you know, for about 15, 20 years. And you are their center of living, and aapki puri jeevan wo unke around revolve karti hai, and suddenly you're that identity. Sara problem hota hai identity crisis ka, ki I am a mother, to wo wali identity suddenly crash ho jati hai, ki there is no one running around me and looking up to me for everything, and then we say ab to mere paas koi bhi
1: nahi hai,
3: ab mere jeevan
2: ka kya purpose. This is the time that I feel it's a new, everything is new. You have to keep on seeing it that way. Okay, we had a very good time with them and they're growing up, they were with us, now they've gone off. Now it's a relation that I'm going to work on with my husband, that we do things together. This is a new thing. And when the kids come back and they want to stay back with us, that'll be a new thing. So you just take life as it comes. Let the flow just be there. Don't resist the flow.
1: Very good.
2: Change.
1: Good, wonderful. But it was amazing to have you with us. In fact, Sister Shivani, ye jo hamara ek prayas tha aur ye hua ki Sameena ji yahan thi aur Singapore se yahan aayi hui thi, aap sabke saath aur hamare saath bhi, aisa lagta hai ki parivar ke hum sadasya baith ke baatein kar rahe hain. Aur ek baar mujhe kisi ne kaha tha कि मुझे याद है कि एक वो राइटर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हमें आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, और वो बहुत बड़ी राइटर थी, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले ये बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि दो औरतें बैठकर बात कर रही हैं और वो बातचीत आधे घंटे तक कर रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के देख सकती हूँ, लेकिन आज आप लोग हमारे परिवार का, हमारे ड्राइंग रूम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए हो. तो हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये परिवार इतना बढ़ता जा रहा है, हमें आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, थैंक यू सो मच. लेकिन ये परिवार शिव बाबा का है, परमात्मा का परिवार है. जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग और जुड़ते जाएंगे, उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा. इनफैक्ट जैसे शिवानी, इनफैक्ट इसी को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे समीना जी आज हमारे साथ आई. अगर बाकी लोग भी जो शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ विल इट हेल्प, यू नो, व्हाट विल रियली हैपन.
3: एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी गुड इज वन, कि अगर जैसे आज समीना जी हमारे साथ हैं, इट वुड बी नाइस कि और भाई बहनें भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी यात्रा, अपना परिवर्तन और अपना अनुभव औरों के साथ शेयर करते हैं, तो वन द फर्स्ट पर्सन हु बेनिफिट्स इज द पर्सन ऑन दैट सीट. सी वंस यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट जस्ट गोज थ्रू यू ऑल ओवर अगेन. तो जब आप शेयर करते हो वो पहले आपके अंदर पक्का हो जाता है, एंड दूसरा आपसे आज लाखों लोग प्रेरणा लेंगे. Many people, because they will see her and they will say, if she can do it, I can do it. You know, and that becomes, you know, so you become the source of inspiration for millions of people today. And इसीलिए हम शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से अब अपने सारे भाई बहनों को इन्विटेशन देते कि मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ओवर. हम सबसे भी मिलने का, हमें भी उनसे मिलने का चांस मिलेगा, और उनके द्वारा वो अगर अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करते हैं, आई थिंक द फैमिली विल जस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर. इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी.
1: जितनी बड़ी होती जाएगी उतने और क्लोज भी होते जाएंगे. तो समीना, थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. शांति शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत में आप भी रहे, और बहुत वही बात की ऐसा लगता है कि हम कभी रुके नहीं और कभी बिछड़े नहीं. हर बार ये लगता है जब भी हम ये यहाँ से भी विदा ले रहे होते हैं. थैंक यू सो मच एम शांति. तो जो भी दर्शक या परिवार के सदस्य इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ईमेल पर हमें अपना अनुभव लिखकर भेजें कि क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और आप अपना छोटा सा एक परिचय भी हमें भेजें ईमेल पर, तो फिर हम आपको वापस कॉल बैक करेंगे. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0998-73-666-555, 0999-99-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक निमित ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाले कड़ियों में बहुत सी और बातें करते रहेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुनाए हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए खुशी को बढ़ाते हैं। और सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, और हफ्ते की शुरुआत में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हम सभी को जो है एक नई उमंग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक अवकाश के बाद चीज़ें आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम सभी आज जो है ख़ास शिव जी को भारत में याद किया जाता है, और शिव जी का नाम लेकर आज के दिन को शुरू करते हैं, है ना। तो आशा करूँगा कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा, और एक बहुत ही प्यारा सा शिव जी का संगीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 3 अगस्त 2026 आज का तारीख हो गया है, और ये आज से पहला श्रावण सोमवार भी शुरू हो गया है। वैसे गुजरात में शायद अगले हफ्ते शुरू होगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में पहला सोमवार आज से शुरू हो गया है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है।
1: हेलो जी, नमस्कार भाजी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है। श्रावण के
0: श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: बरसात भी हो रही है, सोमवार श्रावण का पहला सोमवार भी है। तो मेरे घर में आए भगवान, हमारे घर में आए भगवान, कैसे पूजा करूं? हमारे घर में आए भगवान, कैसे पूजा करूं, कैसे दीप जलाऊं? ये भजन कर ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार सा नमस्कार, और आपको भी प्रणाम हो। धन्यवाद धन्यवाद
0: जी जी, शुक्रिया आपका गुड़ीलाल जी। तो ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा भाव लेकर आते हैं और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करते हैं, और आप सभी को भी याद करते हैं। तो ऐसे में चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूं, और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत अभी आपके लिए। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। घर हाय भगवान कृपा करो करुणा निदान। तो चलिए, ये था आपके लिए खास गीत और मुझे लगता है कि आपने इस गीत को सुना भी होगा। रामायण में ये गीत आता है बीच में और जब राम जी जो है सीता के साथ वनवास व्यतीत करते हैं तो अलग अलग गाँव में इनका जाना होता है। तो गांव के जिस गांव में वो जाते थे, जैसे उनको पता चल जाता कि राम जी आने, तो फिर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत सत्कार में सारा गांव जो है जुड़ जाता था और अपने भावों को व्यक्त करता था। तो ये था हमारे घर आए भगवान आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए, श्रावण का पहला सोमवार शुरुआत हो गया है और आप सभी को इस सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो,
1: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम। तो बातें करते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निशा जी। निशा जी कैसे हैं आप?
2: ओम शांति। ओम शांति, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, और आपको देखकर और अच्छे हो गए। तो निशा जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष इस मुलाकात में। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए।
2: मेरा नाम है निशा पंजवानी और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ और मेरी माताजी ज्ञान में स्टार्टिंग में चले, तो उनके थ्रू ही मुझे ज्ञान मिला था। तब मैं बहुत छोटी थी और कल्चरल प्रोग्राम था। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे मौका मिला था कि कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। तब VIP ग्रुप आया था। तो तब तो मैं कन्या थी, छोटी थी, ज्ञान का इतना नॉलेज नहीं था। तो इसी बहाने चलो मधुबन की पवित्र भूमि पे आने का मुझे मौका मिला। वो होने के बाद फिर बस घर चले गई, लेकिन फिर पढ़ाई में कॉलेज में उसमें चला गया समय। बाबा की मतलब ज्ञान से जुड़ी थी लेकिन उसी में ज़्यादा फोकस था, पढ़ाई में, एजुकेशन में और अपना जॉब में। अभी वापस जॉब करते करते 3-4 साल से कोशिश यही थी कि वापस मधुबन भूमि में आऊँ, तो कन्या भट्टी का मुझे मौका मिला।
0: बढ़िया।
2: मेरी बहन भी है, वो भी ज्ञान में चलती है, पूजा। तो पुणे में हम लोग रहते हैं अभी किराए के मकान पे, धानवरी सेंटर से जुड़े हुए हैं। शैला दीदी है वहाँ पे, तो उनसे हमारी ऐसे ही मुलाकात हुई। 2 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम आए यहाँ पे तो कहा दीदी जी हमें चलना है कन्या भट्टी पे, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, और बस हम यहाँ आ गए कन्या भट्टी करने।
0: अच्छा, इस मेडिटेशन सेशन जो आपने अटेंड किया उसमें कितने दिन का सेशन था और किस तरह का जो है अनुभूति आपको हुई और कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपील किया आपके अंतरात्मा की ज्योति को जो है जगाने में, वो थोड़ा बताएं
2: जी। भट्टी स्टार्ट हुई हमारी 31st ऑफ जुलाई, 4th अगस्त वॉज द लास्ट डेट। 3-4 दिन की हमारी भट्टी, तो 31st को इनॉग्रेशन हुआ था, तो बेसिकली 3 दिन की हमारी भट्टी थी। सुबह और शाम 2 टाइम हमारी भट्टी चलती थी जिसमें योग और ज्ञान हमें सिखाते थे। लेकिन इसमें मेन जो हमारा था, जो हमें फोकस करना था, वो था मौन, साइलेंस। तो साइलेंस की शक्ति अगर रहेगी तो आप ज्ञान को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, योग अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। बड़े बड़े महारथी आए हमारे सामने जिन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, उनका अनुभव सुनाया। बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने साकार में कैसी पालना की थी। और कहीं कहीं यही लग रहा था कि आज से 33 साल पहले जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो ये हम लोग भी कनेक्टेड थे, हमारी आत्मा भी कनेक्टेड थी और हमने भी ज़रूर कहीं ना कहीं बाबा से साकार पालना ली होगी, तभी बाबा ने वापस हमें बुलाया है। शांतिवन हो, पांडव भवन हो, दोनों में हमें इतना कनेक्शन फील हुआ। तो बस यही लगता है कि बार बार अब हम मधुबन आए, जितना हो सकता है हम इस शरीर निर्वाह अर्थ करें और बाकी बाबा की सेवा में करें। बहुत अच्छा अनुभव।
0: निशा जी, बहुत अच्छी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाया कि कैसी आपको जो है मेडिटेशन में एक डीप इनसाइड हम लोग जो है कनेक्टिविटी की फीलिंग करना चाहते हैं, और जैसे वो फील आता है तो हमें बेहद खुशी होती है, हमारा जो है जिसको अतिंद्रिय सुख कहते हैं वो फीलिंग आता है। जब तक वो फीलिंग ना आए तो आपका फिर बट्टी या मेडिटेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, आपकी आत्मा भरपूर महसूस नहीं करती। तो शायद आपने उस अनुभव को किया है, और मैं चाहूँगा कि एक और बात कि आप अपने प्रोफेशन क्या है, आपका क्या करते हैं और कैसे ये मैनेज करते हैं वो थोड़ा सा बताइए।
2: जी बिल्कुल, बहुत इजी है मैनेज करना अगर आपका मन स्थिर हो, और आपका मन स्थिर होता है सिर्फ योग से, मेडिटेशन से। मैं रियल एस्टेट में सेल्स में काम करती हूँ पुणे में। मेरा वर्किंग आवर्स है मॉर्निंग 11 to 7। सुबह उठते से ही हमें अब अमृत वेला करना पड़ता है, तो हम अमृत वेला करते हैं, लेकिन अमृत वेला के बाद कोशिश यही रहती है, हमें सिखाया जाता है कि आप ना सो, परंतु ऑफिस होने के कारण हमें हम थोड़ी देर सो जाते हैं आराम, जाके रेस्ट मिल जाए, फिर वही खाना वाना बना के अपना और हम ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में भी निरंतर जैसे हमें काम रहता है, जिस समय भी हमें फ्री थोड़ा समय मिला तो हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे सिखाया गया है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कई कई घंटे बाबा को याद करना चाहिए, तो वो भी हम करते हैं, कनेक्टेड रहता है ताकि हमारा मन शांत रहे, क्योंकि मन शांत रहेगा तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिर घर आने के बाद मुरली सुबह नहीं हो पाती है, ऑनलाइन हम पढ़ लेते हैं उषा बहन जी का, तो आते समय फिर ऑफिस से लौटते समय हम शाम की मुरली अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर घर का खाना वाना जो भी है और फिर रेस्ट।
0: जी
2: ऐसा।
0: निशा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सुनने वाले ये भी सोचते होंगे कि मेडिटेशन या ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होगा, जॉब करने में ही हमारा टाइम बहुत चला जाता है, और उसके बाद घर पे आते हैं तो घर पे भी काम रहते हैं, तो कैसे हम लोग इस मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें। लेकिन आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बात तो निश्चित हो गया कि आप काम करते हुए, अपने प्रोफेशन को संभालते हुए, घर संभालते हुए भी मेडिटेशन को आप समय दे सकते हैं। और इसमें करना क्या है, जैसे डेली रूटीन में आप हर चीज़ के लिए टाइम देते हैं, खाने के लिए देते हैं, नहाने के लिए देते हैं, आप जॉब के लिए देते हैं, पढ़ाई के लिए देते हैं, तो उसी तरह एक थोड़ा सा जो स्लॉट है आधा घंटे का आप इसमें भी दे सकते हैं, जैसे आपकी अंतर आत्मा की जागृति के लिए ये समय है, और यही इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है जिसमें आप अपने आप को बूस्टअप करते हैं, आप शक्तिशाली बनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका मेडिटेशन से बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाती हैं, और लाइफस्टाइल अगर आप इस तरह का जो लाइफस्टाइल बताया जाता है उसको अगर आप अपना लेते हो तो आप हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हो। निशा जी, आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो ज़रूर हमें बताइए एक लाइन।
2: जी, इस समय तो मुझे एक ही गीत याद आता है।

क्या बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, विशेष मुलाकात। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी को निशा जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने का जो है जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो गई होगी, तो जरूर इस जिज्ञासा को जो है बढ़ाइए। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं निशा की जो बहन है उनसे बात करेंगे, पूजा जी से। पूजा जी जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम है, तो उनका अनुभव हम लोग सुनेंगे, अभी जानकारी लेंगे उनसे कि उनका अनुभव क्या है। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति भाई जी।
0: ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं, और आपको सुनकर देखकर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर स्टूडियो में आप आए हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, हमारे श्रोता मित्र भी आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। करंटली मेरी एजुकेशन एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से हुई है, पर अपॉर्चुनिटी के दौरान मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और चूंकि वर्क फ्रॉम होम है और जिससे हमें ज्ञान योग का भी समय मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से, तो मैं इस जॉब को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रही हूँ। और साइड बाय साइड इस पढ़ाई के साथ मेरी लौकिक दूसरी पढ़ाई भी शुरू है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है तो उस हिसाब से।
0: तो कंपटीशन में कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं?
1: मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको।
1: बाबा मदद करते हैं और हम कर रहे हैं, बस मिलते हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: बाकी रही दिनचर्या की बात, तो यही लगभग सेम ही रहेंगी निशा बहन के जैसे, अमृत वेला। फिर पर मुझे घर की सेवा कम ही मिलती है क्योंकि बहन है, तो उस समय में मेरी कंपटीशन की जो लौकिक पढ़ाई है मैं उस समय को उसमें लगा लेती हूँ। और फिर देर 10 बजे से, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम है तो समय का ऐसा कोई बंधन नहीं है, तो कोशिश यही रहती है कि मैनेजमेंट चलता रहे, टाइम अलॉट कर दूँ हर सेक्शन को, तो ताकि दिन मैनेजेबल रहे,
0: बिल्कुल
1: एकदम टाइम पे आके ब्लंडर ना हो जाए। तो 10 बजे से 11-12 बजे तक ऑफिस का काम, फिर 12 से 1 बजे तक खुद की चीज़ें, कुछ कभी बीच में कनेक्ट होना, मेडिटेट करना, मुरली के 1-2 पॉइंट रिवाइज कर लेना जो सुबह में सुनी हो ऑनलाइन के जरिए उषा बहन जी की, और फिर आफ्टरनून में थोड़ा और वापस से ऑफिस का काम रीगेन करके, और किसी दिन अगर ना रहे तो वापस अपनी पढ़ाई ले लेते हैं।
0: सही है।
1: जिससे वो भी मैनेज हो सके, बाबा को बुला के वो ऑफिस की पढ़ाई ले लेते हैं। फिर दीदी का बेटा है तो उसको स्कूल से लेके आना पड़ता है, उसको स्कूल से लेके आना, उसको सुलाना, साथ में साथ खुद भी रेस्ट कर लेते हैं। फिर इवनिंग को नमाज शाम के बाद मुरली क्लास अटेंड करने चले जाते हैं।
0: चलिए, अब यहाँ पर 3 दिन का जो मेडिटेशन सेशन आपने पूजा जी अटेंड किया है
1: जी,
0: तो इसका जो अनुभव है वो क्या है, किस तरह से आपको जो है अपनी आत्मा की ज्योत उजागर हुई हो या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, कुछ अच्छा अनुभव हुआ हो, वो शेयर कीजिए
1: जी। सबसे पहले तो मैं जिस दिन आई थी, न सिर्फ आने की बात
0: जी, जी, जी।
1: मेरे बैक ऑफ द माइंड ये एक चीज बहुत रहती थी कि क्योंकि बाबा दिखते नहीं हैं, वो निराकार है। हालांकि मैं ज्ञान में हम पहले से, बहुत समय पहले से आए हैं
0: जी, जी।
1: पर एक था, और बाबा की मदद ऐसे नहीं कि कभी नहीं मिली है, जिस दिन से आए हैं उस दिन से मदद है, पर एक चीज थी कि वो दिखते नहीं है, तो मन, क्योंकि लौकिक पढ़ाई वाले हैं तो थोड़ा साइंस का एक रहता है ना, जो चीज दिखती है उस पर थोड़ा ज्यादा बिलीव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस बार जब हम पांडव भवन से वापस आए, और मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने वो पुराने टाइम की 1970s की 60s की बाबा की स्टोरी हिस्ट्री पढ़ी थी, पर मुझे वो सिंधी की कोई मुझे बताए कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था
0: जी, जी, जी।
1: तो आज एक बहन मिले सिंधी जो कि बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने जब बताया कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई थी, और मुझे काफ़ी बिलीव हुआ, और पांडव भवन में और मेरे जो भी संकल्प थे, क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स मुझे मिलते जा रहे थे, मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ रहा था, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जा रही थी कि मुझे वो आंसर मिल रहे थे।
0: अरे वाह।
1: और मुझे वो फीलिंग हो रही थी।
0: क्या बात।
1: तो अब मेरा निश्चय थोड़ा और पक्का हो गया है कि परमात्मा तो है ही है, प्लस वो मेरा बाप है, और मैं भाग्यवान हूँ, ऐसे ही सिर्फ समान नहीं है, मैं सच में भाग्यवान हूँ।
0: तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने फील किया है, और मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव जो है करने में थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है, थोड़ा आपको जो है इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको संयम नियम के साथ विधिवत मेडिटेशन को जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो पूजा जी ने किया है। तो अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे लाइफ में कई बार जो है उतार चढ़ाव हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है हमें कंप्लीट करना है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं?
1: इस समय को ध्यान में रखते हुए मेरे सामने दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पिछाड़ी का समय है तो मुझे जल्दी से जल्दी न्यारा भी होना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे कर्म और जो ड्यूटीज़ है वो छोड़ देनी है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपनी लौकिक ड्यूटीज़ भी पूरी करती रहूं, और वो बाहर से दिखने में भली लौकिक है, असल में देखा जाए तो वो एक अलौकिक ही है, और वो एक आत्मा के लिए ज़रूरी चीज़ है। अगर हम उसको भी, वो भी परमात्मा कार्य ही है, वो सिर्फ बाहर की दुनिया, क्योंकि रील है, वो सिर्फ बाहर ही है। रियलिटी तो सिर्फ एक ही है कि परम धाम है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो रास्ते में जो भी कुछ आ रहा है बस करते जाना है, वो चाहे जो भी कुछ हो, और मंजिल सिर्फ एक ही रखनी है कि न्यारा हो सकूं तो सबसे डिटैच रहूं।
0: चलिए पूजा जी, काफ़ी अच्छा आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा हमें, और आशा करूंगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके अलौकिक और मेडिटेशन के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आपने साझा किया हमारे साथ में। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
1: थोड़ा संयम रखे, खुद पे विश्वास रखे। अगर स्व पे विश्वास नहीं होगा तो शायद सामने से कई चीज़ें आएंगी पर आप नहीं समझ पाओगे। खुद पे विश्वास भी ज़रूरी है, सिर्फ दूसरों, मतलब सिर्फ दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेना है, खुद पे विश्वास रखे, और जो सामने से चीज़ आ रही है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे, और दी बेस्ट, परमात्मा जो कराना चाहते हैं उसके लिए रेडी रहे।
0: क्या बात। चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। और मैं चाहूँगा कि कोई अगर गीत आपको पसंद आता है तो कोई एकाध गीत जो बहुत ही आपको लगता है कि बार बार सुनना चाहिए, तो ऐसा कोई गीत है उसका लाइन बताइए।
1: मुझे अभी इस मोमेंट तो वैसे मुझे एक दादी जानकी जी के स्मृति, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो एक गीत कंटिन्यू बजे जा रहा था, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। इससे एक्चुअली मुझे थोड़ा पर्सनल टच भी है सिंधी के साथ, तो ये जो इलाही वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत सारा
0: जी,
1: तो मुझे काफी कनेक्ट फील होता है।
0: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंड बहुत ही प्यारा सा अलौकिक जो गीत है, स्पिरिचुअल सॉन्ग है, वो आपने याद कराया है, तो ज़रूर सुनेंगे हम थोड़ी देर में। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने पूजा और निशा जी को सुना, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिला बैठे बैठे, और मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके दिल पर कहीं ना कहीं एक जो है मोमेंट ऐसा भी हुआ होगा कि जहाँ पर आपकी विशेष मन ने कहा होगा कि क्यों नहीं हमें भी इस चीज़ को सीखना चाहिए, समझना चाहिए क्या है मेडिटेशन, क्या है ब्रह्म कुमारी फिलॉसफी। तो निश्चित तौर पे अगर आपका संकल्प इस तरह से मन ने आपको बताया होगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर की ब्लेसिंग ही समझ ले कि आपके पास ये थॉट आया है। तो इस थॉट को प्रैक्टिस कीजिए, अभी नज़दीकी अपने सेंटर पे या किसी को, अपने दोस्त को जो ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ उन्हें कॉल करके थोड़ी जानकारी ले और विजिट करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, और आप पर हमेशा ईश्वर का ब्लेसिंग हो और ढेर सारी खुशियों के साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ अच्छे अनुभवों को लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बात करते हैं विशेष 3 अगस्त 2026 की। तो 3 अगस्त अपने आप में एक अनूठा इतिहास लेकर हमारे बीच में आया है, तो एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हरो जी नमस्कार।
1: अभी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ, चटाना से। कैसे हो
0: सुरेश भाई? बोलिए, स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे बैठे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी हमारे जो पूजा जी से, बहुत अच्छी बातें आपने की, अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। तो सबको हमारी तरफ से आज के दिन की शुभकामना सर। सब हफ्ते की शुरुआत है, सोमवार है, सभी को आज की भोले बाबा की कृपा बनी रहे सब पर,
0: जी जी
1: रहे, मस्त रहे। हमारी तरफ से आपको भी नमस्ते सर। और बहुत बारिश आई अब तो,
0: बारिश का क्या हाल है?
1: नहीं अभी तो बंद है सर, अभी नहीं है, 2 दिन से बिल्कुल बंद हो गई है। और ठीक है मौसम, अब कोई दिक्कत वाला तो नहीं है, क्योंकि कई सारी मुसीबत तो आई है, हमारे तो नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में, सूरत में लोग परेशान हो गए, करोगे पानी कुछ का कैसे, कैसे खाए पिए, कैसे क्या करें, ऐसे ही हाल हो गए थी। लेकिन हमारे तो यहाँ हिसाब से बारिश आई है, परमात्मा ने ज्यादा नहीं दी है। तो सबको आज के दिन की शुभकामनाएं सर, हम नमस्ते। और अगर सोमवार है तो आपके हिसाब से अच्छा गाना चला देना कोई भोले बाबा का। और हमारे बुरा राम जी हैं, बुरी लाल को, कृष्ण भाई, सभी हमारे तरफ से नमस्ते बोल देना सर। ओम शांति।
0: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने आप बहुत अच्छी बातें बताई, और गुजरात में जो है ख़ास बाढ़ के कारण बहुत जीवन अस्त व्यस्त है, और सूरत में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और आपके आसपास में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम आए दिन समाचारों में सुनते रहते हैं। तो जिनका भी नुकसान हो रहा है, उन सभी को हम याद करते हैं और उनके लिए शुभकामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उनका रिकवर हो जाए और उनका जीवन सामान्य हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ, वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में AI की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है की ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
4: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए वो उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में 1 आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
7: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने
8: जी जी
9: बारिश वगैरह बारिश है क्या?
8: बारिश चल रहा है थोड़ा थोड़ा, धीमी धीमी, रिमझिम।
9: अच्छा, रिमझिम सावन में तो ऐसा ही आएगा ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल।
9: हाँ बस वो सुबह वाला गाना लगा दो ना फिर, सावन आया बादल चाहे।
8: ठीक है ठीक है, ओके जी।
9: ठीक है
8: जी,
9: बस आप सब सबको हमारा प्यार बोलना
8: जी। नमस्कार, आप सुनाए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं हम लोग श्रावण सोमवार के बारे में। और श्रावण सोमवार को भगवान शिव जी के निमित्त व्रत किए जाते हैं। इस माह में शिव की पूजा का विशेष विधान है। कुछ वक्त तो पूरे मास ही भगवान शिव की पूजा, आराधना और उपवास किया करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
9: नगरी द्वारे द्वारे दूली रे सावरिया, कभी जाते थे मेरा प्यार बड़ा नमस्कार जी जाते थे सुनिंदा कर रहे, और उनके लिए जाते थे आनंद लीला के सावन में भी बात कर रहे थे। दिन दिन बारिश बरस रहा है
8: जी जी,
9: उसकी खुशियों के साथ में आपको सावन में सोमवार के बारे में कोई गाने वाला सुना दे और सुना देना, फिर लूंगा मैं भी मजा ले लूंगा, आनंद ले लूंगा
8: जी जी। जी जी जी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, बातें हो रही हैं और श्रावण की इस खूबसूरत जो मौसम है इसके बारे में बातें हो रही हैं। और आइए, गुड़ीलाल जी, सुरेश जी याद कर रहे थे, इसके साथ ही शिव के प्रति ये शुभ दायिनी और फलदायिनी जो है मास मनाया जाता है, और श्रावण महीने का ये सोमवार जो है सबके लिए प्रिय और सबके लिए खूबसूरत जो है संदेश देता है। भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और उनका प्रसन्नता मना ही आपका जीवन का प्रसन्नता बढ़ जाएगा। व्रत में भगवान शिव की पूजा करके एक समय ही भोजन किया जाता है, और उपवास में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर शिव पक्षम पंचसार मंत्र का उच्चाप करते हैं और इसके साथ ही पूजा करते हैं। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर बम बम भोले। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ कि आप बम बम भोले को याद करते हुए अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बना रहे हैं। श्रावण महीने की इस खूबसूरत सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, श्रावण महीने की कहानी अगर बताया जाए, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है और दिन रात उसे यही चिंता रहती सताती कि एक बच्चा होता तो अच्छा होता। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन सम्पत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव जी के प्रति पूजा अर्चना किया करता और प्रार्थना करता कि सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता और अपनी याचना करता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत भी कर रहा है और पूजा नियमित कर रहा है और भगवान शाम को ये घी का दीपक भी जलाता है आपके लिए। आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुए, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उसे फिर सताने लगी, उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता चल गया था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर को मामा दीप चंद को बुलाया, उनके मामा को, और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अगर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया अमर, रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करते आगे बढ़ते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की अन्य जो है एक कन्या थी, विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजा गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से कानी होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी और फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: शांति सुगना बहन, गुड मॉर्निंग।
1: आज सोमवार है, तो उसी
0: जी जी जी
1: बाबा का गाना सुना दीजिएगा। मेरी पूजा श्री मेरा मंदिर है
0: ना। बिल्कुल बिल्कुल जी सुगना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ओम शांति सुखना बहन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत सुगना बहन ने याद किया है तो मैं कोशिश करता हूँ उनको गीत सुनाऊँ थोड़ी देर में। अब बातें आ रही थी, हम लोग कर रहे थे बातचीत, व्यापारी का बेटा अमर को उनके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया गया और जाते जाते रास्तों में हर जगह जहाँ पर भी उनको रात्रि विश्राम का समय मिलता वो ब्राह्मणों को भोजन कराते और अपनी यात्रा पर आगे चलते और एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की कन्या का विवाह बड़े खुशी के साथ मनाया जा रहा था। निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने का कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय रहता था कि राजा को इस बात का पता चलने से विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आ गया और उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं, विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। अब उस बंदे के दिमाग में ये बातें आ गई और अमर और इनके मामा दीपचंद जो है उस नगर में उसी समय पहुंचे थे और उस समय उन्होंने अमर को देख लिया था और वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से फिर बातें की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ जाने थे। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती ये वही उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में बुला लिया और कुछ दिन उनके महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी प्रसन्नता से खिल गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कर जो आपने तैयारियां की थी उसे देखकर सुनकर प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत का जो कथा सुनाते हैं तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऐसी बातें लिखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से एक बार एक और सुंदर जो गीत है भोलेनाथ का आपके लिए अभी सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। श्रावण सोमवार के एक खूबसूरत भजन आपको सुनाए, बहुत ही खूबसूरत नए भजन आपको सुनाए। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। आइए इसके साथ ही आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आज एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों का जन्मदिन है, बड़ा ही खूबसूरत जो है, जाने माने राजनीतिक और भारतीय विशेष राजनेता शांतनु ठाकुर का भी जन्मदिन है। 1982 में इनका जन्म हुआ था। भारत की महिला लॉन बॉल टीम की खिलाड़ी लवली चौबे, 1980 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिकाओं में से एक थी शशिकला, 1933 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त, 1846 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। मैथिली शरण गुप्त एक बहुत ही पॉपुलर कवि है जिन्हें आप सभी जानते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर क्रांतिकारी और पाकिस्तान के प्रथम उच्च आयुक्त श्री प्रकाश जी का जन्मदिन भी आज ही है, 1890 में इनका जन्म हुआ था। भारत के बहुत ही पॉपुलर गीतकार और शायर शकील बदायूं ने इनका भी जन्मदिन आज है, 1916 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के क्रिकेटर अपूर्व सेन गुप्त, 1939 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय क्रिकेटर बलविंदर संधू, इनका भी जन्मदिन आज है, 1956 में हुआ था इनका जन्म। भारतीय क्रिकेटर गोपाल शर्मा जी का भी जन्मदिन आज है, 1960 में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी वर्तमान मोहन भागन एसी के लिए खेल रहे हैं प्रसिद्ध सुनील छेत्री, इनका भी जन्मदिन आज है, 1984 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारत की सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह, इनका भी जन्मदिन आज है, 1941 में इनका जन्म हुआ था। भारत की शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्रा का भी जन्मदिन आज है, 1936 में इनका जन्म हुआ। और आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, जी हाँ, इनका नाम है विष्णु भूषण हरिचंद्र, इनका भी जन्मदिन आज है। और 1934 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो आइए इसके साथ ही भारतीय संगीतकार की जोड़ी तथा बाल अभिनेता जयदेव जी का भी जन्मदिन आज है, 1919 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार, विचारक, लेखक, दार्शनिक, भविष्यकार और आज़ादी के सेनानी रोहित मेहता का भी जन्मदिन आज है, 1908 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी खुशियाँ और हैप्पी बर्थडे।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए और श्रावण सोमवार के गीत गुनगुनाते हुए, भोले बाबा का नाम स्मरण करते हुए आप आज का दिन बिताइए, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको शक्ति मिलेगा और आप उस प्राण धन प्यारे के नाम से अपने जीवन को समर्पण करते जाइए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा की तीन लड़कियां थी, वह तीनों ही बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पालना मिली थी। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही है। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया, तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, मेरे भाग्य में जो सुख संतोष वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ ना, कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है, आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेगी। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती, यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़ करके जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे. जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे. कितनी बार देखिए, अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा. तो ऐसी स्थिति में आप है ना, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा. ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए. जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं. तो थकान तो आती है, स्वाभाविक है. भले हम माइयों से काम लेते हैं, लेकिन माइयाँ भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है. तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है. रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा. अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से. दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे. तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के. सुराख हो कि आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर. फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा. अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा. फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए. इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा. अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ. देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं. नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के, सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते. लेकिन मीठा ज्यादा खाते हैं ना, तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी. तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहां पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके. फोहे को नहीं लगाना है, वहां घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी. केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी. अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए. इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं है ना, मीठा ज्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है. तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है. और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए. केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में ही मर करके बाहर निकल जाएंगे. देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है. तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं. तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है. बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो. तो इसे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो. चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का। बहुत सुंदर प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। धात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो, तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है। जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में। यूं गई और यूं आई, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री।

0: हरी बहन जी।
1: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
0: बराबर स्वागत तो बराबर किया है और दीपावली भी आ रही है
1: जी,
0: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो नहीं चाहिए
1: जी। बोलिए आज के।
0: और सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
1: धन्यवाद,
0: उसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
1: जी, थैंक यू।
0: और देखिए वो तो चलो इससे चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
1: जी।
0: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब जैसा माहौल होता है ना वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं
1: जी।
0: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी बच्चों माता पिता और बच्चों की
1: जी,
0: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो वो अपने बच्चे देख रहे हैं तो वो ही सलूक अपने साथ में होने वाला
1: जी,
0: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है
1: जी।
0: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब
1: जी।
0: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहले बच्चों की गुरु होती है माँ
1: जी,
0: सबसे पहली गुरु वो है
1: जी।
0: तो घर में जो बच्चे सीखते हैं ना वो ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल में जाके मतलब पढ़ने जाता था तो पेंसिल वगैरह चुराता था
1: जी,
0: तो उस समय उसकी माँ ने नहीं रोका तो उसको बढ़ावा मिल गया
1: जी।
0: तो धीरे धीरे बड़ा होके वो बहुत बड़ी चोरियां करने लगा
1: जी।
0: तो उस समय उसको पुलिस ने पकड़ा और अंतिम इच्छा
1: फांसी पर
0: तो बोला मेरी
1: जी, फांसी की सजा दी गई उसको, तो उसने माँ को याद किया।
0: हाँ तो माँ का कान उस समय काटा, किस लिए काटा वो आप समझ सकते हो ना
1: जी,
0: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता
1: जी,
0: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल बहुत सुंदर, आभार आपका।
0: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके
1: जी। जी बहुत
0: बहुत जी, ये उसका बच्चा है
1: जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माई होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी हैं वो भी जरूर जवाब देवे। और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो
2: हेलो, नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली।
2: हाँ काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो चार पांच दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
1: क्या बात है, और
2: जी और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ बहन जी, आपको प्रणाम पूरे रेडियो परिवार को।
1: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
2: प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
1: जरूर,
2: जो सही है गलत है वो तो आप ही
1: कोई नहीं
2: जानते हैं।
1: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
2: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनिए से जो ऊपर का होता है उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए और पीले फल भी खाने चाहिए और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान है वो भी खानी चाहिए और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
1: जी जी,
2: और नमस्कार सभी श्रोताओं को। फिर से
1: विषय में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
2: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा कि प्यार से रहना चाहिए, बच्चों से प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम का समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, जो ये मोबाइल इंटरनेट का युग आ गया है तो वो मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाती है, तो नहीं तो वो भी कोई ऐसी अच्छी जानकारी उसे भी मिलती है नहीं ले पाती है, तो ज्यादातर तो गेम ही खेलती है या वीडियो देखती है, तो माता पिता को और किसी रिश्तेदार का कॉल भी फोन के अंदर आता है तो वो भी नहीं उठाती है, जैसे घंटी साइलेंट कर रख देती है बच्ची। तो ऐसे माता पिता होते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दे, अच्छी कोई बातें बनाए, अच्छी कहानियों उनको सुनाए, और अपने घर में और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है तो बच्चे अपने अच्छे बनेंगे और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
1: बहुत खूब आभार आपका दयाराम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, पड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए, प्रश्न है ये, फिर विषय बाद में बता।
3: हाँ जी, तो ये हरे शाक भाजी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक लेकिन माता का दूध जरूरी है।
1: जी। अच्छा, और आज का विषय ये है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
3: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार होंगे तो बच्चों में आएंगे बहन जी।
1: जी,
3: जो पूरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे, बड़े बच्चे देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी बात करूँ तो मोबाइल,
1: जी
3: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे।
1: जी,
3: ये एक आज तक का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है, और जैसी बात करनी है घर में बच्चे न सुने, ऐसे कोई संस्कार इससे न आए, ऐसी हमें घर में रहना है।
1: जी
3: जी बहन जी,
1: चले बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका।
3: जी बहन जी, सभी दोस्तों का नमस्कार।
1: जी, तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं, तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे, तो भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के, क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है, तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं, अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो,
4: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
1: जी।
4: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जब आपने कर्मों का विचार दिया, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
1: जी, थैंक यू।
4: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
1: जी,
4: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है
1: जी,
4: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
1: जी,
4: अच्छा विचार वाला,
1: जरूर जरूर।
4: और आप दो बात बहुत अच्छी बताई, आज तो बच्चों की बात बताई गई, तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में, कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं बताऊं हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूं मैं
1: जी।
4: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी कि बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
1: जी, जी।
4: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
1: जी,
4: कई परिवार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा
1: जी, जी। और आज का प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस तरह का भोजन करना चाहिए और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए।
4: तो धात्री माता को वो समझा नहीं देती, मैं कब से वो समझना,
1: जैसे नन्हे बच्चे होते हैं ना, नन्हे बच्चे होते हैं, वो माँ का फीड करते हैं, है ना, 8 महीने के, साल भर के बच्चे माँ का दूध लेते हैं वो, तो माँ को किस तरह का भोजन करना चाहिए ऐसे समय में और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए?
4: वो तो दीदी क्या है, भोजन में तो उसको जरूरत है, कोई जो हमारे यहाँ दाल भात बोलते हैं, अच्छी खुराक, जो हल्की खुराक
1: जी जी,
4: ज्यादा भारी खुराक खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए भारी पड़ता है,
1: जी जी, हल्की
4: खुराक खाए, लीला शाक भाजी खाए, दूध मात्रा में लेना भी जरूरी है, क्योंकि दूध से भी बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी दूध पिलाना जरूरी है। अभी तो क्या दीदी पाउडर आ गया है, मैंने बताया कई लोग को पाउडर पिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चा इतना मोटा हो जाता है, मैं मेरे परिवार की बात करूं
1: जी,
4: तो इतना पहले दुबला पर क्या था, वो पाउडर का एक डब्बा उससे पिला दिया था, आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला इतना बारीक ही हो गया कि हमने पाउडर पिला है
1: जी जी,
4: ऐसा तो पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए
1: जी, बिल्कुल बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए जी,
4: नहीं बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत
1: जी,
4: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है तो, लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको, अच्छा दूध पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे तो हम तो बकरी के दूध पीते थे,
1: बहुत अच्छा है बकरी का दूध तो सबसे बेस्ट है,
4: हमारे घर पे ही बकरियां थी जब हम छोटे थे, तब हमारा दो बकरियां थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते बड़े हुए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बकरियां का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है
1: जी,
4: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, आज तो बस जो आता है वही दूध पिलाता है, छली रहता है वो
1: जी जी,
4: बस लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी, माँ भी अच्छी रहेगी
1: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, जुड़िएगा, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो, आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो, आइए सुनते हैं।

0: रुक रुक रुक। कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा इस विषय में, चर्चा जरूर आप करिएगा। हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की, कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए, घर की बात तो पहले ही होती है, और आप सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे, या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे। तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है, लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, जाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, अब वो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जा तू यहाँ से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर, तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज तो मुझे आने दिया घर में। क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे है वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाराम जी कैसे हो?
3: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
2: जी।
3: घर बैठे वो गंगा आती है
2: जी,
3: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आते हैं, सुनते रहते हैं
2: जी जी जी।
3: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
2: जी,
3: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते हैं
2: जी,
3: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
2: जी,
3: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दाल दर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
2: जी।
3: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कूपी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
2: अच्छा
3: एक बात

0: दूसरी बार अभी मैं एक दुकान पे बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा
1: जी,
0: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
1: ओहो,
0: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, क्या वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मार साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं, ये तो क्या पीते है, और को मौका मिला तो वो पी भी लेते है क्या?
1: अब
0: ऐसा माहौल भी बन रहा है
1: जी।
0: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, तो बच्चों में क्या होता है कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ का अलग संस्कार होते हैं और ननियाल मामा की माँ के अलग होते हैं
1: जी।
0: ये दोनों का तालमेल बिठा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
1: जी,
0: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गाँव में घूमते और जगह जगह जा करके
1: जी।
0: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
1: जी,
0: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
1: जी।
0: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, और वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है ना
1: जी,
0: और क्या क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसका ध्यान नहीं रखते हैं। थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताओ आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
1: जी।
0: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घर वाली ऐसी क्या मतलब झगड़ा करती है? तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे सासू जी के पास में जाओ ना।
1: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूं मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं, वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं, तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
2: हेलो बहन जी, परिवार के
1: हाँ जी कंचन भाई,
2: ऑफलाइन ऑनलाइन
1: ऑन एयर
2: जी, परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे हैं ना वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
1: जी।
2: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो ये अभी मैं ही बताऊं, मेरे बेटी का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
1: जी।
2: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है इससे सीखा है
1: जी।
2: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
1: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए ये माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे, खुद का घर हो, फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे। इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी, अड़ोस पड़ोस का, साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है बड़े होने के बाद, तो वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है, वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को, कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते हैं। देखते हैं बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते हैं कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है, पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। अब माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊं, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, बाटी का कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं या लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस, इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में, फिर निकाल दीजिए बेक करके। ठीक है, अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल

तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं, और दूसरी बात है कि ये जले नहीं। आंच इस तरह आपको रखना है, ठीक है। ओवन में तो हमको पता होता है भाई इतनी डिग्री में कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आँच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर, ठीक है। नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो वो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती। स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो, ठीक है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर, और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सबके ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तियां भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। इतनी देर आपको बेक करना है, लेकिन जलाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए टमाटर पनीर पिज्जा तैयार है, तो देर किस बात की, भोग लगा देते हैं भाई, बच्चे तो वही इंतजार कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप टमाटर पनीर पिज्जा रखिए, और भी जो कुछ बनाया है आपने वो रखिए, और तुलसी पत्र रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो, कौन से पिज्जा का, पनीर टमाटर पिज्जा का, ठीक है। और देखिए आपको भी अगर रेसिपी आती है सात्विक रेसिपी तो जरूर आप भी दे सकते हो, और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे, ठीक है। आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए, जवाब जरूर देंगे। नंबर है 9414151415 और सुनेंगे गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चे संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो तीन तीन चार चार बच्चे होते थे, पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा। माता पिता निश्चिंत है कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे एक या दो ही होते हैं, और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था, आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से, और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी, तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे 9 महीने 10 महीने के 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है, और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपना ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसेका खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे, और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए। चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो, ड्रैगन फ्रूट है उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो, तो जो मेस हो जाते हैं हाथ से उसका आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते, जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते हैं क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी, इस तरह भारी खाना नहीं खाना है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बहार सावन की आई, हे बहार सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ा कर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ा कर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM में कार्यक्रम हिंसा को नो में खूब खूब स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि लिंग और अंतर विभागीयता के अंतर्गत निम्न वर्ग समाज के लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। एक तो उनको जाति में बांट दिया जाता है, फिर ऊपर से ठप्पा भी लगा दिया जाता है कि जो जिस जात का है उसे वही काम करना है। जैसे कि नाई है तो उसे बाली काटने हैं, महिला है तो उसे झापाई कराना है, चमार है तो उसे जूता ही सिलना है, कुम्हार है तो उसे मिट्टी के बर्तन ही बनाना है, वगैरह वगैरह। निम्न वर्ग समाज की महिलाओं के साथ तो और भी गलत व्यवहार होता है। एक तो वो महिला है, ऊपर से निम्न वर्ग की है, तो फिर उनके साथ क्या क्या नहीं होता है पूछिए मत। महिला चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसे जाति के अनुसार काम तो करना ही है, ऊपर से जजमान के हिंसा का शिकार भी बनना है। जैसे बात बात पर शक करना, यहाँ नहीं छूना वहाँ नहीं छूना, वगैरह वगैरह। वैसे बड़े शहरों में इस तरह का व्यवहार न के बराबर है, फिर भी छोटे छोटे गांवों में आज भी इनके साथ इस तरह का व्यवहार होता ही है। तो सुनेंगे आप एक ऐसा नाटक जिसका विषय है लिंग और अंतर विभागीयता।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के आंचल में स्थित एक ऐसे गांव में, जहां कुछ परिवार रहते हैं जो निम्न वर्ग के हैं, और इनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और यह किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: सीता, ए सीता सुन, अपना सेठ जी का घर में शादी है तो काम करवा थूपरी जाजे, मार थोड़ा काम है इन वास्ते।
3: मैं तो कोनी जाऊं था सेठ जी का घर, बड़ा बड़ा घर रहा चोचला ही न्यारा हो गए, एक तो पिदेला हो गए, ऊपर से इज्जत भी कोनी करे, गलत नजर से देखे।
2: थारी बात साची है, फिर भी काई करा सीता, जानो तो पड़ी, जो अपनो काम है आपा कोनी करा तो कुन करी, अन पैसा की भी तो जरूरत है।
3: मैं पढ़ी लिखी हूँ तो और कोई काम भी कर सकू।
2: अपनो समाज पढ़ाई कोनी देखे, काम कोनी करा तो ताना मारे, अन खरी खोटी सुनावे जो अलग।
3: केड़ो सिस्टम है, शादी वे मौत मरकत वे, तो जो जनी जात को विने वो काम तो करना ही है।
2: बात बात में कर जे, पहला जा मोड़ो बेजाई।
3: आपड़ी बाल की छोटी है, मैं क्या जाऊं?
2: अपना पड़ोस वाला चाची राटे छोड़ दे, अनंत तू जल्दी जा।
3: हाँ जाऊं।
1: तो देखा दोस्तों, आखिरकार सीता पढ़ी लिखी होती है फिर भी जाति के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाती है और सेठ जी के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर किस तरह की बातें होती हैं, आइए सुनते हैं।
3: खम्मा गणी सेठानी जी,
4: आगी तू घनी देर लगा दी, कद की थारी बात ना आयलू, टाइम पर आनो जोईजे ना।
3: माफ कर दो सेठानी जी, अबे टाइम पे आऊं।
4: थारो धनी कौनी आईयो?
3: वे काम सुकटी बहाने कया।
4: तू पानी भर दे और झाड़ू पोछे लगा दे, और दूसरी जात की छोरी होवे तो इन्हें बर्तन माजवा के लिए लेना जे।
3: ठीक है सेठानी जी।
1: सीता सेठ जी के घर पर सारा काम फटाफट निपटा देती है और अपने घर जाने की परमिशन लेती है। सेठानी जी फिर से याद दिलाती हैं सीता को बर्तन मांजने के लिए किसी लेडीज को लेकर आने के लिए। सीता उसके लिए हाँ कहती है। तो देखते हैं सीता को कोई बर्तन मांजने वाली महिला मिलती है या नहीं।
5: कटे जाना आया भाभी सा?
3: सेठ जी राटे शादी है तो मैं काम करवाएगी, तू बर्तन माजबा आई कहीं मारे साथ में?
5: मैं तो और भी कटे ही बर्तन माजबा जाऊं, मने टाइम माली तो मैं आपने बताऊं।
3: काई किस्मत है थारी, तू कितनी ऊंची जात की है, पर थारो पति छोटी जात को है, इन वास्ते थने भी एड़ा काम करना पड़े। तू कतरी बड़ी गलती कर दी है घर सु भागन शादी करवा की।
5: भाभी सा, जात सु कोई लेनो देनो कोनी, या तो लोगारी थिंकिंग ही एड़ी बनगी, अणी जात्रा मनक है तो याने यो ही काम करनो। खैर छोड़ो, मने टाइम माली तो मैं जरूर आऊं, से मने आवाज दे जो, ठीक है?
3: ठीक है, मैं भी जाऊं, राम राम।
2: ता तो आगी, तने सेठानी जी कहीं बोलिया तो कोनी, केड़ो रहे हो आज को दिन?
3: सेठानी जी थोड़ा बोलिया, खैर सब ठीक रहो, पर बर्तन माजवा वाली छोरी चारी वाके तो मैं रोशनी ने क्यों?
2: ठीक है, चाल सीता, खानो खाला आपा, अच्छा पाचो सुबह जल्दी उठनो।
1: निम्न वर्ग के समाज में महिला और पुरुषों के साथ तो अन्याय होता ही है, लेकिन उनके बच्चे भी दुर्व्यवहार के शिकार बनते हैं। इधर सीता को अपने पड़ोस में रहने वाली रोशनी बर्तन मांजने के लिए मिल जाती है। अगली सुबह सीता रोशनी को लेकर सेठ जी के घर जाती है। वहाँ पर इनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, आइए देखते हैं।
3: बेटा आप स्कूल जाओ, मैं काम पर जा रही हूँ।
6: माँ आपको पता है रोशनी आंटी की गुड़िया स्कूल लगने आती आजकल?
3: वो क्यों बेटा?
6: मम्मा मम्मा वो बच्चे गुड़िया तो चिल्ला रहे थे नीचे जाके तो नीचे जाती है मुझे दूल्हा जमते तो वो बहुत रोए उसके बाद स्कूल भी नहीं आए।
3: यो तो खूब गलत है, सर बच्चा ने कही क्यों को
6: नहीं चलने कुछ नहीं बोला।
3: केड़ा लोग है, स्कूल में भी भेदभाव, पढ़वा को हक तो हर जात का बच्चा ने है। घना माता पिता भी एड़ा हो गए जो खुद का टाबर ने बचपन से भेदभाव कर वो सिखावे, बच्चा रो कोई दोस्त को नहीं। तू जा बेटा स्कूल, मैं रोशनी चाची ने काम करवा के लिए आवाज दे। रोशनी ए रोशनी चल मारा साथ में काम करवा।
5: भाभी साहब
3: थारी बच्ची कटे
5: घर पे है, पर आप क्यों पूछ रहे हो कई हुआ?
3: अरे भाई स्कूल होनो चाहिए ना इन टाइम पे, इन वास्ते पूछियो।
5: भाभी साहब छोटी स्कूल जावे तो सब बच्चा भी ने चिड़ावे, तू नीची जात की है, अटे मत बैठ, वटे मत बैठ, यो मत कर, वो मत कर। मारी बच्ची खूब रोई तो मैं स्कूल छोड़ा दी दो, और वस्यान भी स्कूल जान कई करी, मारी न्यान लोगा का घर का काम ही तो करना है, तो बस घर को काम सीखो।
3: थारा जेड़ा लोग ही समाज में भेदभाव ने बढ़ावो देवे है। अरे तू स्कूल जाती, टीचर से बातचीत करती, बच्ची पढ़ी तो वे सके आगे जान नौकरी करे और समाज अपने आप ही चुप हो जाए, पर तू तो डायरेक्ट बच्ची ने स्कूल से छुड़ा दी थी।
5: चलो सेठानी जी रो घर आ गयो, मैं बाहर ने उभी हूँ, आप अंदर बोलन आओ।
3: हाँ ठीक है मैं जाऊँ।
4: सीता आ गई तू, बर्तन माजवा वाली ने तो लेन आई।
3: हाँ सेठानी जी बाहर ने उभी है, आप बात कर लो।
4: मैं कई बात करूँ, तू कह दे बर्तन माजे और वीने कह जे घर रे माई कौन आवे, मारे मेहमान है, वीने देख ली तो पानी भी कौन पीवे, समझा दीजिए। ठीक है मैं जाऊँ।
3: रोशनी ये बर्तन पड़े है तू माज दे, मैं भी जाऊँ, मैं भी फटाफट झाड़ू पोछा कर लूँ, पानी भर लूँ, पछे आपा साथ में घरे चला। ठीक है?
5: ठीक है भाभी साहब।
3: ठीक है तो मैं भी जाऊँ, फटाफट आपा काम करा।
7: अरे ये पैसा फीका पड़ा, भाई करूँ अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पैसा है अब मैं किने बताऊँ। ठीक है मैं सीता भाभी जी ने बोलाऊँ।
8: अरे बर्तन धोवा वाली अंदर आ गई? ए ए तू अंदर क्यों आई, चल बाहर निकल। भाभी जी भाभी जी अटावो।
4: अरे तू अंदर क्यों आई, तने कियो तो ने बांधने बर्तन माज।
8: ए छोटी जात वाला विश्वास रे लायक कोनी हुए, चल चल बांधने निकल।
3: काई हो रोशनी?
5: भाभी सा जटे में बर्तन माजरी ही वटे यो पैसा पड़िया हा, और बाने कोई दिखियो नहीं हो, तो मैं आपने केवा का वास्ते मायने आगी।
3: ये लो सेठानी जी पैसा, मैं गरीब हा भले छोटी जात का हा, पर ईमानदार हा, माणी जाति की वजह से माने और माँ का बच्चा ने ठाका जेड़ा मोटा लोग घड़ी घड़ी जलील करो हो, और माँ का जेड़ा छोटी जात वाला सब कुछ सहन करन था को काम करा हो। चल रोशनी चल आपा।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, आज तो काम हो गयो, काले टाइम पे आजो।
1: तो देखा आपने, छोटी जात समझ करके इनसे यह सारा काम तो करवाते हैं, लेकिन बात बात पर इनका अपमान भी करते हैं, जाति को लेकर के ताने भी मारते हैं, और इतना ही नहीं बुरी नजर से भी देखते हैं इनको। तो आइए देखते हैं सीता और रोशनी किस तरह की बातें कर रही हैं, और जब यह काम करके घर पर जाती है तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है यह भी देखते हैं।
5: भाभी सा ये अपने आपने ऊंची जाति वाला समझे है, पर एक आदमी आयो जो दारू पी रखी ही और मने घूर घूरन देख रहे हो, मैं तो दरब गी, वे सके ये पैसा भीका वे वे।
3: तो तू मने क्यों कानी भी?
5: काई केती भाभी सा, ये लोग अपने छोटी जात का समझन कई का कई इल्जाम लगा देवे, अपना साथ में काई भी कर देवे, जाने के ये छोटी जात्रा है, अपनो काई बिगाड़ को नहीं सके, इन वास्ते में चुप रही।
3: असान दरक पासु काम को नहीं चाले, अपनी गलती होवे तो दरपनो, बाकी सुनबा की कोई जरूरत को नहीं, अपनो भी तो आत्मा सम्मान होवे।
5: बात करता करता घर आ गयो, कई ठा नहीं पड़ी, पर यो कई भाभी मारा घर रा बाने अतरी भीड़ क्यों भेरी है, अतरा लोग क्यों इकट्ठा हुआ है?
9: रोशनी थारो धनी अतरो बीमार है तो विने छोड़ने तो कटेगी, बस थने तो घूमबा फिरवारो शौक है।
3: क्यों कई बोल रहे काकी जी आप, या तो मारा साथ में काम करवा आई, काम नहीं करी तो बच्चा ने खिलाई कई, इको को धनी तो शराब में डूबियो रेवे, तो या भी घर में बैठी रही।
9: हाँ ठीक है ठीक है, बड़ी आई काम करने तुन थारो धनी एनी दुनिया में कोनी रहो पांच लो काम आरे निपटानो है
3: ठीक है काकी जी फिर रोशनी ने लाइन मायने जाओ फिर मारा घर वाला ने बुलाई लाओ
2: अरे सीता काई होयो अतरी घबरायोडी काई लाग रही है
3: जल्दी चालो थे रोशनी रा घर वाला रो देहांत हो गयो और लोग भी ने ताना दे देन परेशान कर रहा है
2: अरे लोग क्यों ताना मार रहा रोशनी ने वो तो कई कमा तो भी कोनी ऊपर से शराब पीन रोशनी रा सारा पैसा ले जातो चाल सीता जल्दी चाल
3: अरे थे सब यू काई कर रहा रोशनी रा साथ में चूड़िया क्यों उतार रहा अरे ये तो बाल काटवा की तैयारी कर रहा अरे काला कपड़ा क्यों पहना रहा चलो हटो हटो
9: तो काई करा इको श्रृंगार करा कहीं अबे इन्हें किनो दिखानो है इको पति तो गयो भगवान रे अठे अने अत्री तो ठा वेणी जोजे के पति गुजरिया बाद महिला ने केन रहनो जोजे अबे आ सवा महीना तक गर्ती बारे नहीं जा सके कोई भी शुभ कार्य भी ना कर सके ने इको पति रो सारो कामकाज इन्हें ही करनो है
3: कामकाज बोले तो
9: क्रिया कर्म सु लगान बारहवीं तेरहवीं रो तारो का
3: यो सब कही है आदमी का बदला में अगर या चली जाती तो यो सब करतो ही को आदमी
9: पागल हो गई कर तू वो तो आदमी है वो तो चाहे तो दूसरी शादी कर सके पर आदमी रह गया बाद औरत कोई भी ना कर सके बस पूरा हो गयो वे को थे सुनियो को नी आपरा पड़ोस में बिरजू रे पत्नी रो देहांत हो गयो तो बिरजू दो महीना बाद ही शादी कर ली दी बच्चा ने कौन राखे
3: यो खर्चो होई जो कौन उतारी
9: वो तो या जाने समाज में रहना हुए तो सब करनो पड़ी
2: सीता तू वचे मत पढ़ जो समाज को मामलो है
3: अरे की करनी पड़ू सगला जना जाने रोशनी रे घर भी किराया रो है या लोगारा घर का काम करन खुद को पेट भरे और खुद का बच्चा ने पाले आदमी दूसरी शादी कर सके क्योंकि उनका बच्चा ने कौन पाले तो रोशनी रा बच्चा ने कौन पाली आदमी बाने जा सके सारा प्रतिबंध महिला रा लिए है औरत के यो को नहीं करनो औरत के वो को नहीं करनो समाज यो के ही फलानो वो के ही आदमी ने पूरी छूट और औरत का साथ में ही सारा नियम लागू एड़ो क्यों आखिर समाज बनायो कौन आपा ही ना समाज की प्रथा एड़ी सोच ने बदलो और समाज में महिला व पुरुष रा बच्चे समानता लाओ रोशनी यो काई भी नहीं करे काम भी करी और बाने भी जाई मैं देखू कौन है इन्हें मजबूर करवा वाला
2: वाह सीता वो तो थारा साथ में हूँ
1: तो देखा दोस्तों निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ किस तरह का अन्याय होता है भल वो ईमानदार है फिर भी उसको शक की नजर से देखा जाता है कुदृष्टि भी डालते हैं जानते हैं कि अगर पकड़े भी गए तो यह किसको शिकायत करेगी क्या कर लेगी हमारा वगैरह वगैरह अगर पति की मृत्यु भी हो जाती है तो सारा दोष पत्नी पर थोपा जाता है जैसे पत्नी ने कोई गुनाह किया पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी घर से बाहर नहीं निकल सकती लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति बाहर भी निकल सकता है दूसरी शादी भी कर सकता है सब कुछ कर सकता है तो यह समाज के नियम बनाने वाले इंसान ही है सीता ने बहुत अच्छा फैसला लिया और रोशनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया बस आवश्यकता है हिम्मत बनाए रखने की
0: तो देखा दोस्तों निम्न वर्ग की महिलाएं किन हालातों से गुजर रही है एक तो ऊंची जात वालों का प्रेशर ऊपर से समाज की कुरूतियाँ इससे महिलाएं टूट जाती हैं और स्वयं के प्रति ठोस डिसीजन नहीं ले पाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर सीता जैसी महिलाएं भी होती हैं, जो स्वयं को तो मजबूत बनाती ही है साथ ही दूसरों की मदद भी करती है जैसे रोशनी की रोशनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जिससे कि उसका और उसके बच्चे के जीवन में बुरा प्रभाव पड़े दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हमारे आसपास भी इस तरह का माहौल तो नहीं है अगर है तो सीता की तरह हमें भी मदद करनी चाहिए तो आशा करते हैं कि आपको आज का विषय है लिंग और अंतर्विभागीयता बेहतर समझ में आया होगा अगर आपको कोई सुझाव या अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारा नंबर है 9414151415 ऐसे ही कार्यक्रम लेकर मिलते रहेंगे अभी आपसे लेते हैं अनुमति और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर इस नाटक को बेहतर समझने के लिए सुनेंगे आप आरजे उषा के द्वारा एक कविता

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता. वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी कब आएगी, इंतजार रहता है. लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है. कई बार अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है. ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो. और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है. आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा जरूर होगा

0: सरोज जी, वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है, तो हम आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी, और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था, तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा,
0: गाना नहीं छोड़ा।
1: हाँ।
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। हाँ। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई हुआ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
0: अच्छा।
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई, लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया,
0: लड़कियों को नहीं,
1: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
0: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
1: हाँ, परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं, खेत का भी करते थे, जैसे जमींदारा है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की भी खेती करते थे, काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
0: बाहर नहीं जाने,
1: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहने हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वे बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से बाप फिर हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
0: आपके माता पिता का भी मन था?
1: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का, वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के,
0: समाज। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
1: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया,
0: स्वीकार कर लिया,
1: वो सोचती थी मैं मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार करती।
0: उनकी तो भावना भी थी और
1: बहुत भावना थी दीदी, उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दूं, उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यही भेज देते,
0: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे,
1: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे, कहते थे वे तो गाड़ी चला स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो कर रही हो, भाई थोड़ा सा छियादत का है बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी, दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
0: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं।
1: हाँ, ये चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं जैसे रसोई में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ, देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोका नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ने नहीं पाई।
0: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, हाँ। तो कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हाँ। हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोज जी, मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
1: ठीक है दीदी
0: जी।
1: ओम शांति।

0: சாரி சூக்ஷம் வத்தனம யோக லகாவ சூக்ஷம் வத்தனம யோக லகாவ பரமதாம பிந்து பண ஜாவ பரமதாம பிந்து பண ஜாவ ஹே தரி ஹோ ஜா மன கீ சாஹி தம யோக லகாவோ சாரி.
1: ரேடியோ மதுபன் 107.8 FM சுன் ரஹே ஹே அஹம் காரியக்ரம் ஹே மதுபன் அன்பிளக்ட். ஆர் தோஸ்தோ ஏக் பஹோத் சுந்தர் சா ஆப்னே கீத் சுனா சரோஜ் ஜி கி ஆவாஸ் மே. सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
2: हाँ दीदी.
1: है ना, क्या क्या गीत है ये, क्या आपने सोच के से बनाया, क्या मन में आया आपके?
2: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से.
1: अच्छा.
2: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया.
1: क्या बात है.
2: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है.
1: सही बात है, शब्दों से संगीत
2: बनता
1: है. भावना ईश्वर से,
2: ईश्वर के लिए, मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वो शब्द निकले, उसका संगीत बन गया.
1: क्या बात है. अच्छा सरोचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
2: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब दिल से हूँ गा देती हूँ.
1: बचपन से भी आप ऐसे गाते थे?
2: हाँ बचपन से ही, जैसे माँ है ना दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोक गीत भी गाते थे भजन भी गाते थे. तो पहले आटा पीसती थी तो मेरी माँ ऐसे करती थी तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी.
1: अच्छा.
2: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब शुरुआत होगी. हाँ मन आया मेरे को, मैं गाने लगी बस.
1: अच्छा. तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
2: जी
1: याद है
2: जी.
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो?
2: जी दीदी
1: जरूर. हाँ जी,
2: मैं आपको एक लोक गीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए.

0: क्या बात है, क्या बात है. मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है. माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी.
1: जी दीदी,
0: कभी जब
1: कभी
0: चुकाया नहीं जा
1: कोई नहीं चुका
0: सकता,
1: सकता.
0: कोई नहीं चुका सकता. और आपने गाया बहुत अच्छा है, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम. ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ.
1: दीदी मेरी माँ है ना,
0: हाँ.
1: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ. तो मेरी माँ ने कदे मतलब एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमकाया कुछ. मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती.
0: हाँ.
1: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना. भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से. देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं. अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे अपनी.
0: माँ की सेवा.
1: माँ की सेवा.
0: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
1: जी
0: अलग
1: दी
0: अलग चीज़ों में. और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
1: जी
0: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया. और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए.
1: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है. जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है. जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है. वो है ना, जिस टाइम भी घर पा होगा ना, या
0: बंद हो गया. हाँ, कर दिया.
1: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता. वो सोएगा नहीं,
0: अच्छा.
1: इतना वो सोए नहीं गा. देखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा. मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा.
0: अपने घर में देखा
1: हाँ,
0: आपने.
1: बहुत अच्छा.
0: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
1: दीदी माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ. उसके लिए शब्द नहीं है,
0: छप नहीं है.
1: शब्द नहीं है. वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना, उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
0: इच्छा ही
1: कि
0: नहीं
1: और
0: रहती
1: किसी
0: है.
1: की सेवा करें. और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
0: महसूस किया आप.
1: महसूस. हाँ, मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में. वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लगा. और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर स्वर्ग है. बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी, कोई घर चला जाता है मेहमान आते हैं तो वो कभी ये नहीं देखती कि भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं. नहीं, भावना से, ऐसे भावना से भाभी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है.
0: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
1: हाँ,
0: परिवार
1: ऐसा
0: है
1: परिवार
0: ना,
1: नहीं मिलता, ऐसी भाभी नहीं मिलती.
0: ऐसी भाभी नहीं मिल
1: मैं
0: रही.
1: सुनती हूँ गाँव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं.
0: अच्छा.
1: मतलब पूरा गांव में हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कहते हैं ना, एक जम्या, तो तने नु समझ ले दसा के बरोबर जान दिया ये,
0: अच्छा.
1: जो तेरी इतनी करता है.
0: एक 10 के बराबर.
1: हाँ, 1:10 के बराबर है.
0: क्या बात है. सच में जो दुआएं माता पिता
1: हाँ
0: की बुजुर्गों की सेवा से मिलती हैं,
1: दीदी, हमारे घर
0: किसी
1: में
0: और
1: ना,
0: चीज से
1: मैं
0: नहीं मिल
1: आपको
0: सकती
1: एक छोटी
0: कभी.
1: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
0: अच्छा.
1: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था. तो उस साइकिल भी नहीं थी ना, तो बाबा मैं नुकू, मेरा भाई इतना बागवान, इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ. दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर. मैं ये
0: कोई
1: बताऊं
0: कमी
1: कि
0: नहीं.
1: किस चीज की कमी ही नहीं रही. घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था. मैं ऐसे बोलती थी, हमारा घर पता नहीं कब बनेगा. आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया. भगवान ने इज्जत भी दे दी. देखो, गांव का एक राजा बनता है जब भाई, कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है. उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
0: मदद की ना उन्होंने
1: मदद की
0: सबकी.
1: लोगों की. वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में. देखो, मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तो सब कुछ नुए लुटा देगा. मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से. मतलब मैं कहूँ ना, जान जिगर जो माँ दूध पिलाओ ना, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है.
0: इतना ही प्यार है.
1: हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ।
0: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
1: मेरा छोटा भाई है मेरे से।
0: कितना छोटा है?
1: मेरे से 5-6 साल छोटा।
0: 5-6 साल छोटे हैं।
1: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है और माँ का भी फर्ज निभाता है। ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
0: देखा नहीं आप?
1: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन,
0: मेरी बहन है।
1: अब जैसे मैं
0: आपको, उन्होंने दुआएं भी बहुत कमाई
1: तो मैं से आपको बोल दूं दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वो आपको भी अच्छे से बोलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं
0: उतना ही।
1: वो ये कहते हैं है। कि हमारे ऊपर है ना, जो मेहमान अपने घर आता है ना वो एहसान करता है, आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है। जो हमारे घर आते हैं ना, रातें भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
0: इतना प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा,
1: ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे।
0: अच्छा,
1: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था, लेकिन जब ज्यादा हो जाता था
0: सारा काम हो जाता है
1: बहुत। हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया भी इतने बच्चे हैं। हमें सारी बहनों के 11 बच्चे सब
0: आ जाते होंगे,
1: तो उसके बहन भाई सब उसकी मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो आज के टाइम में तो 2 बच्चे भी रखने में
0: बहुत काम होता
1: है ना। और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले।
0: अच्छा,
1: बस मेरे बच्चे दोनों ने,
0: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा।
1: वो छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह देना आए सागरी आ जा सो जा, उनका मैंने नींद ही नहीं आती थी।
0: अच्छा,
1: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी।
0: हाँ।
1: दीदी उनका खाना मतलब भाभी है ना, 4-4 महीस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
0: बड़ा दिल ना?
1: हाँ, बड़े दिल, बड़ा दिल। फरोक दिल,
0: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
1: दीदी?
0: किसी को
1: मतलब
0: या आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
1: वो सुनती है मेरे गाने, मेरी माँ को बहुत शौक है। दीदी
0: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोकगीत, कोई भजन जो हमारी श्रोताओं को आज आप सुनाए?
1: जो मेरे से सुनती है वो
0: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
1: ठीक दीदी, मैं सुना रही। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
0: अच्छा
1: ठीक है
0: जी,
1: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: रचदी।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे इस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई अच्छी बुरी, लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई तुम अपना वेस्ट ना करो इसमें, भाई भगवान की बातें करो भगवान के भजन करो, तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधि करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधि है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान न रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा, क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ,
1: कि वो समय कहते हैं ना जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत भी
0: दीदी
1: नहीं।
0: फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना, इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति की चीज है, वे तो भगवान का रूप है ना ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस सब गाते हैं मैं भी गा,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था। हाँ, मीनिंग का नहीं पता था उसमें, अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें भाई ये क्या शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरोज जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ, तो ऐसे ही भाई भगवान मुझे शक्ति दो जैसे भी, फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके, सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना, जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना, ऐसे वायु जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: है ना, तो जैसे हवा है, हे वायु देव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना, तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो,
0: शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्य देव है, हे सूर्य देव जैसे सुबह सूर्य देव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्य देव देखो कहीं भी आप है ना जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सकते ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं आप,
0: है ना,
1: बहुत अच्छी बात है ये तो। शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना तो उसमें फिर भगवान का सिमरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
1: खुशी रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करांगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली
0: है। हाँ, खाली है आज कुछ, कई बार हो जाता दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली लगता रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा।
1: अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है?
0: हाँ दीदी,
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना कभी अपने पास ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

पहुंच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लगी है।

0: दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा करो? बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गाने नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दीदी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडू भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को।
1: अच्छा,
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना, ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप आसिफ बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज, उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा,
0: तो कह रहा था इसको मैं है ना भाई इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा ले उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है भावना,
0: हाँ भावना की समझ है उसको। अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू होगी अब।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती? 5वें साल में लग गई है।
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन होते हैं उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार
0: कृष्णाय वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को
0: जो अब ये,
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिव

0: शायरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारे श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी भाई, जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है। संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा
0: जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखें,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के।
0: ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा,
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ
0: संगीत के पीछे, पागल हो जाओ। कहते हैं ना, पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: लेजेंड्स हुए, है ना? वो तो स्वर कोकिला भारत,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल,
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना, अनुराधा, मैं उसकी गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं, कि भाई अच्छा संगीत
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत
1: जरूरी है, खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: केसर गंजरे नजदीक को दरबार साहब मैंने उठा दिया था, जेड़ा हमारा पुरखा बता रहा था। तो दरबार साहब उठाया तो जंगल तो बबूल रो इन जंगल ने काटने में इन लोग माटा आप जितनी जमीन रोकी इतने दरबार साहब से माने आप मकान बनावा इजाजत दी और 1960 में माना अटे पंचायत राज आना और बाद पंचायत रा पट्टा बनिया।
1: तो 1960 में आप नया खेड़ा मान बसिया तो आपरा दादाजी भी आया भी एटे ठीक है। तो हमें आपने पूछूं कि जो नवा खेड़ा में आपरा परिवार कतरा परिवार आया था आचार्य समाज रहा।
0: नया खेड़ा में दो भाई आया था
1: जी,
0: ये दो भाई अबुरोड आया था स्टार्ट में।
1: अच्छा अबुरोड में आया था,
0: अबुरोड में आया था ब्यावर रखने गिरी गांव है।
1: गिरी गांव
0: अंदर बहुत बड़ो एक सरोवर है जोधपुर महाराजा रो बनाया
1: जी।
0: तालाब जी ने कहे है वो तालाब फूट गयो तो
1: अच्छा
0: विने फूट रहा हूँ करीब करीब मानी कटी गारी आजू बाजू जीती दूजी जाता थे सब रा घर बर्बाद हुआ जमीना बर्बाद हुआ एड़ा माना दादा बताता रहता माने। इन बाद दो भाई आया के भाई माता हटो सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें आला अहमदाबाद एक अहमदाबाद गुजरात रो मैनचेस्टर तो
1: अच्छा
0: अहमदाबाद में उद्योग घना था तो कोई भी मजदूरी पेट भरवा वास्ते अहमदाबाद में लोग आया करता था
1: जी, जी।
0: तो राजस्थान रा मजदूर वक्त और जो भी थोड़ा बहुत टेक्नीशियन जानता था वे भी अहमदाबाद मेला में आता। ये दो भाई अहमदाबाद रे वास्ते रवाना हुआ इना रो परिवार इना रहते तो
1: दो भाई रो नाम का तो
0: सबसे बड़ा जो पहला आया था इना रो नाम तो प्रभु राम जी
1: आचार्य
0: पाड़ो जी आचार्य कहते थे
1: पाड़ो जी आचार्य
0: प्रभु राम जी। उनके दूसरे काका रो बेटा भाई था नारायण जी ने दो भाई आया पाड़ो जी रे चार लड़का भी आ।
1: अच्छा
0: भवानी शंकर जी तोताराम जी हरी राम जी और मोहन लाल जी। नारायण जी रे एक ही लड़को भी हो पूनम चंद जी। अब मेन चीज गाय थी के ए माने लाया था अटे अग्रवाल
1: समाज आपने अटे लेने आया था जी।
0: के ब्यावर जब गाड़ी में बैठा मारा दादा माने बता रहा था कि बेटा उन टाइम कोई धंधो पानी तो नहीं अहमदाबाद मिल में या कटे भी नौकरी मजदूरी करवा जा रहा था। तो इना लोग पूछो भाई पहले जाते बाद ज्यादा तो लोग जाते पूछते थे आजकल जाता कम पूछे पेंट शर्ट बूट अप टू डेट ही देखिया करे।
1: अच्छा।
0: तो उन लोगों ने जाते बाद पूछा तो इन्होंने कहा भाई हम आचार्य ब्राह्मण है और मानो उद्गम गिरी हूँ है और गिरी हूँ पहला ही मैं दो तीन जगह आयोड़ा हाँ।
1: अच्छा
0: मारो मेन उद्गम तो हरिद्वार है
1: मतलब आचार्य ब्राह्मण जो है मेन उद्गम स्थान हरिद्वार है अयोध्या मतलब
0: दशरथ जी टाइम मानो इतिहास बतावे या सब पुरखा बतावे भाटरी बही में बतावे तो दशरथ जी मोक्ष नहीं हुई रही हो तो
1: जी।
0: तब दुनिया भर ऋषि मुनि आया
1: जी।
0: और सबने आजमाया गया लेकिन माने जो ऋषि मुनि था बिना कुछ ऐसो कर्म करियो पिंडदान वगैरह ऐसा जो भी नारायण बड़ी करानी पड़े जो भी करना पड़े प्रेतरी मोक्ष रे वास्ते वो कर्म मारा बड़े रख करियो।
1: अच्छा।
0: दशरथ जी रो मोक्ष हुई हो दशरथ जी रे बाद वटो गए दूजा जितना भी पंडित था वीणा ने जलन विवाह टूकी।
1: अच्छा।
0: आज थोड़ा सा मैं आपकी बात लू कि देश आज रहा देश रहा जो वातावरण है कि बीजेपी छोको करे तो कांग्रेस टांग खेचे।
1: अच्छा।
0: कांग्रेस टांग खेचे तो सीपीएम हाथ खेचे और किकने कने दंगो फैलावे इन टाइम ब्राह्मणों में भी जातिवाद बड़ो कट्टरपंथी तो
1: आप कहना मतलब वन पुराना जमाना में ब्राह्मणों में अत्रो कट्टरवाद तो कि मतलब
0: दूजो नहीं देखो।
1: अच्छा अच्छा तो आप जो समाज रे हिसाब से आप जो पुरखा था वे दशरथ जी ने एक मोक्ष दिलायो मतलब जो पूजा पाठ की दी तो वनती वे खुश वे गया उन्होंने नाम वे गयो तो आचार्य पदवी वन टाइम मनोन मिली थी जी। ठीक है
0: नहीं पड़ती हाँ माने आचार्य पदवी दरअसल जी रा मोक्ष बाद मिलोड़ी है इनमें माने कोई यूनिवर्सिटी अकटे जहाँ डिग्री नहीं लेनी पड़ती पीएचडी लेके आचार्य बनवा रही। अब वे आचार्य जाते नॉमिनेट होगी मानी हम आचार्य जाते घोषित विहार बाद ये लोग जलन करवा डूगा का भाई किगने करने इन्हें पटको। अब हर समाज में कोई न कोई हरेक तो इतो भण लिखने गुणवान भी तो नहीं
1: जी।
0: तो वो जो था मारा ऋषि बिना करियो इन बाद लारे लारे थोड़ो थोड़ो पीढ़ी कमजोर पड़ती गई। अब आबादी बढ़ती गई हरेक राजा का असर तो एक तो पर भरण पोषण के वास्ते दूसरा शासन जीजिए अब इन टाइम साधन का ही था या तो राजा महाराजा खेती बाड़ी देता।
1: अच्छा।
0: तो बरसात हुए तो खेती बाड़ी हुए और नहीं हुए तो खेती बाड़ी कटो हुई थी।
1: अच्छा, नहीं वेती।
0: इन्हें बाद अगर कोई रखने चार पया भी हो तो धंधो लगायो तो जब एक कहवत है कि फोकट में खावा ने मिल जाए तो कमावा कौन जाए तो मारा बड़े राजा पंडित गिरी में रिया मैं तो पंडित हाँ मारा हाथों तो मोक्ष हुए मैं व्यापार क्यों करा
1: जी।
0: मैं धंधो क्यों करा।
1: अच्छा।
0: और इना का करियो कि मोटी मोटी नदियां रे माते आप रे पंडित आई रहा कुछ पंडित लेपरन डेरा खोल लिया
1: मतलब आप रो कहना मतलब जटे भी नदियों तो संगम तो वंट बेटे बेटे आप रा परिवार बसाया है ना बेटे मतलब वे वनोरो पूजा पाठ रो काम करवा लगा
0: नदी रे किनारे और

0: मोक्ष रो काम है या तो तालाब रे किनारे बिया करे या नदी रे किनारे वे, अगर दोनों साधन नहीं होता है तो जिन जगह पीपल वर्तम पीपल ने पूजो जाए, पीपल की जड़ में बैठने वो पिंडदान करिया जाए। दूसरी अगर पीपल भी नहीं है तो हमारे राजस्थान में कई एरिया है जटे जाट बंधुआ ने सबसे श्रेष्ठ है खेजड़ी, तो खेजड़ी नीचे भी वो काम भी करे। बाड़मेर जैसलमेर इन कुछ एरिया में खेजड़िया नीचे भी जटे पीपल नहीं वे वे करे, नीम नीरी भी करने क्योंकि नीम में नारायण रो वास है।
1: हाँ तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है जो अपने समाज रा रीति रिवाज बता रही है, और भी आप समाज रा रीति रिवाज जानोला पर वंती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हो, ब्रेक रे बाद में फिर आप समाज रा रीति रिवाज जानोला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं और स्वागत है। ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है, उन्होंने भी स्वागत है।
2: वो आपने पूछो कि पिंडदान जो आपके हो खेजड़ी नीचे है पीपल नीचे करे, तो घना लोग जाए गया जाए बिहार जाए, मतलब जाए ना गया में पिंडदान करवा, जब बड़ा बड़ा तीर्थ वे बटे जाए, तो मतलब वटे भी मतलब पूजा पाठ करवे मान्य हुए या खेजड़ी में पीपल रे वे पूजा करे बेटा मान्य हुए
3: घाट माता वे। अच्छा। विनारा घाट में जगह जगह वृक्ष है पीपला रा, इन अलावा घाट माता वे। अच्छा। आजकल का है कि पहला अमुक पीपल या पक्षर नीचे बैठने काम वे तो हमें। अच्छा। इन्हें कहीं घाट बना लिया।
2: अच्छा।
3: हर जाति रा हर समाज रा अलग अलग घाट है।
2: अच्छा। अलग अलग घाट है तो अलग अलग समाज रे वास्ते अलग अलग पंडित भी वही
3: भी अलग है।
2: अच्छा।
3: हर जात रो वे, आप अगर हरिद्वार उतर ने अगर पूछो ला तो हर जात रो के साहब कौन के हो।
2: अच्छा।
3: तो वे पंडा का करेगा, बिना पंडा के आपने पहुंचा दे।
2: अच्छा।
3: या बिना एड्रेस आपने बताया आप वहाँ चले जाओ, आपका पिंडदान दूसरा कोई नहीं करेगा। इन प्रकारों मतलब इन पिंडारो गढ़ बनियोड़ा है, हरिद्वार रही है, हरिद्वार अयोध्या जब नहीं गया तो मां लोग वसाया मांडल,
2: मांडलगढ़ कट आया हो
3: भीलवाड़ा करने,
2: भीलवाड़ा तो अयोध्या से निकले पड़े मांडलगढ़ आया आचार्य ब्राह्मण
3: आचार्य जो विन मो दो भाई नहीं रिया या तो कुछ भाई नहीं रिया वो आपरो परिवार लेन कमावा खावा मांडल आएगी
2: मांडलगढ़ में, तो वटे आज कतरोक परिवार है
3: आज ए मारा राव आवे बतावे घरे 40-50 घर आज भी है 50-60 घर है।
2: ठीक है।
3: मांडल उठने में आया बागोर,
2: बागोर गांव, बागोर तो फेमस गांव, फेमस गांव है बागोर तो।
3: हाँ। कमो कम मोरी बहुत संख्या अच्छी है,
2: सबसे ज्यादा मतलब आचार्य ब्राह्मण वटेज देखा है
3: बागोर में ज्यादा है।
2: अच्छा। मतलब का कम धंधो रही हो
3: क्या, जटे जटे नदिया है
2: जी।
3: या घाट है।
2: हाँ।
3: वटे भाया रहे इन जो रावा रहे सारे मैं अमुक जाता आवे
2: जी।
3: जो मारे हिस्सा में अमुक अमुक जाता आई गिरी वाला ने बागोर वाला रहे हिसाब में ज्यादा तो अग्रवाल समाज आयो और पुरोहित समाज जो क्रियाक्रम मोनो कराते तो वो आयो और पुरोहित खुद भी क्रियाक्रम करावे तो राजा महाराजा की क्रियाक्रम पुरोहित कराया करे। अच्छा।
2: तो आप नहीं करावता
3: अगर वे मोरो कराना चाहे तो आज की पीढ़ी में तो वो हाल है कि मैं खुद ही काम नहीं जानता, जो जाना है एक आध भाई।
2: हाँ।
3: वो आप पेट पाले ने करे रियो है
2: जी जी।
3: बाकी कायदो है कि इनमें सब भाई रो हिस्सो भी आ करे है
2: जी।
3: अलग अलग इनमें दिन आया करे है
2: तो यू वे तो भाई भाई 12 महीना तू कर जे 12 महीना मुँह करो यू भाई
3: 12 महीना में जो मैं दो भाई उदाहरण तौर आपने क्लियर बता रही हूँ कि दो भाई आवरूड आया ए आया गिरी। अब एक भाई रे 4 लड़का होया तो विन हिस्सा में आया 6 महीना में डेढ़ महीनो एक एक रे एक रे रियो एक विन आया 6 महीना अब वो 6 महीना रो अकदार भी हो एक भाई मर गयो विना बच्चा कोई नहीं रिया एक लड़की रही तो विनो कर्म भी वही कराते रियो तो विन हिस्सा में कहता हाड़ी 7 महीना हो गया। अब करवा एक ही जातो।
2: अच्छा।
3: माना बड़ेरा धीरे धीरे ऑफ होता रिया और बड़ेरा कोई ज्यादातर मारो दादो तो वो कर्म गांडी कम तो ज्योतिष विद्या और प्रेत विद्या में माहिर तो भवानी शंकर जी विनारो नाम तो
2: भवानी शंकर जी आबरोड में रहता है
3: आबरोड में रहता था नदी किनारे।
2: अच्छा। नदी किनारे रहता
3: नदी किनारो 1940 पहला नदी हट भी आई
2: जी।
3: तो नदी किनारे हनुमान मंदिर नीचे माना मकान दियो तो अग्रवाल
2: तो आप ज्यादातर अग्रवाल समाज में पिंडदान करावता या बीजे समाज में जाता।
3: आपने अर्ज करूँ की ज्यादातर मानो जो धर्म है
2: जी
3: वो शुद्ध जाति है
2: जी
3: उन्हीं के हम पिंडदान कराऊंगा।
2: हाँ।
3: दूजारा मैं नहीं कराता।
2: अच्छा।
3: क्योंकि मारा हिस्सा में नहीं आयो है।
2: अच्छा।
3: अब मैं यूं तो देखो मुंडा मारने
2: हाँ।
3: ए बामण बैठा है आज गल्ला जीता भी हर छोटी यात्रा भी कर्म कराए
2: तो वो तो उन्होंने कौम हुपियोड़ो है
3: विना ने कोई हुपियोड़ो नहीं है।
2: अच्छा।
3: वे कोई भरतपुर का नहीं रहा है कोई अलवर का नहीं रहा है
2: अटे काम करे अटे आवे
3: नौकरी रे काम में अटे बसियोड़ा है वो नौकरी पूरो नहीं करता
2: जी।
3: तो वे अटे करियो और वे कर करने क्रिया क्रम में करियो। अच्छा दूजो कारण का वे है अग्रवाल समाज में अकेलो आचार्य ब्राह्मणी क्रम पूरो नहीं कराते आदो क्रम इनाने इनारो गोड़ ब्राह्मण औचित्य ब्राह्मण या चानड्य ब्राह्मण वगैरह जो भी है इनमें विनाने विनारो भी हिस्सा यूं नहीं बंदी उड़ा है अब वे कहीं करेगा आधो काम वे करावे
2: आधो आप करो आधो वे करे
3: वे कर
2: हाँ।
3: न पछे उठ जाई तब कहेगा हमें पंडित जी आप आओ।
2: अच्छा मेरो अलग अलग कौम है मतलब
3: आबू रोड में अग्रवाल बगीची बनियोड़ी है नदी किनारे बहुत सुंदर व्यवस्था है गठ बंधे है तीजारे दिन घट बन जाए है 11वें दिन तक क्रियाक्रम विन घट खोलियो जाए है 12वें दिन बकायदा इनारो समाज रो 12वां बंद हो गया गंगा प्रसादी करने विसर्जन करिया करे, यथाशक्ति मिले वो आपरो दान दे। अब इनमें कहीं वे मैं अपने अर्ज बताऊं कि ब्राह्मण समाज और कुछ समाज ऐड़ा है जो ये बार बार उदान आपरी बहन बेटियां दिया करे।
2: अच्छा,
3: लेकिन अग्रवाल समाज, पटेल समाज जितना भी गुजराती कुमार है, घांची है, ये सूरज ये जाते ऐसी थी एड़ी जाता है जो आपरा ब्राह्मणा ने दिया करे।
2: अच्छा।
3: इनमें बकायदा नई सजियादान सजाई जाए,
2: सजियादान
3: कायदा भी यही है कि बिल्कुल नयो वस्त्र वेणो सही जे, अन्नदान इनमें सब प्रकार रो जो प्रेत खातो तो वो चीज हुई नहीं, और विनी इच्छा जिन्हें खावरी ज्यादा होती थी वो भी सज्जा माता मेड़नो पड़े।
2: जी, जी।
3: कुछ क्षेत्र में सज्जा माता बिठाया जाए, कुछ क्षेत्र में कने उबे राख विना पग पूज और विना सज्जा दे। लेकिन कुछ समाज इतना भ्रांति है जो जिन्होंने कहीं समझे कि बिल्कुल अनपढ़ है, विधि विधान के मामलों में अनुभव नहीं, परिपाटी जैसे चला आया वो परिपाटी लेने हाली रही है लोग। तो एक आए करेगा, आज भगवान गीता में भी कियो है
2: जी।
3: और शास्त्र में भी है, गुरु पुराण में भी है कि जिन प्रवित्रो मोक्ष भेजा है विने पुटे रोनो धोड़ो में कम करना सही जे। आत्मा दुख तो वे अपनो मरियो तो दुख तो वे, जानवर भी मरे तो दुख वे, तो इंसान कियो अपनो। अब इन्हीं जब सज्जा दान वगैरह आप दे रिया हो तो विधियों अच्छो दान दे और आपने पहुंचाना सीजे। अमुक अमुक जाता है इतनी रूढ़ीवादी होगी है कि घर रहे आगे सज्जा तो भर दे बढ़िया और लारे विने पानी ढोड़े लारे छातिया कूटे, अब बताओ वो दान केड़ो।
2: पर आ तो एक पुराना रिवाज है, तो
3: पुराना रिवाज होनी उड़ो है, लेकिन धीरे धीरे मैं लोग पढ़ लिख गया इना सज्जा दाना भी कम कर दी। सज्जा दान अगर दे भी रिया है तो इज्जत तो बापन रे घरे पहुंचावे। अगर जिन एरियों के अंदर आचार्य ब्राह्मणी कार्य करता है तो वे सज्जा दान लावे है। बाकी आज अबुरोड में 80% दूजा ब्राह्मणी ले जाए जो बाजार रहा है,
2: ठीक है, क्योंकि आपरे समाज में तो आपको कोई मर्दों में कोई पूजा पाठ करवा वाला रियो नहीं है।
3: एक आदमी है खाली।
2: अच्छा, अच्छा कौन आप रोड में?
3: माने हमारे राजपुर रोड में मैं गोर्धन जी करे,
2: गोर्धन जी आचार्य है जो
3: रिटायर्ड है।
2: अच्छा, वे इस पिंडदान रो काम करे है और अनलाव कोई नहीं करता है, तो वही कोई समाज थी बंदी उड़ा है।
3: समाज बंदी उड़ो का एक समाज रहा अंश है माना। जब मैं बटे बसिया नदी किनारे दरबार साहब लोग अग्रवाल बसाया मैंने, तो बचे बाद में नदी आई, जब मैं केसरगंज आन बसिया, केसरगंज में जब दरबार साहब रो तांडव नरता लियो तो मैंने रात रात उठा दिया बटों, तो इन जंगल में नया खेड़ा बसिया 80 साल हुए नया खेड़ा बसाया। इन मारा पूनमचंद जी था
2: जी।
3: मारा दादा भवानी शंकर जी तो ज्योतिष विद्या माहिर था, विनारा पिताजी था वह इतना माहिर था कि आज भी महाराजा साहब विनारी शमशान में छतरी बनाई उड़ी है।
2: कान गांव में माउंट आबू में एक छतरी है
3: गीता जी।
2: अच्छा,
3: चारों बच्चों ने पढ़ना पड़ा।
2: हाँ।
3: भवानी शंकर जी, हरिराम जी, तोताराम जी और मोहन लाल जी, चारों की शादी करके और इन्हें बाद वे कहीं करियो।
2: हाँ।
3: आपरो संन्यास आश्रम लियो जो कि पहला मन लेता था लोग संन्यास।
2: हाँ।
3: जैसे इन्होंने लियो तो इन्हें कियो क्या तपोभूमि है माउंट आबू।
2: हाँ।
3: बड़ा बड़ा ऋषि मुनि आन तपस्या करी, तो क्यों नहीं मैं भी इन जगह आपरो दे त्यागू। तो इन्होंने शमशान में जान विन टाइम शमशान में जानो एक मामूली बाम नहीं, तो पूर आज भी माउंट आबू वाला शमशान में जान कोई भी देख लो।
2: हाँ।
3: तो बिल्कुल बहुत बड़ो वाड़ा रे किनारे माते शमशान बसियोड़ो है, वटे एक अंग्रेजी री छतरी है।
2: हाँ।
3: एक माने पाड़ोजी री छतरी है
2: जी। पाड़ोजी मतलब आपरे दादाजी री,
3: प्रभु राम जी नाम तो
2: जी।
3: लेकिन छतरी नीचे पाड़ोजी लिखा है तो प्रभु राम जी। प्रभु राम जी रहे चार बेटा था नीचे और गिरी उठने प्रभु राम जी और नारायण जी दो भाई आए थे।
2: बहुत अच्छी बात है। चलो आप अपने आचार्य ब्राह्मण के बारे में खूब बात बताई और एक तरह इतिहास है कि भाई आचार्य ब्राह्मण अयोध्या थी उठिया था, वड़ा थी बनने बाद में मांडलगढ़ में आया, मांडलगढ़ थी फिर बागोर गाँव आया, बागोर हूँ सीमेल,
3: सीमेल में माने एक सती हुई,
2: सीमेल में एक आपके परिवार में एक सती भी हुई,
3: सती भी बाद माने वो गाँव छोड़ाना पड़ी हो। तो मैं आया गिरी, और गिरी में मारा बांध टूटो।
2: अच्छा,
3: तो मैं आया अबुरुड,
2: ठीक है। तो आप लोग कहना है कि भाई गिरी में आया ना, गिरी में एक बांध फूटो तो वन टाइम सब परिवार तीतर भीतर वे गया था और हर मतलब समाज का लोग तीतर भीतर वे गया। तो आप रब बे भाई मलेन अबुरुड पहुंचिया, तो वे अबुरुड में आज भी वन बे भैरव परिवार जो भी है अटे है और वे आज अपनो अपनो धंधो करे रिया है। पर एक परिवार एरो है जो गोर्धन जी है जो आज पिंड दान रो काम करे है, पर अन अलावा आचार्य ब्राह्मण आबार कोई एरो काम अटे करता नहीं जी।
3: विनो मुख्य कारण वो है कि जितना भी बुजुर्ग अग्रवाल है और बुजुर्ग ब्राह्मण है वो कहते भाई आचार्य ब्राह्मण के अलावा तो मारो मोक्ष तो वे नहीं।
2: अच्छा,
3: आप भले वहां मंत्र मत बोलो, आपको नहीं आते तो मैं बैठने थानो काम करने ला और जो थाने दान देनो है माने देवा और माने जो पंचग्रासी देनी पड़े है वो पंचग्रासी देवा और कुछ एरिया में गोदान दिया करे क्यों त्रिवेणी रे में आदमी जब तरह जब कोई गायर उदान दरियोड़ोवे अगर गोदान नहीं दे तो इन भवसागरी त्रिवेणी वो पार नहीं जा। मारा समाज में आज जोड़ना अर्ज वही करूँ कि अगर समाज री उन्नति चाहो तो क्रियाक्रम करनो मारो खानदानी पैसो है जन्म जात पैसो है शुद्ध करो शुद्ध लो और अच्छा करो पढ़ा लिखा वेन करो। आप खाली टोटको कर न कुलड़ी कल्पनो जो इन सिरे धरती में ज्यादातर कुलड़ी कल्पावर और श्रीमानी ब्राह्मण लोग काम करे वो काम नहीं बहनो सीजे काम होना चाहिए शुद्ध वरना करो ही मत।
2: चलो बहुत अच्छी बात है। आज अपन किशोरीलाल जी आचार्य है जो नवाखेड़ा में रहे हैं आबू रोड में और 87 साल थी अनोर परिवार अटे रह रिया है तो आज अणती अपन बात करवा मौको मिली आचार्य समाज रे बारे में तो बहुत सारी बातों बताई आचार्य समाज रे बारे में आचार्य किकन उन्होंने आचार्य उपाधि मिली उन्होंने ब्राह्मणों ने तो अनोर मेन मुख्य काम है पिंडदान कराना और पिंडदान ही सबसे ज़्यादा अटे करावे है और आजकल तो वे बीजा ब्राह्मण है वे भी परिवार पूजा पाठों कोम करे है पर ज्यादातर अनोर कोम तो पर आजकल अनोर परिवार कम वेगी आटे अनवास्ते कम करे है।
1: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है जो अपने समाज रीति रिवाज बता रही है और भी आप अनोर समाज रीति रिवाज जोड़ोला पर वनती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हो ब्रेक के बाद में फिर आप अनोर समाज रीति रिवाज जानोला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक रे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है। ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है और भी स्वागत है। तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान किशोरी लाल जी है, उन्होंने आपको धन्यवाद दो हों कि अपने वे अपनो अमूल्य समय दीदो है। अपने समाज रे बारे में, आचार्य समाज रे बारे में थोड़े इतिहास बताए हैं कि वे कटाती उठिया और उन्होंने बारे में जानकारी दी दी है। पर हमें आप उन्होंने समाज रा रीति रिवाज है वे अगले हफ्ते ले हों और अगले हफ्ते फिर आप उन्होंने समाज में का रिवाज है, रहन सहन है, सब पूछे ही उन्होंने और ने जानकारी ली हो। पर हमें अपने मेहमान ने आपको विदाई दो हों और मुँह कैसी जीन कर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, उन तारो मुस्कुराता रहो।

साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: पता है मीना के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है, तभी तो वो और रानो स्कूल के सूचना पट पर उस कार्यक्रम से संबंधित एक पर्चा लगा रही है।
1: अरे अरे, पर्चा तो उड़ गया। मीना, पर्चा तो उड़ता उड़ता स्कूल के बाहर जा रहा है।
2: आओ रानो, जल्दी से उस पर्चे को उठाते हैं।
0: मीना और रानो उड़ते हुए पर्चे के पीछे भागी। तेज हवा चलने के कारण पर्चा उड़ते उड़ते स्कूल से काफी दूर चला गया था। आखिरकार वो पर्चा जा चिपका सामने से आते हुए लाला जी की कमीज पे। लाला जी के साथ उनका पड़ोसी भोला भी था।
2: लाला जी, ये पर्चा।
3: हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा पर्चा। वैसे लिखा क्या है इस पर्चे पे?
4: भोला चाचा, 15 अगस्त को हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
2: उसी कार्यक्रम से संबंधित सूचना लिखी है इस पर्चे पे।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह, स्कूल का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान, उसका क्या?
4: लेकिन हमारे स्कूल में तो वार्षिक इम्तिहान होते ही नहीं।
3: अरे भाई, अगर इम्तिहान ही नहीं होंगे तो तुम्हारी बहन जी को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना सीखा?
5: अगर इम्तिहान ही नहीं होंगे तो बच्चे दिल लगा के पढ़ेंगे ही नहीं।
3: ठीक कह रहे हो भोला।
2: मिठू चुप। लाला जी, भोला चाचा, बहन

0: जिन्हें हर बच्चे से कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने अपने माता पिता को बुलाएं। आप भी हमारे कार्यक्रम में आएंगे ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: मीना और रानू स्कूल पहुँची, सूचना पट पे पर्चा लगाया और उसके बाद वो दोनों गईं बहन जी के पास।
3: रानू, मीना, क्या हुआ? तुम दोनों कुछ सोच रही हो?
0: बहन जी, अभी हमें लाला जी मिले थे।
4: और भोला चाचा भी।
0: लाला जी और भोला चाचा कह रहे थे कि हमारे स्कूल में इम्तिहान जरूर होने चाहिए।
4: उन्होंने ये भी कहा कि अगर इम्तिहान ही नहीं होंगे तो बच्चे दिल लगा के पढ़ेंगे ही नहीं।
3: रानू, मीना, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं। शिक्षा तो है हर बच्चे का अधिकार।
0: जी बहन जी, शिक्षा के अधिकार के बारे में आपने हमें एक बार बताया था।
3: शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक नियम सोच समझ के बनाया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को वार्षिक परीक्षा ना देनी पड़े, ताकि बच्चों पर परीक्षा को लेकर कोई बोझ ना पड़े।
4: बहन जी, इस नियम के बारे में हमें और बताइए ना।
3: रानो, शिक्षा का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि 8वीं कक्षा तक हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो।
4: बहन जी, जैसे लाला जी और भोला चाचा को ये बात पता नहीं थी, हो सकता है ऐसे ही कई बच्चों के माता पिता ये बात ना जानते हो।
0: बहन जी, मेरे पास एक तरकीब है।
3: वो क्या मीना?
0: बहन जी, क्यों ना हम स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षा के अधिकार से जुड़े सवाल जवाब का खेल आयोजित करें, जिससे लोगों को इस विषय में जानकारी मिले।
3: तरकीब तो बहुत अच्छी है। मीना, रानो, मैं प्रश्न उत्तर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी।
2: और स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांव के सभी लोग स्कूल में आए। झंडा फहराने और राष्ट्रगीत के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच जी मंच पे आए और बोले,
5: भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रश्न उत्तर के खेल का आयोजन भी किया है, जिसका नाम है कौन बनेगा शिक्षा अधिकार दूत। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा रानो और मीना को।
0: सभी का हार्दिक स्वागत है इस खेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा शिक्षा अधिकार दूत।
4: तो ये रहा पहला सवाल। सुशील और सौरभ दो भाई हैं। दोनों 4वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद सुशील तो 5वीं कक्षा में चला गया, क्योंकि वो पास हुआ था। लेकिन फेल होने के कारण सौरभ 4वीं कक्षा में ही रह गया।
0: अब बताइए, क्या इस तरह किसी बच्चे को फेल किया जा सकता है?
6: मीना, अब ऐसा नहीं हो सकता।
0: अब क्यों सुमी?
6: वो इसलिए क्योंकि 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को कानूनन फेल नहीं किया जा सकता। और हाँ, शिक्षक का दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे की मदद करे।
3: तभी तो आजकल परीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि समीक्षा की जाती है।
7: ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि अक्सर परीक्षा के कारण बच्चों पे बहुत मानसिक दबाव पड़ता है।
0: भाई वाह, तारा और सुमी दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक हैं।
4: इसीलिए सुमी और तारा दोनों के लिए तालियां।
0: अब अगला सवाल। रुखसाना के माता पिता उसका दाखिला करवाने एक सरकारी स्कूल में गए, लेकिन रुखसाना का जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें दाखिला कराए बिना ही लौटना पड़ा।
4: हाँ या ना में बताइए, क्या रुखसाना के साथ ये सही हुआ?
8: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: वो क्यों रवि?
8: क्योंकि जब से शिक्षा एक कानूनी अधिकार बना है, दाखिले की प्रक्रिया को सरल करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आयु प्रमाण पत्र को भी मान्यता मिली है।
0: रवि ने दिया बिल्कुल सही जवाब, इसलिए रवि के लिए भी तालियां। अब तीसरा सवाल। स्कूल प्रबंधन समिति की सभा में अभिभावक, अध्यापक, छात्र एक साथ हिस्सा लेते हैं, ताकि स्कूल के विकास की योजना बनाई जा सके और स्कूल द्वारा सेवित क्षेत्रों से आने वाले सभी बच्चों का ब्यौरा तैयार हो सके।
4: बताइए ये सही है या गलत?
9: ये बात सही है।
4: सबीना का जवाब है बिल्कुल। बिल्कुल सही, इसलिए सबीना के लिए
9: तालियां।
4: अब आज का आखिरी सवाल,
0: इन तीन चीजों में से किसी टीचर को क्या क्या करना चाहिए? एक, टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल बच्चों के अनुकूल हो।
4: दो, टीचर को अब शिक्षण और तैयारी के लिए हर हफ्ते निर्धारित घंटे स्कूल में उपस्थित होना चाहिए।
0: तीन, टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सभी बच्चों के प्रति एक समान व्यवहार रखे।
9: तीनों,
10: हर टीचर को ये तीनों चीजें करनी चाहिए।
0: सभी ने दिया इस सवाल का सही जवाब, इसलिए ये सब कहलाएंगे
9: शिक्षा।
2: खेल खत्म होते ही लाला जी सरपंच जी के पास पहुँचे।
1: सरपंच जी।
11: जी लाला जी।
1: एक बात बताइए, क्या शिक्षा का अधिकार कानून हमारे गांव के स्कूल और सभी बच्चों पे लागू होता है?
11: जी हाँ लाला जी, इस कानून के विषय में और अधिक जानने के लिए कोई भी अभिभावक मुझसे या बहन जी से स्कूल आकर मिल सकता है। इस अधिनियम का एक लक्ष्य ये भी है कि बच्चों के माता पिता और टीचर एक साथ मिलके अपने बच्चे के शैक्षिक विकास की योजना बना सके।
1: सरपंच जी, अब से मैं भी सबको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताऊंगा।
12: शिक्षा का अधिकार, प्रगति का आधार।
2: भाई वाह, आज तो मीना से मिलके सचमुच बहुत मजा आया। सवाल जवाब का ये खेल भी देख लिया और ढेर सारी जरूरी बातें भी पता लग गई।
13: सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
2: चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता रची है।
0: मुफ्त मिलेगी शिक्षा, स्कूल भी बच्चों के अनुकूल।
12: शिक्षा का अधिकार, नहीं तुम जाना इसको भूल।
2: वाह वाह वाह वाह, भाई मीना और मिट्टू की कविता सुन के तो दिल बाग बाग हो जाता है। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
3: जी।
2: तो आज का शब्द है अनार। चलो बच्चों अब अनार के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी अनार का पहला अक्षर है अ और अ से होती है आँख।
2: शाबाश सुमी। अब आँख से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
5: आँख का तारा, जैसे मैं अपनी माँ की आँख का तारा हूँ।
2: हाँ दीपू, और इस मुहावरे का मतलब?
5: मतलब बहुत ही प्यारा।
2: बिल्कुल ठीक। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
6: अ के बाद अनार में आता है न और न से होता है नाक।
2: सही जवाब तारा। और मुहावरा?
6: नाक में दम करना, मतलब बहुत तंग करना।
7: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
2: हाँ कृष्णा बताओ।
7: अ और न के बाद अनार में आता है र और र से होता है राग।
2: शाबाश कृष्णा। और राग से जुड़ा मुहावरा?
8: अपनी डफली अपना राग, मतलब खुद की प्रशंसा करना।
2: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
1: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: डिटेक्टिव गोपीचंद। एक दिन गोपीचंद के घर फोन की घंटी बजी।
2: हेलो गोपीचंद, मैं मिस कामा बोल रही हूँ। मुझे एक धमकी भरा मैसेज मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें।
1: मिस कामा के घर गोपीचंद ने नोट पढ़ा।
3: इसमें यह लिखा है कि तुम सुल्तानपुर छोड़ क्यों नहीं देती हो? शहर में सभी तुमसे नफरत करते हैं। आप करती क्या हो?
2: जी, यूँ तो मैं यही बच्चों के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ और इसी के साथ साथ मैं घर में बच्चों को वायलिन भी सिखाती हूँ।
3: सफेद कागज पर न्यूज़पेपर काटकर लिखे गए हैं ये अक्षर। यहाँ कोई क्लू नहीं मिलता है। मिस कामा, आपको ये नोट कब मिला था?
2: मुझे लगता है शुक्रवार रात को जब पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई थी तभी किसी ने ये नोट डाल दिया होगा। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी और अगले दिन दरवाजे के पास मुझे ये नोट मिला।
3: तो फिर आपने मुझे सुबह के बजाय दोपहर में ही क्यों ये खबर दी?
2: जी, मैंने सोचा कि अगर ये मेरे ही किसी स्टूडेंट की हरकत हो तो इसे नजरअंदाज कर देना ही ठीक है। बच्चे अगर नाराज हो जाए तो इस तरह की बेवकूफियां कर बैठते हैं।
3: क्या आपको किसी पर शक है?
2: मुझे लगता है कि इसी मोहल्ले में रहने वाले मेरे 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट म्यूजिक क्लास छोड़ना चाहता था। गोपीचंद जी, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को कोई परेशानी ना पहुँचाए। कृपया उनसे ठीक से बात कीजिए।
3: वे सोच रहे होंगे आपके शहर छोड़ने पर क्लास बंद हो जाएगी। मैं तीनों से बात करूँगा।
1: गोपीचंद ने पहले स्टूडेंट करण कपूर से पूछा।
3: क्या आप इस नोट के बारे में कुछ जानते हो?
4: जी, मुझे इस नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि शुक्रवार रात को मैं घर पर ही था और

0: वायलिन पर नई नई धुन बजा रहा था।
1: क्या तुम्हें वायलिन बजाना पसंद है?
0: बिल्कुल भी नहीं।
2: फिर गोपी चंद राहुल राव के घर पहुँचे।
3: मुझे वायलिन बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं हमेशा वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ।
1: बेटा ये बताइए कि शुक्रवार की रात आप क्या कर रहे थे?
3: उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैं घर पर ही था और टीवी देखने में व्यस्त था, क्योंकि मम्मी पापा के रहते ये मुमकिन नहीं था।
2: आखिर गोपी चंद रोमा वाजपेयी के घर गए।
1: क्या शुक्रवार की रात आप घर पर थी?
4: जी बिल्कुल, उस रात मैंने अपनी सहेली को घर बुलाया था और हम दोनों खूब देर तक बातें कर रहे थे।
1: मिस कामा, मुझे पता है कि ये नोट किसने लिखा है।
5: बताइए गोपी चंद जी।
1: यह नोट राहुल राव ने लिखा है, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि वह शुक्रवार की रात कहाँ था तो उसने कहा कि वह टीवी देख रहा था, जबकि उस वक्त तो पूरे मोहल्ले में ही लाइट नहीं थी।
5: धन्यवाद गोपी चंद जी।
6: झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है, और राहुल का झूठ पकड़ते हुए गोपी चंद ने केस तुरंत ही सॉल्व कर दिया।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है चंद नसीहतें। शायर हैं डॉक्टर इकबाल। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। मिल नहीं सकती निकम्मों को जमाने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। खाक मेहनत हो सकेगी, हो न जब हाथों में जोर, तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए। खुश मिजाजी सा जमाने में कोई जादू नहीं, हर कोई तहसी कहे ऐसी तबीयत चाहिए। हंस के मिलना राम कर लेता है हर इंसान को, सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। एक ही अल्लाह के बंदे हैं सब छोटे बड़े, अपने हम जिंसों से दुनिया में मोहब्बत चाहिए। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठो गर फरागत चाहिए। जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा, नेक होने के लिए नेकों की सोहबत चाहिए। साथ वाले देखना तुमसे न बढ़ जाए कहीं, जोश ऐसा चाहिए ऐसी हमीयत चाहिए। हुक्मरान हो कोई हो, अपना हो या बेगाना हो, दी खुदा ने जिसको इज्जत उसकी इज्जत चाहिए। देख कर चलना कुचल जाए न छोटी राह में, आदमी को बेजबानों से भी उल्फत चाहिए। है इसी में भेद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की इताअत चाहिए। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। सब बुरा कहते हैं लड़ने को बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हो उनसे रफाकत चाहिए। हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर, दूर की उनसे फकत साहब सलामत चाहिए। बाप दादों की बड़ाई पर न इतराना कभी, सब बड़ाई अपनी मेहनत की बदौलत चाहिए। चाहते हो गर के सब छोटे बड़े इज्जत करें, शर्म आंखों में निगाहों में मुरव्वत चाहिए। बात ऊंची जात में भी कोई इतराने की है, आदमी को अपने कामों की शराफत चाहिए। गर किताबें हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुत्फ, काम की चीजें हैं जो उनकी हिफाजत चाहिए।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है राकेश पंडित और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया बड़ी ही अनोखी होती है। उनके मन में क्या है, अगर हमें कुछ सवालों से कभी पता चलता है तो उनके कुछ रैंडम जवाबों से बहुत कुछ पता चलता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, 4 बच्चे मौजूद हैं एक्चुअली, लेकिन उनके बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं सिर्फ एक विषय से। कैसे? आज हमारे साथ चलिए इस दुनिया को खोजने के लिए। दोस्तों, वैसे तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप हमेशा बच्चों को सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, यानी कि आरुषि, इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बच्चों को भी मालूम नहीं है और उनके लिए भी सीक्रेट है और आप लोगों के लिए भी। चलिए पहले बच्चों से मिलते हैं। हेलो बच्चों।
4: हेलो दीदी,
3: कैसे हो आप लोग?
4: बहुत अच्छे।
3: अच्छा, और मुझे लगता है वीकेंड पे तो और अच्छे होते होंगे, छुट्टी जो है छुट्टी ज्यादा अच्छी लगती है कि स्कूल वाले दिन?
4: मुझे
5: स्कूल वाले दिन,
6: मुझे छुट्टी
7: मुझे स्कूल
3: क्या बात है, आप लोगों को स्कूल ज्यादा अच्छा लगता
4: जी,
3: है
4: दी, दी,
3: हाँ। तो छुट्टी अच्छी नहीं लगती, कैंसिल कर दे सैटरडे संडे?
4: संडे
3: अच्छा लगता है,
4: कोई और बीच में छुट्टी आती है जैसे गांधी जयंती वगैरह वगैरह, मजा नहीं आता।
3: अच्छा क्यों?
4: वो बोर हो जाता हूँ दीदी घर पे।
3: ओ, दोस्त नहीं मिलते ना?
4: दोस्त भी, और मजा आता है पढ़ने में।
3: हाँ क्या बात है, अमन को भी मजा आता है?
7: हाँ, स्कूल में ज्यादा मजा आती है।
3: और शिवानी को?
8: मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता इसीलिए छुट्टी में मजा आती है।
3: और तरुण को कैसा लगता है?
9: उनको तो स्कूल में अच्छा लगता है।
3: क्या बात है, क्यों अच्छा लगता है इतना स्कूल में?
9: स्कूल में फ्रेंड्स के साथ पागलपंती होती है,
3: बहुत सारी मस्ती होती है ना। ओके, तो बच्चों एक बार अपने बारे में बता दो, आपका नाम और आपका क्लास।
9: मेरा नाम है रोशन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
4: और मेरा नाम है आयु।

0: वो ब्लू लाइट कहीं पे जल रही होती है ना, तो वो मेरे आंखों को चुभती है।
1: ब्लू कलर की लाइट आपके आंखों को चुभती है, ऐसा क्यों?
2: जैसे कि
0: दीदी देखो, आप वो देखो उस लाइट को, वो ऐसे रिफ्लेक्ट वो दिख रहे ना,
1: एक छोटी सी लाइट स्पीकर में से निकल के आ रही है,
0: लेकिन वो एकदम क्लियर नहीं दिख रही है। उसी की जगह रेड कलर लाइट होती है, वो एकदम क्लियर दिखती है।
1: ओके,
0: और दूसरी बात ये है कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है।
1: और ब्लू कलर का लाइट आपको चुभती है और ब्लू ही आपका फेवरेट कलर है?
0: ब्लू कलर की लाइट फेवरेट नहीं है, लेकिन ब्लू कलर फेवरेट है, जैसे ब्लू पेन, ब्लू कॉपी, जो भी मतलब
1: ब्लू कॉपी,
0: मतलब जो भी है, जो भी चीजें होती है वो ब्लू कलर में बहुत पसंद है।
1: अच्छा, और अमन?
2: ब्लू कलर वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लू हमारे आसपास के वातावरण में भी होता है, जैसे क्लाउड्स में होता है, आसमान में ब्लू कलर होता है, बस देखने में ब्लू कलर अच्छा लगता है। मेरी आंखों में ऐसा चुभता नहीं है कोई कलर।
1: ओके,
2: जैसे लाइट होती तो, हाँ लाइट होती तो चुभती है, अगर बहुत तेज होगी तो चुभेगी।
1: बहुत तेज तो फिर कोई भी कलर होगा तो चुभेगा।
0: हाँ, लेकिन ब्लू अलग ही है, मतलब उसके साइड साइड से कुछ निकलता है और आग होता है। बाकी बाकी बाकी लाइट से नहीं निकलता। देखो वो लाइट, व्हाइट लाइट कितनी क्लियर दिख रही है, ये बात है।
3: अच्छा,
0: एक डिसएडवांटेज है ब्लू का और एक एडवांटेज है कि मेरा फेवरेट है।
1: फेवरेट है आपका? ओके, और रोशन का क्या कहना है इस बारे में?
3: हाँ, ब्लू कलर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा फेवरेट तो रेड है।
1: अच्छा,
3: तब भी ब्लू कलर अच्छा लगता है।
1: ब्लू कलर अच्छा लगता है?
3: हाँ,
1: अगर हर चीज दुनिया में ब्लू हो जाए तो
2: अजीब लगेगा, अच्छा लगेगा,
3: अवतार फिल्म बन जाएगी।
1: तो वो तो अच्छी लगी थी सबको।
0: हाँ दीदी,
2: अवतार
0: ब्लू इंसान।
1: हाँ सोचो, ब्लू आयुष,
0: ब्लू शंकर,
3: सब कृष्णा बन जाएंगे।
1: ओहो,
0: शंकर बन जाएंगे।
2: लेकिन फिर लड़कियों पे तो ब्लू कलर सूट नहीं करेगा ना?
1: क्यों
0: क्यों
2: नहीं करेगा? क्योंकि लड़के
4: तो एलियन लगेंगी ना।
1: तो लड़कियों पे ब्लू कलर क्यों नहीं सूट करेगा?
2: क्योंकि वो अजीब सी दिखेंगी।
1: अजीब सी दिखेंगी? और कौन से कलर में लड़कियां अच्छी दिखेंगी? अच्छा,
2: व्हाइट।
1: व्हाइट, ओके। मतलब ब्लू कलर लड़कियों के लिए नहीं होता, आपको ऐसा लगता है?
2: नहीं होता है, पर ज्यादातर जैसे लड़कों के लिए ब्लू कलर रखते हैं, पिंक कलर ज्यादातर लड़कियों के लिए होता है।
1: ओके, आप लोगों को भी ऐसा लगता है ब्लू लड़कों के लिए होता है, पिंक लड़कियों के लिए?
0: मेरे को बिल्कुल नहीं लगता।
3: मेरे को तो नहीं लगता।
1: नहीं
0: लड़कियों को दीदी पिंक इतना पसंद है, मतलब लूडो में चार कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू और
2: ग्रीन,
0: ग्रीन, लेकिन लड़कियों को पिंक चाहिए होता है।
2: मुझे भी, मुझे पर्पल और पिंक दोनों चाहिए।
0: देखो अब इनके लिए स्पेशल लूडो बनवाए दीदी।
1: अच्छा, अब ये भी होता है क्या? लेकिन लूडो में पिंक कहाँ से?
0: वही तो दीदी, लड़कियां
2: होता है दीदी, मोबाइल में जो लूडो होती है ना, उसमें छह लोग पांच लोग खेलते, उसमें पिंक आता है।
3: तो वो पांच छह खेलते ना, चार में नहीं आता।
2: हाँ, नहीं आता, इसलिए तो बुरी बात है।
0: पांच की लूडो होती है।
3: हाँ,
2: येलो नहीं होना चाहिए था, उसके आगे पिंक होता, या फिर रेड की जगह पिंक होता।
1: ओके, तो आपको लगता है कि अमन, अच्छा सभी लड़कियों को पिंक पसंद होता है या ब्लू पसंद नहीं होता?
2: ज्यादातर लड़कियों को पिंक पसंद होता है।
1: हाँ, शिवानी?
4: मेरी फ्रेंड को तो ब्लैक पसंद है।
1: ओ, और शिवानी को?
4: पता है जिनको ब्लैक पसंद होता है ना, उनकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है।
1: अच्छा, ऐसा क्यों
0: होता है?
1: फैक्ट कहाँ से आया है, किसने दिया ये फैक्ट? मतलब मुझे लगता है किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है आज तक।
0: नहीं, मैंने पढ़ा था कि जिसकी ब्लैक कलर की कार फेवरेट होती है ना, वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है, ऐसा सुना था मैंने।
2: हो सकता है
0: कुछ
4: एकदम डार्क ब्लैक।
1: लेकिन बच्चों, वैसे ये आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, लिखने वाले कोई हम में से ही होते हैं, तो भले वो कुछ सोच के लिखते होंगे, लेकिन ये कोई साइंटिफिक, जब तक कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव ना हो ना, तब तक हम उसे फैक्ट नहीं कह सकते।
0: दीदी, ये कैसे पता चलेगा कि वो साइंटिफिकली प्रूफ है या नहीं है?
1: उसमें किसी आर्टिकल जो आप पढ़ते हो आप लोग, उसमें कुछ मेंशन होगा कि इस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की, उसमें ये आया, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी रिसर्च की। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो आप उसे गूगल पे लिख के देख सकते हो कि क्या ऐसी रिसर्च हुई है।
0: ओके,
1: आपको पता चल जाएगा ये फैक्ट है या नहीं, है ना? तो अब ब्लू कलर की बात हो रही थी, अब भाई लड़कियों को मतलब ब्लू कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता,
2: नहीं,
1: ऐसा
2: कुछ को होता होगा।
0: ये तो अपने पे ले रही है दीदी।
2: मतलब कुछ लड़कियों को होता होगा, मुझे तो नहीं पसंद ब्लू कलर।
1: आपको बिल्कुल पसंद नहीं है?
2: थोड़ा बहुत,
1: बहुत।
4: मुझे तो लाइट ब्लू पसंद है। हाँ, लाइट ब्लू और पिंक और ऑरेंज।
1: रेडियो मधुबन का कलर भी ब्लू है। अब वो तो सबको पसंद है या वो भी नहीं है?
2: नहीं, वो तो अच्छा लगता है,
0: बहुत अच्छा है
2: दीदी। ब्लू ना व्हाइट के साथ अच्छा लगता है।
1: ओके,
2: कॉम्बिनेशन में।
1: तो अगर आपको कोई ड्रेस पहनने को कहा जाए तो आप कौन सा ब्लू के साथ क्या पहनोगे?
2: ब्लू के साथ, हाँ दीदी व्हाइट ही ठीक लगेगा, अच्छा लगता है देखने में।
0: ब्लू जींस, व्हाइट शर्ट अच्छी लगती है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में।
1: रोशन को भी?
3: हाँ,
2: ब्लू जींस।
0: मेरे पास तो दीदी 80% जींस ब्लू ही है।
3: मेरे पास 100% सारे ब्लू है।
2: मेरे पास एक जींस है वो भी ब्लू है।
0: मेरे पास जो अलग कलर के ना, वो सब मम्मी के है।

0: बोलते सब ब्लू ही लेता है, एक आधी लेता, मम्मी के खुशी के लिए ले लेता हूँ, बाकी
1: सारे ब्लू।
2: अच्छा बच्चों, एक चीज कहते हैं कि हर कोई चीज, हर कलर कुछ कहता है। जैसे आप लोग बोल रहे थे ब्लैक डार्क होता है और ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है अगर ब्लू कलर क्या कहता है, मतलब क्या कहना चाहता है ब्लू कलर?
0: जैसे व्हाइट शांति।
3: हाँ, और ऑरेंज हमारे मूड पे डिपेंड कर बताता है, मूड के बारे में ऐसा कुछ।
2: ओके,
3: और रेड हमारे गुस्से में बताता
0: है। ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू
3: ब्लू, हाँ ब्लू ना शायद, हाँ फीलिंग्स, जैसे हम रोते हैं शायद उस पे, शायद से
0: ब्लू ना वो जब बहुत ही एंग्री हो जाते हैं ना, हाँ तब उसका एक इमोजी होता है, वो मैंने देखा था।
3: अच्छा, वो तो रेड होता है
2: व्हाट्सएप पे, वो इमोजी एक आता है
0: ब्लू कलर का भी होता है,
2: उसका हेड ब्लू ब्लू हो जाता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: ओह ओके,
3: मैंने नहीं देखा,
2: मैंने देखा, मुझे याद है,
3: मैंने भी देखा है। नहीं है
2: कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देंगे।
3: हाँ,
0: दीदी एक बात बता देता हूँ, ब्लू से याद आई, एक ना दीदी शहर, नहीं नहीं शहर नहीं, गांव है शायद, उसके सारे के सारे घर जितने भी घर है सब ब्लू कलर से पेंटेड है।
2: अच्छा,
1: जैसे उदयपुर में पिंक सिटी है,
0: ऐसे वो एक ब्लू विलेज है।
2: और ये नाम अभी अभी आयुष ने दिया है उस विलेज को।
3: वैसे दीदी ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता, लेकिन ब्लू वेल मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: ब्लू वेल अच्छी लगती है, ओके चलो, मतलब वो तो ब्लू अच्छी लगती है, कम से कम वेल का तो कलर चेंज नहीं कर सकते ना, पिंक नहीं कर सकते।
3: सी भी ब्लू अच्छा लगता है समुद्र।
2: अच्छा रोशन ने तो बताया नहीं ब्लू कलर क्या कहता है।
1: हाँ ब्लू कलर में मतलब जो भी ब्लू कलर दिखाता है ना वो एनवायरमेंटली दिखाता है, जैसे कि पानी, जब भी हम बचपन में ड्राइंग करते थे पानी बनाते थे, स्काईज बनाते थे।
2: क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है।
3: नदियां बनाते थे,
2: मतलब एक कामनेस सी रहती है ना ब्लू कलर में कहीं ना कहीं।
1: हाँ
2: मुझे भी ऐसा लगता है,
3: ज्यादातर ब्लू कलर पानी के लिए यूज होता है।
0: ब्लू से क्वेश्चन याद आया, पूछूं आप सब में से कोई उत्तर देना, अगर ब्लू कलर के समुद्र में हम एक ब्लैक कलर का पत्थर डाल दें तो क्या होगा?
2: ब्लू कलर के समंदर में ब्लैक कलर का पत्थर डाले तो क्या होगा?
0: बताइए।
3: पत्थर कलर तो नहीं छोड़ता ना।
0: नहीं तो मैंने कब का कलर, मैंने पूछा क्या होगा?
3: वो साफ दिखेगा,
2: गीला हो जाएगा।
0: और दूसरी बात, पत्थर डूब जाएगा,
2: पत्थर डूब जाएगा। ये मैंने आंसर दिया आयुष के सवाल का।
0: दीदी बहुत ही इंटेलिजेंट है,
3: वो तो है,
2: ये भी आज आयुष ने कहा है। लेकिन बच्चों किस चीज को हम फैक्ट नहीं कह सकते, ये तो आपको मालूम चल गया ना।
0: मैंने कब कहा दीदी फैक्ट है?
2: नहीं नहीं मैं तो जस्ट पूछ रही थी। अच्छा तो ब्लू कलर क्या कहता है, शिवानी ने भी बताना बाकी है, क्या कहता है शिवानी?
4: मुझे लगता है शायद रोने में।
2: रोने में, ऐसा क्यों लगता है आपको?
4: क्योंकि वो इमोजी में बना रहता है।
0: हाँ ब्लू टीयर्स,
3: हाँ वो रोने वाला,
1: वो भी पानी है,
2: वो भी पानी है। ओके ठीक है। अच्छा जैसे हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं ना, कभी कुछ कलर्स डालते हैं पोस्टर्स में और इसमें फॉन्ट्स में, है ना?
3: हाँ।
2: तो आपको क्या लगता है किस तरह का पोस्टर, जैसे एनवायरनमेंट के लिए कभी डिजाइन करते हैं, कभी हम बनाते हैं कि सेफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बनाते हैं, कभी एक कोई हैप्पी ओकेजन होता है पार्टी वाला, वैसा पोस्टर बनाते हैं। तो आप मान लो आपको ब्लू कलर से एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको ब्लू सबसे ज्यादा यूज करना है, तो वो किस टॉपिक पे आप बनाओगे पोस्टर?
1: सेव वाटर,
0: सेव वाटर।
2: अच्छा सेव वाटर के अलावा क्या करोगे? एनवायरनमेंट और सेव वाटर, चलो ठीक है, और कुछ अगर बनाना हो तो क्या करोगे?
3: मैं क्लाउड्स बना सकती हूँ और उस पे समुद्र के।
2: टॉपिक क्या होगा?
3: टॉपिक तो नहीं है, बस ऐसे ड्राइंग बना सकती हूँ समुद्र और क्लाउड्स की।
2: ओके तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस को प्रमोशन दे सकते हो जहाँ पे क्लाउड्स, स्काई, आप स्काई डाइविंग करो और ऐसा
3: कुछ,
2: राइट?
3: और पहाड़ भी बना सकती हूँ ऐसा कुछ,
2: बिल्कुल। और बाकी दो कभी सोच रहे हैं? सोचो सोचो।
4: मैं तो बारिश को करूंगी।
2: बारिश को, और उसकी थीम क्या होगी, किस लिए होगा वो पोस्टर?
0: पेड़ मत काटो।
2: नहीं तो बारिश नहीं होगी।
0: सही बात है, बिल्कुल
2: बिल्कुल सही बात है।
0: देखो आधा मैंने दिया, आधा उसने, मैं नहीं बता रहा।
2: नहीं ये तो आपने शिवानी की हेल्प की, फिर हम भी आपकी हेल्प करेंगे बाद में, लेकिन बताना तो आपको आइडिया पड़ेगा।
0: इतना रोशन आप बताइए,
1: पहले आप बताइए ना।
0: नहीं पहले आप,
2: पहले आप, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है
0: ऐसा। ठीक है मैं पहले बैठ जाता हूँ। अर्थ कैसी रहेगी? सेव अर्थ।
3: हाँ ज्यादातर तो अर्थ में ब्लू और ग्रीन ही होता है।
2: ओके राइट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज अर्थ को जब हम देखते हैं, प्लैनेट को जब भी कलर बनाते हैं तो
0: 70% तो
2: वाटर है, बिल्कुल
0: ऊपर से ब्लू ही दिखता है, इसलिए तो वाटर का कलर ब्लू ड्रॉ करते हैं।
2: आज ब्लू है पानी पानी। और रोशन
1: मेरा पोस्टर का नाम होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग.
2: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अरे वाह.
1: रेन को बचाओ, बारिश को बचाओ, बारिश का पानी को बचाओ.
2: राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपने बात की, बहुत जरूरी बात की. बारिश के पानी को बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
3: स्टोर करके रखना
2: है ना.
1: हाँ.
2: अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आप लोगों के पास जैसे पोस्टर तो आप लोगों ने बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डिबेट में खड़ा कर दिया जाए और आप लोगों को बोला जाए कि प्रूफ करो कि ब्लू सबसे अच्छा कलर होता है,
0: ठीक है, तो मैं कर दूंगा.
2: कैसे करोगे?
0: तो मतलब वो
2: सारे कलर्स में ब्लू सबसे अच्छा कलर है, अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करोगे?
0: ठीक है, मैं बोलूंगा, देखो जो हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पोस्टर, और उसका कलर होता है ब्लू.
2: ओके,
0: ठीक है,
2: ओके.
0: और हमारा जो आसमान होता है जो बारिश देता है क्लाउड से, वो भी ब्लू होता है. और अर्थ भी ब्लू होती है. तो इतनी मेन मेन इम्पोर्टेंट चीजें ब्लू होती हैं.
2: अर्थ पे पानी ब्लू होता है.
0: हाँ मतलब वही. तो और अर्थ को भी जब ड्रॉ करते हैं तो ब्लू ही यूज करते हैं ना उसमें भी.
2: ओके,
0: ब्लू और ग्रीन. तो इतनी मेन मेन चीजों का कलर ब्लू है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कलर है.
2: ओके, क्या बात है, मैं तालियां बजा रहा हूँ आयुष के लिए. वाओ आयुष,
0: थैंक यू.
2: और कौन अगर ब्लू प्रूफ करना है तो कैसे करोगे?
1: मैं बोलूंगा कि रेडियो मधुबन बेस्ट है, वो भी ब्लू है. बस ब्लू इज द बेस्ट. हैश फ्रूट.
0: वाओ,
2: चलो मैं रोशन के लिए तालियां बजा रहा
0: हूँ. अरे इज इक्वल टू,
2: क्या बात है,
0: एलएच इज इक्वल टू.
2: ओके, मैथ्स हो गया ये तो. ओके,
3: मैं तो अच्छे से साबित नहीं कर पाऊंगी ब्लू को, क्योंकि
0: इसका फेवरेट ही नहीं है.
3: फेवरेट ही नहीं है.
2: लेकिन ट्राई तो करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं.
3: हाँ,
2: जो आपके मन में आ रहा हो.
3: ठीक है, जहाँ हम ज्यादातर बैठते हैं ना दूर, जैसे अपने शहर से दूर जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं गाँव गाँव में, ज्यादातर हमें नदियाँ या फिर ऐसे ज्यादातर मतलब
2: हाँ हाँ बोलो बोलो
3: मतलब नदियाँ और पहाड़ में ऐसे ही बैठते हैं तो फिर क्लाउड देखने को मिलते हैं, शांति होती है. और जब हम अपने आंखें बंद करते हैं ना, मैं जब भी आंखें बंद करती थी धूप में, तो मैं जब भी आंखें खोलती थी उसको बंद करके सोचती थी कुछ भी, तो भी खोलती थी तो मुझे ज्यादा ब्लू कलर दिखाई देता है. हम आंखें जब धूप में बंद करते हैं और जब हम आंखें खोलते हैं तो सच में हमें ब्लू दिखाई देता है.
2: ओके,
3: और बिल्कुल ब्लू ब्लू पूरा हो जाता है आंखों के पास पूरा, और कुछ कलर नहीं दिखाई देता.
2: इसलिए भाई अब जब आंखों को पहला कलर दिखाई दे रहा है तो इसलिए बेस्ट हो गया.
1: आंख भी मतलब आईज भी ब्लू रहते हैं किसी.
3: पहले तो जब मैं आंखें बंद करती धूप के सामने तो रेड होता है, पूरा रेड होता है, फिर मैं खोलती हूं तो ब्लू हो जाता है.
2: ओके,
1: सन को देखने से ब्लू हो जाता है.
2: ओके,
1: देखने से भी हो जाता है.
2: चलो ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ताली बजा दो अमन के लिए. क्या दूर की सोच है.
0: रेनबो में भी ब्लू होता है, वो सबसे यूनिक दिखता है.
2: और शिवानी क्या बोलना चाहेगी, कुछ बोलना है शिवानी को? जो भी वो सोचो आप, सही गलत तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ सोचा होगा जरूर, है ना? कुछ तो
4: पानी. नील कमल भी तो होता है.
2: नील कमल भी होता है.
0: okay. कमल तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है.
4: हाँ, तो इसलिए ब्लू अच्छा है.
2: देखो आयुष ने आपकी मदद कर दी, क्योंकि आपने आयुष की मदद की थी ना.
3: नहीं. हाँ.
2: चलो तालियां बचा दो भाई शिवानी के लिए.
0: बार भी मैंने करी दी.
2: अच्छा, ओहो, चलो कोई बात नहीं, आयुष भाई अब बड़े हैं.
3: दीदी मैंने नील कमल को कभी नहीं देखा. Oh. मैं तो सिर्फ पिंक लोटस को ही देखा.
2: नील कमल तो एक मूवी भी आई थी पता है बच्चों, बहुत पुरानी.
4: हाँ, मैंने देखी भी.
3: पता है
0: उसमें नील कमल नहीं होता.
3: नहीं, वो मूवी का नाम
0: मूवी का.
4: और एक कंपनी भी है ना.
0: हाँ,
4: नील कमल वाली.
0: सही बोला, कंपनी भी है.
4: उसकी कुर्सी और टेबल बनते हैं. प्लास्टिक.
0: और दीदी पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेन, उसकी इंक भी ब्लू होती है.
1: ब्लैक भी हो सकता है.
0: हाँ, और पता है दीदी, देखो हमारी जैसे मतलब एक रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखते हैं और आंसर ब्लू पेन से.
2: हाँ.
0: लेकिन मैं जो हूँ ना, क्वेश्चन भी ब्लू से लिखता हूँ, आंसर भी ब्लू से.
1: हाँ, ये मैं भी पहले करता था, बॉल पेन से और ये जेल पेन से.
0: नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों ही ब्लू और बॉल पेन से.
2: अच्छा.
0: हाँ, ब्लू मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने मैम को बोल दिया. मैंने बोला कोई बात नहीं.
3: मैं तो ब्लैक से क्वेश्चन नोट करती हूँ आंसर, और सारी मेरी जो क्लास है सब ब्लू से ही करती है, एक ही पेन को यूज करती है.
0: दीदी बार बार चेंज करो.
3: वही बात
0: कौन करे.
2: और व्हाइट पे अलग से दिखाई भी देता है.
3: ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है.
0: आइस क्रीम का आइस जो होता है वो भी ब्लू होता है.
3: ब्लू होता
0: है. हाँ, तो
3: आइस ब्लू होती है.
1: हाँ, इसलिए.
2: ओके ओके, मतलब आप लोग को पता है बच्चों कितनी देर हो गई आप लोगों को ब्लू पे बात करते हुए?
0: नहीं पता चला।
2: पूरे 20 मिनट्स।
0: दीदी जब आपने बोला कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लू, तो मैंने सोचा हम ब्लू पे क्या बात कर पाएंगे।
1: हाँ, मैंने भी ये सोचा।
0: कितनी सारी बात हो गई।
2: आप लोगों ने भी यही सोचा था?
3: अच्छा,
2: तो बताओ इस कॉन्वर्सेशन से आज आप लोगों को क्या सीखने को मिला?
3: हम लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो ब्लू कलर की है।
2: ओके, और
1: ब्लू इज द बेस्ट।
2: ये तो चलो आज का हमारा विषय था, बट मेन मकसद ये था कि आप लोग किसी भी टॉपिक के बारे में अगर सोचो तो हो सकता है आपको उस वक्त लगे कि आपको कुछ नहीं मालूम या आप क्या बोलोगे, लेकिन आपके पास अगर आप सोचने लगोगे बहुत कुछ है। तो यानी कोई भी लाइफ में आपके चीज आती है, मान लो कोई भी ट्रबल आती है, कोई बात आती है, कोई ऐसा जॉब आपके पास आता है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए नया है, तो ये नहीं सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उसे करना शुरू करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये तो आप लोगों ने खुद अभी प्रूफ कर दिया।
0: हाँ।
2: किया ना सभी ने?
3: हाँ।
2: है ना, तो फिर आगे जो भी ऐसा लगे कि ये तो नया है नहीं हो पाएगा, तब क्या सोचोगे?
0: ये तो बहुत इजी है, जैसे हाँ, हमने उस दिन याद करूंगा, जैसे हमने उस दिन ब्लू कलर पे इतनी सारी बात करी, तो ये तो एक छोटी सी बात है,
1: तो मैं मेरी बन गया।
2: हाँ, तो जब भी आपको ऐसी चीज लगे ना, अरे इस पे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ब्लू कलर याद कर लेना।
3: हाँ, वो भी है।
0: तो आज के हमारे ऑडियंस को भी यही सीख मिली सुन।
2: बिल्कुल, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। राइट, बिना टॉपिक के आप लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली।
0: यू कैन डू इट।
2: और वो भी सेंसिबल बातें, है ना। तो और आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हो, से ये भी साबित हो जाता है। है ना, आप लोगों ने पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आंखों के सामने ब्लू कलर सब कुछ आ गया, है ना, नील कमल तक पहुंच गए। चलो फिर बच्चों ऐसा करते हैं, अभी तो हम लोग गुड बाय करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे और दोबारा कुछ और अलग विषय पे बात ही करेंगे। ओके,
0: ठीक है,
3: बाय दीदी।
2: बाय बाय बच्चों।
3: बाय दीदी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
1: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 11वां पाठ सुनीता अंतरिक्ष में पृष्ठ 99। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्र को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा बोली, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं, मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। शाहमीर ने कहा, ये रहा अमेरिका, ये है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा बोली, अरे भाई ये सारा आसमान है, ये तारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा बोली, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। शाहमीर बोला, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो उसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा बोली, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शाहमीर बोला, फिर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। पृष्ठ 100। उजैरा बोली, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर बोला, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा बोली, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आईं तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थीं। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आईं। पृष्ठ 101। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। यहाँ सुनीता विलियम्स के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 1, यह भरी उड़ान, 9 दिसंबर 2006। अरे पांव टिकते ही नहीं, 11 दिसंबर 2006। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? 11 दिसंबर 2006। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। 16 दिसंबर 2006। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। क्लास बनी अंतरिक्षयान यानी स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्षयान बन गई है। तुम शून्य से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब दिखाओ। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो, 360 किलोमीटर दूर कितना होता है? तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ता? पृष्ठ 104। जादू 1। नन्ना सा कागज, चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्ना कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? जादू 2। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर मेर के बराबर साइज का, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज का रोल लो। कागज की कई तहों से एक रोल बना सकते हो। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। पृष्ठ 105। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का एक फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम ये फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? और क्या क्या देखा? उजैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा बोली, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? शाहमीर बोला, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिख रही हैं। उजैरा बोली, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? पृष्ठ 106। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा बोली, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए? सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है तो कभी घुप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। पृष्ठ 107। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है, उसका भी चित्र बनाओ। आज की तारीख, एक हफ्ते बाद की तारीख और 15 दिन बाद की तारीख। पता करो अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तालिका। तारीख 28 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 19:16 और चांद डूबने का समय 8:50। तारीख 29 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 20:17। चांद डूबने का समय 10:03। तारीख 30 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 21:22। चांद डूबने का समय 11:08। तारीख 31 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 22:29। चांद डूबने का समय 12:03। पृष्ठ 108। तालिका के अनुसार बताओ। 28 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बजकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बजकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में रिक्त स्थान घंटे और रिक्त स्थान मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। ये कविता अनवारे इस्लाम ने लिखी है। पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है। चांद की सतह कहाँ दिख रही है? चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृष्ठ 109। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे। बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों, तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे? सुनीता अंतरिक्ष में। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 11वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं 3 अगस्त के बारे में, और बहुत ही अच्छी बातें होगी आज। और आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है जो खास इतिहास में इन्होंने कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहला नाम आता है मैथिली शरण गुप्त, जिनका आज जन्मदिन है। श्री प्रकाश, शकील बनाई, बाबा हरभजन सिंह, शशिकला जयदेव, चुन्नीलाल मिश्रा, सुनील छेत्री, विश्वभूषण हरिचंदन, रोहित मेहता, शांतनु ठाकुर, इन सभी का आज जन्मदिन है। इसके साथ ही बनारसी दास, स्वामी चिन्मय आनंद, सीएम पुनाचा और मोहनोता नौसाई, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग एक विचार के साथ करते हैं, और हमेशा अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप चिंतन मनन करते हैं तो वो विचार आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि एज यू थिंक यू बिकम, माने इसका मतलब जैसे आप सोचते वैसे आप बनते हो। तो क्यों ना हम अपने सोच को सुविचार से बदल दें, है ना। तो लीजिए आपके लिए एक सुविचार। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए इन्हीं शुभ विचारों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर कार्यक्रम सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए अब बात करते हैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, बाबा हरभजन सिंह के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति, भारत के सेना का एक ऐसा सैनिक जिसके बारे में ये माना जाता है कि अपनी मृत्यु के बाद आज भी वह देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। हरभजन सिंह की मृत्यु 11 सितंबर 1968 में सिक्किम के साथ लगती चीन की सीमा के साथ नत्तुलाल दारी दर्रे में गहरी खाई में गिरने से हो गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तब से लेकर आज तक ये सिपाही भूत बनकर सरहदों की रक्षा कर रहा है। इस बात पर हमारे देश के सैनिकों को पूरा विश्वास तो है ही, साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं क्योंकि उन्होंने कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। तो है ना कमाल की बात। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हरभजन सिंह का जन्म आज ही के दिन 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला जिले में बोदल नामक ग्राम में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की थी और 1955 में उन्हें DAV हाई स्कूल पट्टी से मैट्रिकुलेशन किया था। 1956 में हरभजन सिंह अमृतसर में एक सैनिक के रूप में प्रविष्ट हुए और सिंगल कोर में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई थी। वे 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात हुए और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी यूनिट के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके बाद उनका स्थानांतरण बदली हो गई 18 राजपूत रेजिमेंट के लिए। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं और उनकी समाधि की और उनके कुछ देश सेवा की बातें आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नाम सुहे जानिए जो रमता सकल जहां,

नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए जाबाद देश के सिपाही बाबा हरभजन सिंह के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। और 1968 की बात है, कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम के इसमें सेवारत थे और 4 अक्टूबर 1968 को कच्छरों का एक काफिला लेकर पूर्वी सिक्किम के तोकुला में डोंग चुई तक जाते समय पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा। जब भारतीय सेना ने बाबा हरभजन की खोज खबर लेनी शुरू की गई तो 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसे विश्वास किया जाता है कि उन्होंने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पड़ा है। और उन्होंने प्रीतम सिंह से ये भी इच्छा जाहिर की कि उनकी समाधि भी वहीं बनाई जाए। पहले प्रीतम सिंह की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी छोक्याछू नामक स्थान पर समाधि बनाई। मरने के बाद बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नाथुला के आसपास चीन की सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते, जो हमेशा सत्य होती रही। तभी से बाबा हरभजन सिंह अशरीरी भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी तथ्य के मद्देनजर उनको मरणोपरांत मृत्यु के बाद अशरीरी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुनः उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया। मान्यता ये है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। और इस तरह से ये बातें वहाँ के गाँव के लोगों को भी पता है और आज भी देश सेवा करते हैं हरभजन सिंह, ये लोग वहाँ पर बताते हैं। और ये 1968 में इनका देवासन हुआ, लेकिन आज भी कई वर्षों से बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही में कैप्टन की हो गई। चीनी सिपाहियों ने भी उनके घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त करने की पुष्टि दी है। आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था और अशरीरी सेवा के लिए भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जपलाई गाड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर लाया जाता है। यहां से सेना की गाड़ी उन्हें गांव में उनके घर तक छोड़ने जाती है। वह सब कुछ उनकी माता जी को सौंपा जाता है। फिर उसी ट्रेन में उसी आस्था और सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नथुला लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते और अदालत का दरवाजा खटकाया जाए, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना के बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भोजन बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पुनः सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती है। तो ये कुछ बातें हैं और आशा करूंगा कि इस तरह की बातें शायद आप सभी को भी अचंभित कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आज भी कहीं ना कहीं हमें उस शक्ति की तरफ ध्यान दिलवाती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मस्कर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाबा हरभजन सिंह की अनोखी कहानी अशरीरी की आपने सुनी, तो आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक और महान व्यक्ति के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ये भारत के एक ऐसे कवि हैं जिनके लिए आज भी जितने भी कवि हुए हैं वो इनके आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसे समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भ के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसी से ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का ये सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आइए ऐसे विशेष मैथिली शरण गुप्त की कहानी आपको सुनाते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, बड़े ही प्यार से आपको कहानी सुनाएंगे, आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अच्छा लगता है हमें। और जब भी वो आते हैं तो कहानी सुनाते हैं आपके लिए, अब उनकी आवाज़ में सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: सदियों से कविताएं हमारे जीवन का दर्पण बन के रही हैं और इस दर्पण को जो हमें दिखाता है उसे हम जानते हैं कवि के नाम से। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही कवि के बारे में, और वो कवि हैं हमारे देश के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। हेलो जी, नमस्कार, मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं जेएमसी कैप्सूल एंटरटेन योर नॉलेज में। आज हमारे देश के राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म दिवस है और आज हम आपके लिए लाए हैं उनके जीवन के दर्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला राष्ट्रकवि के जीवन परिचय का। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित चिरगांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई थीं। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और बंगला साहित्य का अध्ययन किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को प्रेम से सभी दद्दा जी कहकर पुकारते हैं। बात करें उनकी शिक्षा की तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान ना होने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई, लेकिन बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। बात करें उनके संपूर्ण जीवन और उनके करियर की तो उनके शुरुआती दौर में उनकी रचनाएं उनके उपनाम रसिकेंद्र से 1904 से 1905 के बीच कई पत्रिकाओं में छपने लगी थी, जिनमें कलकत्ता की वैश्योपकारक, बंबई की वेंकटेश्वर और कन्नौज की मोहिनी पत्रिका शामिल थी। उस समय तक गुप्त जी ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने वाले पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुई। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में इलाहाबाद से उस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, जो उस समय सबसे अच्छी पत्रिकाओं में से एक थी। और उस समय के कवियों के लिए सरस्वती पत्रिका में अपनी कविताओं का छपना एक सपने से कम नहीं होता था। मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले और उनसे अपनी कविताओं के सरस्वती पत्रिका में छापे जाने की बात की, लेकिन द्विवेदी जी ने उनसे कहा कि इस पत्रिका में वो केवल खड़ी बोली की कविताएं ही छापते हैं। जिसके बाद गुप्त जी ने ब्रज की जगह खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरस्वती पत्रिका में उनकी हेमंत नाम की पहली कविता प्रकाशित हुई और तब से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु बन गए। जिसके बाद 1905 से 1921 के बीच सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताओं का लगातार प्रकाशन होता रहा। उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं किताब का रूप लेने से पहले ही सरस्वती पत्रिका में छापी जा चुकी थीं। द्विवेदी जी के कारण मैथिली शरण गुप्त बहुत लोकप्रिय हो गए थे। मैथिली शरण गुप्त खुद लिखते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस का नाद, कि करते तुलसी दास भी कैसे मानस का नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। कुल 16 साल में 300 के करीब मैथिली शरण गुप्त की कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस दौरान उनकी कई रचनाएं पुस्तकों के रूप में हमारे सामने आई, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1910 में आई रंग में भंग, जिसने लोगों को जोश के साथ भर दिया। 1910 में आई जयद्रथ वध, इस रचना में गुप्त जी ने 1905 में हुए बंगाल विभाजन से आए उनके गुस्से को दिखाया। फिर 1912 में उन्होंने रचना की भारत भारती की, जो 1914 में प्रकाशित हुई, जिसने बहुत लोकप्रियता हासिल की। इसके 3 खंड थे, जिसमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को ही दर्शाया गया था। 1914 में ही उनकी शकुंतला नामक रचना आई। फिर 1916 में किसान नाम से कविता संग्रह आया, जिसमें उन्होंने किसानों को केंद्र में रखकर उनके लिए कविताएं लिखी थीं। सरस्वती पत्रिका के अलावा देश की और भी कई लोकप्रिय पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थीं, जिनमें इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिका शामिल हैं। इसी बीच अपनी रचनाओं के साथ गुप्त जी ने दूसरी भाषा के साहित्य का भी अनुवाद किया, जिनमें बंगाली भाषा में माइकल मधुसूदन दत्त की विहिरिधि वज्रांगना और नवीत चंद्र सेन की पलासी का युद्ध शामिल है। इसके अलावा फारसी भाषा में उमर खयाम की रुबाइयां हैं और संस्कृत भाषा में महाकवि भाष्य द्वारा रचित स्वप्न वाश विदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अभिमारक नामक नाटक शामिल हैं। इनके अलावा उन्होंने खुद भी विरोत्तमा, चंद्रहास और अनद नामक नाटकों की रचना की। 1921 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती पत्रिका के मालिकों द्वारा अंग्रेजों के डर के कारण नहीं छापी गईं, जिसके बाद भारत के प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रिका प्रताप में निडरता से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन किया। फिर 1925 में आया गुप्त जी का एक ऐतिहासिक खंड काव्य पंचवटी, जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के पंचवटी में बिताए समय पर आधारित था। फिर 1927 में हिंदू, सौरंधी, वन वैभव और शक्ति नामक रचनाएं आईं। फिर 1929 में आई झंकार, जिसमें देशभक्ति की कविताएं थीं। फिर आया साल 1931, जिसमें गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना आई, जिसका नाम था साकेत। हिंदी के विद्वानों ने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे महाकाव्य की संज्ञा दी। इसमें अयोध्या की घटनाओं का वर्णन था, जो लक्ष्मण और खास तौर से उनकी पत्नी उर्मिला पर आधारित था। फिर 1932 में उनका यशोधरा नामक महाकाव्य आया, जिसमें महिलाओं की भावनाओं को दर्शाया गया था। फिर 1936 के दौरान मैथिली शरण गुप्त जी 50 वर्ष के हो चुके थे। इस अवसर पर उन्हें महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1936 में ही इनकी द्वापर नाम की रचना आई। फिर 1940 में इनकी नहुष नामक रचना आई। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह के दौरान इन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने 1941 में गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल की सलाखें इनकी लेखनी को नहीं रोक पाई। इस दौरान उन्होंने जेल से ही अपनी रचना का प्रकाशन किया, जिसका नाम था कुणाल गीत। इसके अलावा इनके काव्य जय भारत लिखने की भूमिका भी जेल में ही शुरू हुई, जो 1952 में जाकर प्रकाशित हुई। 7 महीने के बाद इन्हें जेल से मुक्त किया गया। फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जब हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। देश की आजादी के बाद 1952 में गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और कुल 12 साल तक उन्होंने एक नेता के तौर पर देश में अपनी सेवाएं दी। उस समय वो अपनी कविताओं के माध्यम से सदन के अंदर अपनी बातों को एक अनोखे ढंग से रखते थे। आजादी के बाद अब उनकी रचनाओं में देश की प्रगति और उसके विकास की भावनाएं भी शामिल हो चुकी थी। फिर 1956 में आई राजा प्रजा नामक उनकी एक रचना और फिर 1957 में उन्होंने विष्णु प्रिया की रचना की। फिर 9 नवंबर 1962 में उन्होंने सदन में भारत पर चीन के हमले को लेकर अपनी विजय पर्व रचना सुनाई और फिर मई 1964 में बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उन्होंने सदन से विदाई ली और अपने गांव वापस लौट गए। इस बीच उन्होंने अपनी आखिरी रचना लिखी जिसका शीर्षक था गूंज बची है गीत गए। फिर आया 1964 का वो 11 दिसंबर का दिन जब हमने अपने देश के राष्ट्र कवि को खो दिया। मैथिली शरण गुप्त जी इस दिन पूर्ण हो गए। बात करें उनके पुरस्कारों की तो उनके पुरस्कारों में शामिल है पद्म भूषण जो उन्हें 1954 को मिला। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कवि के तौर पर, एक अनुवादक के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर हमारे समाज, साहित्य और देश के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ज्ञानांजलि दे रहे हैं। इस वीडियो में जो जानकारी रूपी ज्ञान है वो अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के जीवन में यदि काम आया तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। अंत में मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की ही कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो कहते हैं कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है और मृतक समान है। आपको बता दें कि ये वही पंक्तियां हैं जो पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका प्रताप की टैगलाइन के रूप में छापी जाती थीं। आज जेएमसी स्टडी हब की टीम हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन करती है।
1: तो सुना आपने मैथिली शरण गुप्त की कहानी। आशा करूंगा आप उनके जीवन कहानी से बिल्कुल प्रभावित हुए होंगे। वो अमर लेखनी ईश्वर से प्रार्थना करती है इस देश को, हे दीन बंधु आप फिर अपना ये भगवान भारतवर्ष को फिर पुनः पुण्य भूमि बनाएंगे। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है, हैरम्ब अब अवलंबन देकर विघ्न हर कहलाइए। ये है कविताओं के चार लाइनें मैथिली शरण गुप्त के। आइए इसके साथ ही मैं एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा और उसके पहले आपके लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हमें शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। भारत के बहुत ही पॉपुलर आज़ादी के दीवाने और राष्ट्रीय नेता थे श्री प्रकाश जी। वे पाकिस्तान में भारत के पहले उच्चायुक्त थे जिन्होंने 1947 से 1950 तक देश की सेवा की। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता था। वे सन 1949 से 50 तक आसाम, 1952 से 56 तक मद्रास और 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे। देश सेवा और सच्ची निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो आइए उनके जीवन परिचय की बात करें तो देश आज़ादी यही इनकी विशेष बात थी। राष्ट्रीय नेता श्री प्रकाश जी का जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1890 को वाराणसी के एक धनी परिवार और प्रतिभाशाली अग्रवाल परिवार में हुआ। उनके पिता भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास विश्वविख्यात दार्शनिक थे। श्री प्रकाश के छोटे भाई चंद्रभाल वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहते थे। श्री प्रकाश की शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हुई। यही से उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की, किंतु वकालत न करके वाराणसी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में वो बाद में काशी विश्वविद्यालय में काशी विश्व विद्यापीठ में अध्ययन का कार्य किया। पत्रकारिता की ओर भी वो आकर्षित हुए और फिर कहानी बनी आगे राजनीति का। पहले सीवाई चिंतामणि के साथ लीडर में और फिर मोतीलाल नेहरू के पात्र इंडिपेंडेंट में भी श्री प्रकाश ने कार्य किया। एनिमेशन के प्रभाव से वे थियोसोफिकल सोसाइटी में भी सम्मानित हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर संपूर्णानंद का संपर्क उन्हें राजनीति में ले आया। देश के लिए विशेष योगदान की बात करें तो होम रूल लीग से श्री प्रकाश का सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ और 1918 से लेकर 45 तक वे अखिल कमेटी के सदस्य रहे। इस तरह से अलग अलग उच्च पदों पर काम करते हुए, देश सेवा करते हुए श्री प्रकाश बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। वचन के निर्वाह का सदा ध्यान रखते थे और जो बोलते थे वो करते थे। श्री प्रकाश जी की और विशेषता थी कि वे चाहे जिस पद पर भी रहे हो, लोगों के पत्रों का स्वयं उत्तर देते थे। श्री प्रकाश जी की राष्ट्र सेवा के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण से विभूषित किया था। तो ये थी कहानी विशेष श्री प्रकाश जी के बारे में। देश की महान सेवा करने वाले और अपने सादगी भरे आचरण से सदा सबके सम्मान के पात्र रहे हैं। श्री प्रकाश जी 23 जून 1971 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संगीत का जादू शकील बदायूं इनके बारे में। आप सभी को ले चलता हूं एक और खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और सफर कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बहुत ही महान पॉपुलर शायर और गीतकार शकील बदायूं के बारे में। तहजीब के शहर लखनऊ ने फिल्म जगत को कई हस्तियां दी हैं, जिनमें से एक गीतकार शकील बदायूं भी हैं। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर उन्होंने अपनी आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी बिल्कुल छोड़ दी और 1946 में दिल्ली से सीधे मुंबई आ गए। शकील बदायूं को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के लिए मिला। ये गाना था, 14वीं का चांद हो या आपताब हो। इस गाने के लिए इनको सबसे पहला 1960 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति शकील बदायूं के बारे में आगे जानते हैं पूरी कहानी गीतों के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नाम शकील बदायूं। महान गीतकार शकील बदायूं का जन्म 3 अगस्त सन 1916 उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले में हुआ था। शकील बदायूं के वालिद साहब मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी तरह से पढ़े लिखे, और इसीलिए अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी के उस्ताद शकील नन्हे शकील को पढ़ाने उनके घर पे जाया करते थे। शकील बदायूं का झुकाव शायरी की तरफ शुरू से नहीं था और ना ही इनके घर में कोई शायरी किया करता था। हाँ, इनके एक दूर के रिश्तेदार जियाउल कादरी बदाउनी शायरी किया करते थे और उन्हीं से मुतासिर हो शकील साहब ने भी शायरी का शौक अपना लिया।

सन 1936 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। धीरे धीरे कॉलेज के मुशायरों में इनका नाम होता गया और ये एक के बाद एक अवार्ड्स जीतते गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दिल्ली चले गए, जहां पर बतौर सप्लाई ऑफिसर इन्होंने काम किया। एक तरफ इनकी रोजी रोटी सप्लाई ऑफिस की नौकरी चलाती तो दूसरी तरफ इनका शौक मुशायरों में पूरा होता। इन्होंने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली कि इनका रुख मुंबई की तरफ हुआ। ये बात भी गौर करने लायक है कि अलीगढ़ में ही इन्होंने उस्ताद बना लिया था हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी को, जिनसे इनका एक अच्छा रहा।

0: कमाल है ये।
1: सन 1944 के आते आते इन्होंने मुंबई का रुख किया और इनकी मुलाकात हुई एआर करदार से। प्रोड्यूसर एआर करदार इन्हें ले गए संगीतकार नौशाद अली के पास। उसी वक्त नौशाद साहब ने कहा कि शकील मियां कुछ लिख सकते हो तो सुना दो, और तब शकील बदायूनी ने लिखा हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये सुनते ही नौशाद साहब ने शकील बदायूनी को फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर एआर करदार थे। दर्द के गानों को अच्छी खासी मकबूलियत हासिल हुई और फिर शकील बदायूनी ने कभी पलट के नहीं देखा। नौशाद साहब के साथ इनका एक ऐसा रिश्ता बना कि जो बेजोड़ था, चाहे वो फिल्म दीदार रही या बैजू बावरा, मदर इंडिया या फिर मुगले आजम, इन सभी में नौशाद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शकील बदायूनी ने जबरदस्त शायरी की और नौशाद के संगीत पर वो एकदम सटीक बैठी।

ये बात भी गौर करने लायक है, जब शकील बदायूनी को टीबी की बीमारी हुई और इन्हें अस्पताल में रखा गया, तब नौशाद साहब को इस बात का इल्म था कि शकील की माली हालत ठीक नहीं है। तब 3 फिल्में नौशाद साहब ने साइन करवाई और तकरीबन 10 गुना मुआवजा शकील साहब को दिलवाया गया। धीरे धीरे इनकी दोस्ती संगीतकार रवि के साथ भी बढ़ी और गुरुदत्त साहब की फिल्म चौधरी का चांद से इसकी शुरुआत हुई। गाने सभी बेमिसाल थे।

शकील साहब ने हेमंत कुमार साहब के लिए भी लिखा फिल्म साहेब बीबी और गुलाम और 20 साल बाद के गीत कौन भूल सकता है। शकील बदायूनी को 3 साल लगातार बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। सन 1961 में चौधरी का चांद के लिए, 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं इसके लिए, और सन 1963 में 20 साल बाद का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल।

शकील साहब की जाती जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका निकाह सलमा से हुआ था, जो इनकी दूर की रिश्तेदार थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई।

0: सके।
1: एक तरफ शकील बदाउनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ इनकी सेहत खराब होती जा रही थी। गिरती सेहत के कारण मात्र 53 वर्ष की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया। तारीख 20 अप्रैल सन 1970। बॉम्बे हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांसें ली। बाद में इनके दोस्त अहमद जकारिया और रंगून वाला ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा गया याद शकील। शकील साहब के इंतकाल के बाद ये ट्रस्ट थोड़े बहुत पैसे इनके परिवार तक पहुंचाता रहा।

0: ये बात भी गौर करने लायक है कि शकील बदायूनी को बैडमिंटन खेलने का शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था और इस शौक में इनके साथ शरीक होते थे नौशाद साहब, रफी साहब, जॉनी वॉकर साहब, दिलीप कुमार और वजाहत मिर्जा जैसे कलाकार। शकील बदायूनी ये दुनिया छोड़कर जरूर चले गए, पर ये दुनिया उनकी शायरी को कभी ना भुला पाएगी। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शकील बदायूनी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
1: तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूली गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी हैं और सीए हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, आई नो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
3: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप सीए के बारे में करेंगे तो सीए एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए परस्यू करना है।
2: अच्छा।
3: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है सीए कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
2: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप नवीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं सीए अच्छा है, मतलब क्या बताया ऐसा टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
3: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है सीए के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
2: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
3: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने सीए के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया।
2: और बढ़ गया, राइट। ओके, तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सब कि सीए बनने के लिए क्या करना होता है?
3: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग

0: एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर।
1: अच्छा, तो क्योंकि आपने जैसा बताया ग्यारहवीं में पता चला, तो ग्यारहवीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक ग्यारहवीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
0: ओके, अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है। इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है, फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते हैं। आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप। 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं। आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए, सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन, मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपके 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो।
1: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
0: ये ऑनलाइन ही भरना है। मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है, 11वीं में आप 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब। एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो।
1: कौन सी वेबसाइट बताएं?
0: ICAI.org www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन, वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, ये पासिंग क्राइटेरिया है। एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है। आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%। तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
1: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
0: पूरा देना पड़ेगा।
1: ओके, और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
0: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं। 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे।
1: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
0: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए, बट ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए, बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं। और चीजें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके, तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे।
0: Yes.
1: और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं।
0: Right.
1: मिनिमम 40% और टोटल 50%।
0: हाँ, टोटल 50%।
1: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर सकते हैं।
0: विदिन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है।
1: अच्छा,
0: साल में 2 बार, मई और नवम्बर।
1: ओके, तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
0: ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसका कोई ये नहीं, बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपके 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए।
1: अच्छा, 6 महीने पहले
0: रजिस्ट्रेशन, 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए।
1: ओके, ठीक है।
0: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका, एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है। उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हो। फिर
1: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
0: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है, वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है।

0: बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.ica.org,
1: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी,
0: सारी जानकारी मिल जाएगी मोस्टली.
1: ठीक है, तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया तो उसके बाद क्या?
0: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का.
1: अच्छा,
0: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट, जो आपको जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी. आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा.
1: ओके.
0: हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल. साथ में आईसीए की चैनल्स भी चलते जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो.
1: Okay.
0: हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो.
1: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है.
0: हाँ,
1: जो
0: सेकेंड एग्जाम,
1: सेकेंड एग्जाम है, उसमें क्या होता है?
0: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं.
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: 8 होते हैं,
0: 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें एक है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है. एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. काफी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब रिजल्ट आपको पता होगा रिजल्ट काफी टफ आता है इंस्टीट्यूट का, तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने एग्रीगेशन पर्पज के लिए. मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के, लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करने, 4 सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के.
1: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं अगर बता सकते हैं आइडिया?
0: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, ऑडिट होता है इसमें. इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना फिर.
1: हाँ, हाँ,
0: इंटरमीडिएट के
1: टाइम में जाता है, सही बात है.
0: ये फाउंडेशन की भी एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है बिजनेस लॉज रिलेटेड. थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी. फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना. डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इज GST मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं. फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप 4 पेपर का टैक्सेशन तक. फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं. सेवेंथ पेपर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. एट पेपर होता है जो लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा.
1: ओके, तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
0: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप. लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था, तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की. क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो.
1: सुबह 7 से रात 9 बजे
0: तक, दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग. लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें. तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सुबह आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ. फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था. फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में,
1: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की।
0: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
1: जाते। दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
0: 10 घंटे पढ़ने, और आपको बस वो एग्जाम के पहले ही 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे।
1: ओके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है, और उसी पढ़ाई से जो हम आगे, मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए,
0: बहुत ज्यादा
1: जरूरी है। तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था, या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में, या कभी क्या लगता था?
0: कभी कभी तो ऐसे लगते थे कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था।
1: अच्छा, ओके।
0: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे, और हम क्लासेस कर रहे दिन भर, समय ही कहाँ है, अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं पा, नहीं जा रहे हो कॉलेज, और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ही हो गया, बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था।
1: ओके,
0: हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था, तो वो हो जाता था।
1: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट
0: है।
1: आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें क्या करते थे, किस समय करते थे, समय तो आपको मिलता नहीं था।
0: देखता ही रहना आप आगे,
1: एक बार आप समय भी बता दो ताकि पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते
0: कैसे, 5-10 मिनट करने हैं स्टार्ट करने के पहले।
1: हाँ, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा
0: कर सकते हैं। बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना,
1: बहुत जरूरी है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
0: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था।
1: ओके,
0: मैं फेल हो गया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था, तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया।
1: okay.
0: क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है, तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर, आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसका प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा, तभी जाके हो रहा था। लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा।
1: Okay,
0: मतलब नहीं हो पाया मेरा क्लियर, मैं फेल हो गया था। रिजल्ट आया कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो।
1: okay.
0: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई जीना होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है।
1: बिल्कुल, लेकिन अब डेफिनेटली आपने 9 महीने मेहनत की हो इतनी कड़ी, और बुरा तो लगता है, लेकिन आपने फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और क्या प्लान किया आगे के लिए उस समय?
0: हाँ, एक दो दिन तो मेरा वैसे ही ये हो गया, फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं। इट्स, और ऐसा भी बोला जाता है कभी अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए ही क्या बने।
1: okay.
0: तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है, और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोल, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और वापिस
1: आओ
0: एग्जाम देने के लिए आओ। तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, होता है। तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है। वो कैसा होता है ना कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है। सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का, तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है।
1: ओके,
0: हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने।
1: तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा?
0: नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है, अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है। एग्जाम आप कितने भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है।
1: ओके,
0: ये साइकिल चलता रहता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं चाहता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं चाहता। आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो।
1: ठीक है,
0: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर।
1: ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों?
0: ग्रुप वन क्लियर हो गया।
1: ग्रुप वन क्लियर हो गया, क्या बात है। ओके, ठीक है, ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली।
0: exactly.
1: कितना रिलीफ भी मिला होगा।
0: exactly. कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना अभी।
1: सही बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप टू की तैयारी?
0: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप वन क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैंने नहीं किया था।
1: Okay.
0: क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते, और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है। तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप सेकंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो। तो मैंने वो सोचा था बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया था।
1: ओहो, ओके।
0: हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है, तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
1: अच्छा, ठीक है।
0: हाँ, तो फिर मैंने आर्टिकल,
1: आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़े।
0: एग्जैक्टली हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपको, वो जो फाइनल कट है वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: ओके, तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू
0: कर दी।
1: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा को, जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था अनुभव शुरुआत में कैसा था?
0: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था।
1: ओके,
0: कि आपको बस यही आपकी जिंदगी ये लिमिट है, क्योंकि आप फंस गए हो ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो जरूरी है क्योंकि एग्जाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत जरूरी, तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफी जो काम रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीजें, तो वो उसकी वजह से। हाँ, तो हम और हम नए थे, छोटे,
1: उम्र भी उतनी नहीं थी।
0: हाँ, उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते, मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के,
1: 19-20 साल
0: की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो
1: जी।
0: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम।
1: ओके,
0: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया।
1: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज किया। क्या बात, बाप रे। तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
0: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करना है, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीजें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स हो के आँखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूज़िक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी, लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे
1: तो लिरिक्स ही याद आएंगे,
0: लिरिक्स याद आएंगे तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा। कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है, वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है, वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूम लो थोड़ा, कहीं और चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है।
1: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है तो वो अपने तक रखे, लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है।
0: Exactly.
1: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं सीए का एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपियर करना पड़ता है, तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें।
0: एग्जैक्टली,
1: बहुत जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीजें।
1: बिल्कुल,
0: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के, मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
1: राइट
0: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
1: ओके, तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप टू भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
0: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम,
1: अच्छा
0: हाँ, पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स एक ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है,
1: राइट बिल्कुल।
0: वो ग्रुप टू तो अलग ये था, उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना है।
1: इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
0: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है।
1: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
0: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो।
1: ओके,
0: कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन, मैंने मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है।
1: ओके ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला है, प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
0: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है, तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही है, आप बुक में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते हो, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है
1: right.
0: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए. तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है
1: okay.
0: जो आप ऑफिस सीखते हो करके सीखते हो एग्जैक्टली
1: okay. तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं

0: जसवीर सर की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
1: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा, ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रह के आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिस में, आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है। लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप देखो इतना काम दिया तो देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है थोड़ा। कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है। हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है, क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होते है कि आप डांट खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है। वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा।
0: ओके, एंड अगर डांट सुनते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है।
1: एग्जैक्टली जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है। इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पीसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके। तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो। हाँ, थोड़ा वो होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी। और थोड़ा
0: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को।
1: एग्जैक्टली,
0: और वो ये ध्यान रखें कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
1: बेहतर बनाएगा। कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
0: हमें आगे बढ़ाने के लिए।
1: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए।
0: ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए, तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
1: ओके, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है, तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए।
0: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो।
1: यस यस, हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिसेस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स,
0: कि आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना, आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना
1: रिस्पेक्ट देना,
0: ये बहुत ज्यादा जरूरी,
1: बहुत ज्यादा जरूरी होता है
0: जी। तो दोस्तों बिल्कुल, आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो, भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुनें, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
1: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकल के एक साल तो मजे में ही चले गए, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का, बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे।
0: ठीक है,
1: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर। वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
0: कहाँ से ऑर्डर करते हैं exactly?
1: हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं,
0: अच्छा,
1: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो।
0: ठीक है,
1: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पिन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से, और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो।
0: ओके,
1: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर लो। तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, फिर आर्टिकलशिप, मतलब सुबह मैं 1 क्लास कर लेता था, शाम को 1 क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो। तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको,
0: ठीक है।
1: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम है उसके 4 या 5-6 महीने 4-6 मंथ्स का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
0: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए,
1: पढ़ाई के लिए करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते आपको, लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ड्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
0: ओके, तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में? सर ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
1: ओके,
0: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
1: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकता क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4-6 ईयर वी फाइनली अचीव इट।
0: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर रहे हैं,
1: मेहनत कर, जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस, इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा 4-5 months आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद, नो फेसबुक, नो सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही, सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
0: बस वही,
1: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, या फिर फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको फुल फोकस माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, तो आप देखो ही मत, सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा,
0: पढ़ाई बस पढ़ाई
1: बस पढ़ाई।
0: ओके,
1: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसे होगा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको कि मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
0: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं मैं
1: नहीं
0: कह सकते, आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे।
1: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे,
0: बहुत प्राउड महसूस कर रहे।
1: एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा।
0: ओके, तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
1: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग, फिर मेरा रिजल्ट 10th February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ, 10th February 2022
0: क्या बात,
1: तो रिजल्ट आया था, और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था, तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सोची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था,
0: बिलीव नहीं हो रहा,
1: बिलीव नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे, तभी आपको ये मिला है। और जैसा आपने बताया, कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा।
1: एग्जैक्टली,
0: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो, सबका जर्नी अलग अलग है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है, और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने।
1: एग्जैक्टली, और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कॉन्ग्रेचुलेशंस का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में।
0: राइट,
1: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, दो चार लोग होते बस, दो चार फ्रेंड और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होते हैं आपके पास।
0: और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था, वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है हमेशा
1: हमेशा।
0: बहुत अच्छी बात है आपने कही, एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
1: ओके, सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो, या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो, या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी वो भी कर सकते हो, मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके लिए। लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो, जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहां आप जॉब कर सकते हो। मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए। जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते, या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
0: चूज कर सकते, मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
1: हैं।
0: लेकिन हाँ, बस ये है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस
1: ऑप्शन यस, मतलब आपको पढ़ते रहना है। एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
0: सीखना जरूरी है।
1: सीखेगा तो ही बढ़ेगा।
0: बिल्कुल। और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की। रेडियो मधुबन का नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं-12वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है। और आप 25 तक जो आपका पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है, मतलब आपके लाइफ का, आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन को, या फिर खुद के फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते चीजों को, जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में। इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या,
0: या हमारे जीवन में
1: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे, आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे, आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए, तो वो चीज़ों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना, और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है। आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप,
0: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते हैं,
1: exactly.
0: थोड़ी और मेहनत कर लेते
1: हैं, exactly. वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही क्या
0: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही, और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो.
1: लाइफ को जियो भी, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली. क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगे. वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो तो वो बहुत जरूरी
0: है. बहुत जरूरी, युवा काल में बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी है
0: दोस्तों. अपना रास्ता खुद चुने और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य. और इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं. और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में. एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए. जैसा आपने कहा, कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं.
1: एग्जैक्टली.
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट.
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
4: पक्का. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: वेल दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं। दिमाग का दही करने से पहले आपके लिए आज सवाल लेकर आई हूं, साथ ही साथ प्यारी सी कविता भी होगी और कॉमनवेल्थ गेम अभी अभी हाल ही में जो हुआ है, जी हाँ, कल ही उसका क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, ग्लासगो में हुई है और भारत को आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट कैंडिडेट दे दिया गया, बटन दे दिया गया है। तो भारत के पास एक अच्छा सा मौका है 4 वर्ष में बेहतर तैयारी करने का और फिर कॉमनवेल्थ गेम को रिप्रेजेंट करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खेल से जुड़ी प्यारी सी कविता भी आप तक पहुंचाएंगे, आपसे पूछेंगे सवाल जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: बूढ़ी थी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: लव यू जिंदगी। बिल्कुल, अपने जीवन से प्यार कीजिए और रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ते हैं और आओ आज खेलों के विषय पर कुछ बात करते हैं। वेल, कल तो फ्रेंडशिप डे गया है, साथ ही साथ सेकंड ये अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम का जो क्लोजिंग सेरेमनी भी है वो भी हुआ। बट कॉमनवेल्थ गेम के विषय पर बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि खेलों में यूज होने वाले मैस्कॉट के विषय पर बात करने वाली हूँ। खेलों में मैस्कॉट मनोरंजन का साधन ही नहीं, वे किसी भी बड़े खेल आयोजन जैसे कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मैस्कॉट मेजबान जो होस्ट देश होता है या शहर की संस्कृति, इतिहास व वन्य जीवों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ और 2026 का मैस्कॉट था फिनी। नाम एक यूनिकॉर्न से ही फिनी पढ़ा। फिनी स्कॉटलैंड का एक राष्ट्रीय पशु और ग्लासगो की स्थानीय संस्कृति पर आधारित है। वहीं पर इसे डिजाइन किया है, स्कूल के बच्चों की मदद से डिजाइन किया गया और पहचान
3: इसके सिर पर ट्रैफिक कोन लगा है और इसका रंग रूप ग्लासगो शहर की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है।
2: वेल, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक कई प्रकार के मैस्कट रहे हैं और एक 1978 में जब पहला कॉमनवेल्थ गेम आधिकारिक रूप से शुरू भी हुआ और उसमें पहली बार जो आधिकारिक रूप से मैस्कॉट रखा गया उसका नाम था, क्या नाम था?
3: कियानो।
2: कियानो यह एक ग्रिजली भालू है। ये कनाडा के अल्बर्टा शहर का प्रमुख वन्यजीव है जहां 1978 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। इसकी लोकप्रियता के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में शुभंकर या फिर जिसे मैस्कट कहा जाता है उसी की रखने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसे ही मैक एडिनब्रा स्कॉटिश टेरियर डॉगी था जो यहाँ की एक लोकप्रिय डॉग ब्रिड के आधार पर स्कॉटलैंड की संस्कृति और विरासत को दुनिया भर में दर्शाता है।
3: गोल्डी 1990 के ऑकलैंड न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर था जो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक कीवी पर आधारित था। यह गोल्ड मेडल जीतने की उत्सुकता को भी दर्शाता है
2: और ये एक बेसिकली प्रतीक है कीवी का। कीवी, जी हाँ, कीवी वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका। वहीं पर क्लीविक 1994 में मैस्कट के जरिए कनाडा की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की। क्लीविक को कनाडा के पश्चिम तट के एक ऑर्क या किलर व्हेल के रूप में बनाया गया और इसका उद्देश्य अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के बीच में मित्रता को बढ़ाना था। वहीं पर 2010 में
3: शेरा, इसने दिल्ली में हुए गेम्स में रॉयल बंगाल टाइगर शेरा को मस्कॉट के रूप में चुना गया था। टाइगर राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ ही भारत की ताकत व गौरव का प्रतीक भी है। उसका उद्देश्य था आओ खेलो और दोस्त बनो।
2: बिल्कुल, वहीं पर वीरा 1998 के क्वालालंपुर राष्ट्रीय मंडल खेलों का मैस्कॉट था वीरा जो एक ओरांगुटान मलेशिया के वर्षा वनों का प्रसिद्ध और अनोखा जीव है। इसे चुनकर दुनिया को मलेशिया की प्राकृतिक धरोहर से परिचित किया गया।
3: क्लाइड 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक मस्कॉट था क्लाइड। यह एनिमल नहीं बल्कि थीसल नामक फूल का कार्टून कैरेक्टर था।
2: तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हमारे बीच जरूर रही लेकिन इसके साथ साथ कीट 2022 के एक बिल्ली जिसके साथ एक मड फैरेट नाम का मैस्कॉट भी था, किट और मड राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास की अनोखी जोड़ियां थी। ऐसी कई मैस्कट बहुत फेमस रहे। तो आगे बढ़ते हैं और एक गीत आप तक पहुंचाते हैं, पर उससे पहले आज का सवाल आप तक पहुंचाते हैं। सवाल है, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, और उसके लिए ट्रेन के टिकट या ट्रेन बुकिंग करने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ट्रेन टिकट बुक करते समय इनमें से किसे भरना जरूरी नहीं होता है, कौन सी चीज को भरना जरूरी नहीं होता है? ए नाम, बी उम्र, सी ब्लड ग्रुप। ट्रेन के टिकट बुक करते समय इनमें से किस चीज को या कौन सी जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है? ए नेम, बी एज, सी ब्लड ग्रुप। सही जवाब झटपट देना। नंबर है हमारा
3: 9414151415।
2: सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सत्यमेव। आगे बढ़ते हैं और ये कविता आप तक पहुंचाते हैं। खेल जरूरी है जीवन में, तन मन का करता ये विकास।
1: जीवन का हिस्सा बना खेल, जीवन में लाता है प्रकाश।
0: यह तनाव को करता दूर, रोगों का करता है ये नाश।
1: इससे आती है तंदुरुस्ती और होता है बुद्धि का विकास।
0: खेल खेलने से तन थकता, मन ना थकता बहुत बार।
1: इससे शरीर में आती ताकत, रोगों का ये है हथियार।
0: बिल्कुल, इसीलिए गेम्स के ऊपर यही बात करना चाहते हैं कि खेल जरूरी है और खेल को खेल की तरह ही खेलना जरूरी है। लोग कई बार बहुत ये हो जाते हैं, यानी सीरियस हो जाते हैं, हालांकि कहते भी हैं कि अपनी जो क्रियाएं हैं या हमारे जो कर्म हैं उस पर सीरियस जरूर है। खास ये देखने को मिलता है कि लाइफ इज अ गेम वी ऑलवेज प्ले, स्प्रेडिंग जॉय अलोंग द वे, नाइदर इन लॉस नॉर इन अ वे व्हेन वी फाइंड द स्ट्रेंथ विद इन। जी हाँ दोस्तों, खेल के विषय पर यही बात। वहीं पर ट्रेन बुकिंग के विषय पर, ट्रेन बुक करते समय इनमें से किस जानकारी को भरना जरूरी नहीं है? ए
1: नाम, ऑप्शन बी है उम्र, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप।
0: भाई सही जवाब दे दीजिए, नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए,
0: आशा अगला गीत।

चलिए दोस्तों, एक और कविता आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भारतीय रेल की ये जनरल बोगी है। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं अपने भोगी या न भोगी, एक बार हम

0: हमें करनी पड़ी रेल यात्रा, स्टेशन पर देख सवारियों की मात्रा।
1: हमारे पसीने छूटने लगे और हम वहीं से घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कूली ने आवाज दी, कहा अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? कहा पहुंचाऊं तो दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लगेंगे।
0: हमने कहा 50 रुपए? वो बोला हाँ भैया, 20 आपके बाकी सामान के। हमने कहा सामान तो है नहीं। तो वो बोला
1: आप क्या किसी सामान से कम कंधे पर उठाना होगा और धक्का देके अंदर पहुंचाना होगा। हमने कहा ठीक है, तो फिर पहले तो हमें उठाओ।
0: उसने जय बजरंग बली का नारा लगाया, पहली बार उठाया तो बैठ ही गया, दूसरी बार उठाया तो लेट ही गया। हाथ जोड़कर हमसे बोला, जजमान क्या खाकर हम आपको उठाएंगे?
1: आपको उठाते उठाते तो हम दुनिया से ही उठ जाएंगे।
0: तभी ट्रेन ने सीटी दी। अंदर का दृश्य तो और भी घमासान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपना आप में हिंदुस्तान था।
1: कोई बैठा कोई खड़ा था, और जिसे जगह ना मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। हमने एक गंजे से कहा, भाई साहब थोड़े हमारे लिए भी जगह बनाइए।
0: गंजे ने कहा, आइए हमारे सर पर बैठ जाइए, फिसल गए तो हमसे ना कहना।
1: तभी गंजे के सिर पे गिरी पानी की गरम गरम बूंदे।
0: गंजा चिल्लाया, कौन है कौन है जो पानी गिराकर मौन है? दिखता नहीं नीचे तुम्हारे पिता बैठे हैं।
1: तभी ऊपर की बर्थ से आवाज आई, पिता नहीं भाई साहब, 6 महीने का बच्चा लेटा है।
0: तो कुछ ना कुछ उस बच्चे ने करी करी दिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टिकट बुक करते समय इनमें से किस चीज को भरने की या कौन सी जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है? ए
1: नाम, ऑप्शन बी है उम्र, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप।
0: सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। कल था फ्रेंडशिप डे और आप दोस्तों से दोस्ती निभाते हुए आगे बढ़ते हैं और ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।
2: टंटनाटन,
3: ये तूने क्या किया रे बुद्धू? तुझसे कितनी बार मैंने कहा है कि अभी पैसों की थोड़ी खींचातानी चल रही है भाई, अब से मेरे लिए सिर्फ काली चाय ही बनाना है।
2: इससे अच्छा मालिक सिर्फ गर्म पानी करूं चाय और।
0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे उड़ान।
4: गुड इवनिंग दीदी,
0: आप सुन रहे उड़ान। तो आगे बढ़ते, हमारे बीच कौन है सर? नमस्कार।
4: ओम चांद, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
0: अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है।
4: प्रोग्राम में भी वैसे आ रहा है, समझ ही नहीं रहा है लिंक।
0: अच्छा ठीक है, ये बात जानकारी दे देते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ये वाली बात बता दिया जाता है आगे। वेल दोस्तों, हमारे सुभाष जी थे, उनको कार्यक्रम सुनाई ही नहीं दे रहा है, ये कम्प्लेन है, तो आगे देख लेते हैं।
3: अब देखो तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कल से तुम यही करना।
2: चलो कम से कम इतने दिनों में मालिक ने बुद्धू की तारीफ तो की है, आपसे कोई भुकाल नहीं चलेगा। हाँ
3: क्या कर रहा है?
2: आपके बुरे वक्त पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ मालिक।
3: अरे उल्लू, साथ खड़े होना इसे नहीं कहते हैं। ध्यान से सुन, अब से घर का सामान थोड़ा माप माप कर खर्च करना। अब तो तुझे पता है ना कि अभी कैसा चल रहा है।
2: रुकिए मालिक, पहले मुझे 200 रुपया दीजिए।
3: 200 रुपए लेकर तू क्या करेगा?
2: अब लो सुन लो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा कि अब से घर की चीजें माप माप कर खर्च करना बुद्धू, तो मापने के लिए एक तराजू खरीदनी पड़ेगी ना, और उसके साथ वो जो रहता है ना वो।
3: अरे ये माप का मतलब वो माप नहीं है।
2: समझ गया, फिर 50 रुपए दीजिए, इंची टेप खरीद कर मापूंगा।
3: मेरे कहने का मतलब था कि अब से थोड़ा हिसाबी होना होगा तुझे। थोड़ा सा चावल पकाना, 2 के बदले 1 सब्जी ही बनाना, और महीने में 1 दिन मछली या फिर 1 दिन मटन। समझ में आया?
2: सब समझ गया मालिक।
3: और वैसे भी आजकल हाथों में पैसे टिकते ही नहीं है, और आज महीने की 5 तारीख है, पूरा महीना मैं कैसे चलाऊंगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। एक उपाय है, सुन सुन सुन सुन बुद्धू, आज किराने वाले की दुकान से महीने भर का सामान खरीद लाना, और थोड़ा चावल दाल तेल नमक और मसाले अलग से हटा कर रख लेना, ठीक है?
2: इससे क्या होगा मालिक?
3: उसे महीने के अंत में हमें बिना खाए मरना नहीं पड़ेगा रे बंदर। ये ले, ये ले महीने का राशन लाने के लिए पैसे, जैसा जैसा कहा है ठीक वैसा वैसा ही करना।
2: मालिक की हालत देखकर मेरी आंखें भर आई। मालिक ने कहा है अब मुझे थोड़ा हिसाब ही बनना पड़ेगा। हाँ मालिक के लिए मैं गाय भैंस बकरा सब बनने को तैयार हूँ, तो हिसाब ही होना कौन सी बड़ी बात है। हाँ? अब मालिक ने जैसा कहा है वैसा ही कर लेता हूँ मैं, पर इतना सब कुछ हटा कर रखूंगा कहाँ।

0: उफ, अरे ये सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या, ये तकिया ऐसे पत्थर के जितना भारी कैसे हो गया है? ए बुद्धू, ओट ओट बदमाश का ये क्या ओट? तूने तकिए के अंदर चावल भर के रखे हैं, लेकिन क्यों बता?
1: आपने तो कहा था कि कुछ चावल, दाल, तेल, नमक, मसाले अलग से हटाकर रख देना।
0: पाप हो गया था मुझसे, ये सब मेरी ही किस्मत है, मेरी ही किस्मत। जाता हूँ, थोड़ा पानी पीकर इस चावल के तकिए पर मैं सोने की कोशिश करता हूँ।

0: अरे बुद्धू, आज मैं तुझे जिंदा चबा कर खा जाऊंगा।
1: क्यों मालिक?
0: आवाज नहीं, चुपचाप जो है बाहर निकालो।
2: ये क्या कर रहा है?
1: छाती में कफ जमा था ना, उसे ही निकाल रहा हूँ। आपने ही तो कहा था निकालने को, तो भाई
0: ये कौन है? ए, हमारे साथ बिल्कुल भी चालाकी नहीं, समझा क्या? चल दे, दे अलमारी की चाबी दे।
2: सरदार, गहने के बक्से के अंदर गहना नहीं, मसूर की दाल है।
0: ये क्या, गहने के बक्से में दाल है?
3: वो आजकल दाल की इतनी ज्यादा कीमत हो गई है ना, बस वो इसीलिए। और क्या बात हो सकती है?
0: दत, इस घर में दोनों के दोनों पागल हैं। यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो चलो चलो चलो।
1: ये रहा गहना। बोले मेरे साथ आपको भी पागल कह गए मालिक। ये बेइज्जती मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मालिक। हाँ, अभी उन लोगों को बुलाकर गहने दे आता हूँ, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरे मालिक पागल नहीं है। हाँ
3: रुक जा पुत्तू, रुक जा, तुझे अब अपनी बुद्धि का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी आखिरी संपत्ति भी बच गई है। आजा आजा आजा मेरे पास आजा, तेरे गालों पे एक पप्पी ले लूं।
1: कभी मुझे पकड़कर मारने लगते हैं, कभी मेरी पप्पी लेने लगते हैं। मालिक के दिमाग में कब क्या चलता है ये समझना बहुत मुश्किल है।
3: चमत्कार हो गया अरे बुद्धू, चमत्कार हो गया।
1: मैंने भी आपके लिए गर्म पानी कर दिया है मालिक।
0: अरे रख अपना गर्म पानी अपने पास, अब हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं।
1: मालिक ये आप क्या कह रहे हैं?
3: अरे मुझे लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिला है, 1,00,000 रुपए जीते हैं मैंने। शाम को घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा।
0: जा जा जा जा जा, जल्दी से बाजार जा, ताजा ताजा मछलियाँ और नरम नरम मटन लेके आ,
3: और साथ ही 2 पैकेट गुब्बारे और गेंदे का फूल माला भी ले आना। हाँ, घर को सजाना जो होगा ना।
0: अब मैं जाता हूँ, ठीक है,
3: मोहल्ले में सभी को न्योता दे के आता हूँ। हाँ।
1: कितना सामान है, पर मालिक ने तो मुझे हिसाबी बनने को कहा था ना। एक काम करता हूँ, कुछ चीजें अलग से हटा कर रखता हूँ। अब ये सब कहाँ हटा कर रखूँ मैं? समझ गया।

0: अच्छा तो आज से तुम लखपति हो गए हो रघुराम।
1: ये तो सब उस ऊपर वाले की कृपा है।
2: वाह, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
3: सच में रघुराम, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो समझे। लॉटरी निकलने के बाद कौन किसे बुलाकर खाना खिलाता है।
4: खाना बन गया है मालिक, अब आप लोग सब खाने आ जाइए।
5: ये गुब्बारा मेरा है,
2: छोड़ मैंने कहा ना, ये मेरा गुब्बारा, छोड़ दे।
5: छोड़।
2: अरे तूने क्या कर दिया।
5: बाबरे, बाबरे, ये क्या हो गया।
3: ये सब क्या हो रहा है। ए बुद्धू, ए बुद्धू, बुद्धू,
4: अच्छी, सब बर्बाद कर डाला। कितनी मुश्किल से गुब्बारों पे मैंने मिर्ची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भरा था, सब बर्बाद कर डाला।
5: खाने पर बुलाकर कोई ऐसे मजाक करता है क्या भला, ये क्या किया है।
3: जी। आखिर में घर बुलाकर ये बेइज्जती की।
2: चलो घर चलो, अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी मैं। बड़े आए
1: बदमाश कही के बुद्धू, आज तेरी वजह से सभी मेरे घर पर आकर मेरी बेइज्जती करके गए हैं, और आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
4: मैंने क्या किया है मालिक। अच्छू, आपने तो मुझे हिसाबी बनने को कहा था ना। अच्छू,
1: अभी निकालता हूँ तेरा हिसाब किताब। बदमाश कहेंगे,
4: छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मालिक, मालिक मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे हिसाबी बनने को कहा था, छोड़ दीजिए मालिक।

0: चलिए दोस्तों, पुनः एक बार सवाल दोहराते हैं। ट्रेन टिकट बुक करते समय इनमें से किस चीज को या कौन सी बातें या इंफॉर्मेशन भरना जरूरी नहीं होता? ए ए
1: नाम, ऑप्शन बी है उम्र, या ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप।
0: सही जवाब जरूर दीजिए। 9414151415 पर दीजिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक श्रोता गण है सर, कौन बोल रहे हैं?
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
0: जी, नमस्कार, कैसे हैं फिरोज जी?
1: बस एकदम अच्छे हैं, और प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है।
0: ऑप्शन सी है, अच्छा। ब्लड ग्रुप नहीं देना पड़ता है, बाकी नाम और उम्र देना पड़ता है। ओके, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और बाल आरती श्री को भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार। चलिए दोस्तों, समय इशारा कर रहा है आप सभी से विदाई लेने का। कल मिलने का वादा है ठीक शाम
2: 6 बजे।
0: लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब, ट्रेन बुक करते समय इनमें से किस इंफॉर्मेशन को भरना जरूरी नहीं होता है? ए नेम,
2: नहीं।
0: उम्र,
2: नहीं।
0: अरे ब्लड ग्रुप,
2: हाँ वो सही जवाब है, क्योंकि ट्रेन टिकट बुक करते समय हमें ब्लड ग्रुप भरना जरूरी नहीं होता है।
0: अच्छा ठीक है, तो कभी तुमने फॉर्म भरा है कभी ट्रेन की टिकट का?
2: नहीं,
0: अब तक नहीं भरा है। चलिए, रूहानी ने अब तक तो भरा नहीं है, आगे जैसे जैसे थोड़ी बहुत बड़ी होती रहेगी, उम्मीद है जल्द ही ट्रेन के टिकट्स खुद बनाना शुरू कर देगी। पापा मम्मी को इस चीज से डिस्टर्ब नहीं करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और कल मिलने का वादा करते हैं ठीक शाम 6 बजे। आज के लिए गुड बाय, सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है। तो हमें बहुत खुशी मिलता है सबसे मिलते, तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते। तो आज हमें खुशी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआ में हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में। और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, गिरबर आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते हैं। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज़ से होगा, भले हमारा वीडियो नहीं लेकिन आवाज़ लगेगा। तुम्हारा हूँ नाम
1: कुमारी, फुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम फुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजाबेन।
0: जीजाबेन बहुत अच्छा।
1: इंद्राबेन।
0: इंद्राबेन कहाँ से तुम? कौन सा गाँव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के? सब बगेरी तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं ना, सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता टाइम पर।
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता है, यहाँ पर सास बैठे होंगे है ना, सास है क्या ये? हाँ, इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गनगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुने।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुँचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और हमारा साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है, व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में ये जो गीत गाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है, ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना, दोनों का लड़का वाले ना लड़की में लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप? लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जो ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराए घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से पेयर घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर, जाएगी तुम?
1: नहीं
0: जाएगी क्योंकि इतना दुख को दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराए घर, इसलिए लड़की को छोकरी को पराया सोचते हैं, लेकिन पराया नहीं है। फूली हमारा होशियार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए बोलते भाई हम ससुराल घर नहीं जाएंगे, माँ बाप को दुख क्यों दूँ, ऐसे। हाँ चलिए कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारा जो आवाज में जो मीठा से एक के बाद एक गीत मिलेगा जब

आदिवासी अंचल में जाते हैं, चाहे बगरी हो, चाहे धमसरा हो, चाहे फूलाबाई खेड़ा हो, चाहे भूला हो, जहाँ भी जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेगी जीजा जी से जीजा तो जीजा भी हंस रही है, लेकिन वो भी अपना आवाज़ सुनाएगी उनका दोस्त का साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

மண்டபு எங்கே

तो श्रोता मित्र ग्रामवासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है। इस तरह मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमें सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मान कर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस आस्था से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिलता है, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं। इस मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत, मेला जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं, कुछ लेते हैं छोटा सी ब्रेक, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो जाते हैं आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने इस तस्पर से, उसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोल भाई ये उनका देन है भावना है, बोला हमारा माता है बहन का भी आवाज़ आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: सुमित चौहान।
0: सुमित चौहान, वाह, कहाँ से आप आए?
1: यूपी।
0: यूपी से आए, वाह, इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
1: काफी सालों से हो गए, 1.5 साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा लगता है। जी जी, हाँ, बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते हैं।
1: शिवी शक्ति है, हर जगह शिवी शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से जितना मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव से जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही हैं, शिव सिर्फ एक ही हैं।
0: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो बगरी स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, जैसे अपना इंट्रोडक्शन में बताया। और जो बगरी में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता है 4-5 एकड़ का जमीन है।
1: हाँ हाँ,
0: कम से कम यहाँ से पानी, यहाँ पूरा मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
1: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसीलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता पवित्रता और हरा भरा मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब ही लोग सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई देखो हर जगह जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
0: यहाँ पर हम देखे पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल हर सीजन में फल फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
1: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब उलाब के पौधे वौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
0: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
1: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम से, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया वो चूहते थे,
0: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
1: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले का मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए आराम से, मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
0: जी जी,
1: सब जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
0: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
1: ये मेरी मम्मी माता श्री।
0: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
1: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप हैं और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थी उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
0: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा, श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो,
1: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती हैं। देखो माँ का प्यार माँ ही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माँ ही होती है,
0: इसलिए माँ का अवदान को कभी भूलने पे। एक तो घर में जैसे लोग की माँ है, ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
1: पिता तुम्हें पिता ये है वो सब, मतलब
0: परमात्मा का कृपा रहता है, तो बहुत अच्छा लगा। और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्यों जब इस तरह आकाशवाणी में आते हैं टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन चलो हमारा हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज को भी दुनिया सुन रहे, क्यों हम क्या कहना चाहते, चाहे गीत का माध्यम से हो। जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं, माता पिता का, क्योंकि उनका देन है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए। हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा। और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं, वो देते रहते हैं। तो प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
1: पेड़ पौधा देखो सबको लगाना चाहिए। पेड़ पौधे से क्या है, जो अपने हमारा ये वृक्ष देख रहे होंगे आप, आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी, कितना सारे
0: 6 फुट 7 फुट है।
1: हाँ, और देखो कितने फल लगे हैं। अब यहाँ जो इतने पौधे लगे, इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं। आजकल तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से। अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर। अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा, कूलर की हवा, पंखे की हवा, बस यही है। अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा, कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसा चलता है बस चलने दो,
0: सबका सोच ऐसे होने से चलने दो भाई। हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
1: साथ वैसा सबका विकास,
0: ऐसे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा जो आने वाला पीढ़ी को उनके लिए भी तो रखना चाहिए ना। हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपने लालच का चलते, ग्रीडी होकर हम ले लेंगे, तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा,
1: ये जब
2: बारिश भी नहीं होगा टाइम
1: कुछ पर? कुछ टाइम पर ना बारिश होगी ना कुछ होगा। अभी देखा होंगे कितनी अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई, ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया। प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती। अगर जब बारिश नहीं होगी, जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी। पर यही है कि अब मैं यही कहूँगा कि ठीक है जो भी है।
0: ठीक है, इतना नाराज से आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया। और फल फ्रूट
1: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं। और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान और ये वो हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा करो, मतलब गौ माता की भी, अपने मात पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करो। आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया, वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है अब।
0: इसका कारण वजह क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, ये तो खराब है ना।
1: ये तो खराब है, बस वो क्या समझाए, यही तो है ना कि मतलब संगत जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले, हमें अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा।
0: जैसे संग ऐसे रंग,
1: जैसे संग वैसे रंग।
0: जैसे पानी
1: जैसा देश वैसा भेष,
0: जैसे पानी वैसे पानी,
1: वैसे पानी
0: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या निकलेगा।
1: आजकल तो इतने शराब, इतने स्टूडेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सब, ये शराब
0: सब तो हो रहा है। इसलिए कला क्लास का अच्छा दुनिया लाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे, इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा। तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा, और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें। इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे। तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने का, माताएं बोलते हैं वंशम, और हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे, माताओं को भी लेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
3: नमस्ते, मैं हूं आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाएं। याद रखें 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमें खुशी आज बड़ों का साथ छोटे भी कम नहीं है, हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो, क्या नाम है?
1: फुली कुमारी।
0: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
1: 11वीं में।
0: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास, और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं, और बाद में तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
1: पापा, मम्मी, बहने, भाई।
0: कितना भाई कितना बहन?
1: 7 बहने 1 भाई।
0: बाप रे, 7, हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है, और शक्ति सेना का, पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे, तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
1: हाँ।
0: अरे वाह, पैसा कहाँ से आता है इतना बहन को पैसा? पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते हैं?
1: काम करते, पाइपलाइन का।
0: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ?
1: सोनिया।
0: सोनिया कौन सा क्लास? वो
1: 7वीं
0: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
1: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
0: हाँ, चंडेला, सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का? बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गांव बताओ?
1: तेलपुर, अम्बावीरी, गिरवर, गिरवर बाट और चनार।
0: अम्बावीरी,
1: अम्बावीरी बोला था।
0: अरे वाह। और तेलपुर फली
1: बोल दिया।
0: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम जानते हैं?
1: नहीं मैडम आए।
0: अच्छा, और एक छोटी सी कन्या है। हेलो, क्या नाम है?
2: सिरमी।
0: हाँ, कौन सा क्लास?
2: 7वीं।
0: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
2: कपड़े और खाने का।
0: वाह, बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ऐसे एक को देखकर एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, भाग लेते और अपना बात को रखते। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। और बात शुरू करें उससे पहले आज हमारे साथ हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे। चलिए सबसे पहले करते हैं हमारे कॉलर से बात, फिर देखते हैं। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार माऊजी।
0: नमस्कार, मैं सोच के बैठा था, मुझे पता ही था कि ये बुरीलाल जी का कॉल है। बुरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, सावन के मजे ले रहे हो।
0: क्या बात है,
1: और आज सावन का पहला सोमवार भी है।
0: जी, आज सावन का पहला सोमवार है,
1: इसलिए एक बार सावन का महीना पवन करे शोर।
0: अच्छा,
1: शोर नहीं भैया, शोर शोर भी शोर। ये गाना ही हो जाएगा तो क्या बात करते हैं, सावन का महीना ऐसा गुजरेगा
0: बिल्कुल
1: जैसे हंसी खुशी में मोर नाचने हैं, वैसे अपन भी नाचने लग जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसे कोशिश करेंगे आज आपको ये गाना हम आपको सुना दें।
1: हमारे को रहना है, सूरज भाई है, सूरज भाई तीन है, आगे एक नहीं तीन भाई, तीन है, धनेरा वाले भी है, एक दूसरे है, और अपने मजन भाई है, पूरा राम जी है, और क्या नाम उनका, एक क्या नाम उनका, वो टोटले टोटले बोलते हैं ना,
0: सुभाष जी, मदनलाल जी, भूरा राम जी,
1: महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के
0: सुभाष भाई।
1: हाँ, सुभाष भाई को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी साथियों को मेरा दोनों हाथ जोड़ करके प्यार भरा, और पहले सोमवार का प्रणाम। वो भी कई बैठे बैठे सुनते होंगे और सावन के मजे लेते होंगे सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके साथ में अपन भी मजे लेंगे, वो भी अभी मीठी मीठी बातें लाएंगे और अपन सुनते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार,
0: सभी की तरफ से आपको भी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे बुरीलाल जी, और मुझे लग ही रहा था कि शो का शुरुआत हो जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे और कॉल आज आना चाहिए हमारे बुरीलाल जी का। और देखिए वहीं सबसे पहले उनका कॉल है, और उसी हंसी के साथ, उसी मस्ती के साथ, उसी एकदम क्या कहते हैं एनर्जेटिक वे में हमारे बुरीलाल जी की आज उन्हें गाना सुनना है, सावन का महीना पवन करे शोर। बिल्कुल, बूंद पानी की हो या यादों का सफ़र, जब शाम ढलती है तो दिल बस एक ही चीज़ मांगता है। क्या मांगता है? थोड़ी सी चाय, बहुत सारे प्यारे गाने, और आप सभी का साथ। जब हम रेडियो पे आते हैं तो आप सभी का साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केवल, और आप सुन रहे आपका पसंदीदा फेवरेट शो खुशी के नगमे, दिल की बातें, आपके चैनल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए। जी हाँ, और आज है अगस्त 3 की हसीन शाम, और शाम की जैसे ही आपको पता है, शाम होते ही आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके शो में। और कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, जैसे ही आज हमारे बुरीलाल जी ने पहले ही बता दिया है कि आज है अगस्त का महीना, श्रावण का महीना है ना, और आप सभी जानते हैं मौसम में ठंडी हवाएं हैं, माहौल में एक अलग ही सुकून है। आज की शाम हम नाम करेंगे उन यादों के, उन बातों के जो हमारे दिल के सबसे करीब होती है, और जब बात दिल की हो, खुशी के नगमे की बात हो तो यही होती है। तो हमारे किशोर जी, रफ़ी साहब जी, लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, अरुणाधा पौडवाल, ये जो हमारे पुराने गायक हैं, इन गानों के बिना शाम पूरी कैसे हो सकती है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं ऐसे ही भजन के साथ, क्योंकि आज का जो हमारा पहला गाना है, जैसे ही हमारे बुरीलाल जी ने कहा कि श्रावण का महीना है, श्रावण में हम भोले की आरती करते हैं, भोले जी को हम मंदिरों में जाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, तो आज सबसे पहले हमारे पास वही एक भजन है, क्योंकि कावड़ भी बुला रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये सबसे पहला नगमा, भोले ने बुलाया है, सुनते हैं और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

चल कांवरिए। जी हाँ दोस्तों, ये भजन अभी हमने जो सुना विनोद राठौड़ जी की आवाज़ में, यहाँ बहुत से गायक हैं, अनुराधा पौडवाल जी, विनोद राठौड़ जी, उदित नारायण जी और हरिहरन जी। जी हाँ दोस्तों, ये एल्बम है शिव गुणगान, और ये खास करके हम सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि के समय पे, हम या स्पेसिफिकली सावन, जब अगस्त का महीना आता है, जब सावन चलते हैं तो कांवरिया जब चलते हैं तो उस वक्त ये लोग जो पैदल चलते हैं शिव की मंदिरों तक जब जाते हैं, तब ये खास करके स्पेसिफिकली ये गाना बजाया जाता है, गाया जाता है, सुना जाता है खास करके। जी हाँ, तो अब है वक्त आगे बढ़ने का, और हमारी एक फरमाइश आई थी हमारे भूरीलाल जी की तरफ से कि सावन का महीना पवन करे शोर। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, उनकी खास फरमाइश, और फिर बढ़ते हैं शो में आगे। तब तक बढ़ते सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो गाना सुना मिलन मूवी से, गाना 1967 में आई, गीतकार इसके आनंद बख्शी थे और इसे सुरों से सजाया था हमारे लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने, और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगस्त का महीना आते ही हम सब जानते हैं साथ में आता है श्रावण का महीना, स्वतंत्रता दिवस, और साथ में होती है आबू में दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन। जी हाँ दोस्तों, खुशी के नगमे दिल की बातों में आज हम बात करने वाले एक ऐसे ग्रैंड इवेंट की जिसका इंतज़ार हम सभी को पूरे साल रहता है। एक ऐसी दौड़ जो सिर्फ सेहत की नहीं बल्कि एकता, प्रेम, विश्व बंधुत्व और दादी प्रकाशमणि जी के उन महान विचारों की दौड़ है, दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन। इस खूबसूरत आयोजन के पीछे कितनी मेहनत होती है, क्या विशेष तैयारियां चल रही है, और इस बार रनर्स के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, ये सब बातें जानने के लिए आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो में मौजूद है हाफ मैराथन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर भानुभाई जी। भानुभाई, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में और खुशी के नगमे दिल की बातों में आपका बेहद स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: भानुभाई। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत बधाई हो। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन अब सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक इमोशन बन चुका है। तो क्या उद्देश्य क्या है इस दादी प्रकाशमणि मैराथन की, अगर हम बात करें तो क्यों उद्देश्य दादी के नाम से क्या
1: जी? इसका उद्देश्य ही इतना महान है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी दादी प्रकाशमणि एक महान हस्ती थी जिन्होंने परमात्मा का संदेश पूरे विश्व में फैलाया, तो वैसे ही इस ये मैराथन का उद्देश्य भी एक महान लक्ष्य को लेकर किया जा रहा है। और इसका जैसे कि जो मोटो है मैराथन का कि विश्व बंधुत्व, पूरे विश्व में उसका संदेश हम सबको देना है। और हम जानते हैं कि आज कोई भी संदेश विश्व को देना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है यूथ। तो आज हमारे यूथ जो है, जैसे कहते हैं कि भारत के पास एक विशेष दो शक्तियां हैं, एक है स्पिरिचुअल पावर, दूसरी है यूथ पावर। तो जब हम इन दोनों पावर्स को यूज़ करते हैं तो पूरे विश्व को हम जो भारत का संदेश है, नैतिकता का संदेश है, वो दे सकते हैं। क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कितनी नेगेटिविटी है
0: जी,
1: कितना टेंशन है, कितने समझो परिवार के अंदर कहो, समाज के अंदर कहो या विश्व के अंदर कहो
0: जी,
1: कितनी खींचतानी चल रही है। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो शांति की
0: जी,
1: प्रेम की, अपनेपन की
0: जी।
1: तो और वो चीज़ें तभी मिल सकती है जब आपस में अपनापन हो
0: जी। बिल्कुल,
1: वो अपनापन तभी आएगा जब हम एक दूसरे को भाई समझेंगे। जैसे हम परिवार में देखते हैं कि कोई मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरा पिताजी है, माँ है, तो ऑटोमेटिकली अपनापन आता है, प्यार आता है। तो ऐसे ही पूरे विश्व में जो भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन है ये एक परमात्मा की संतान
0: जी।
1: तो जब ये अपनापन उनमें आएगा कि ये भले मुस्लिम है, भले हिंदू है या क्रिश्चियन है, भले शरीर के धर्म अलग है, लेकिन है सभी आत्माएं, तो वो जो बंधुत्व की भावना है, अपनेपन की भावना है, वो तभी आएगी।
0: बिल्कुल,
1: तो वो लक्ष्य लेकर ही हम ये मैराथन 2014 से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
0: जी।
1: और हमारे आदरणीय दादी जी का जो स्मृति दिवस है
0: जी,
1: वो भी हम पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व के दिवस के रूप में मनाते हैं
0: जी।
1: तो जैसे मोदी जी का भी जो सपना है कि, और हम सबका भी है
0: जी,
1: कि 2047 तक भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र में हमको वहाँ तक ले जाना है।
0: हाँ।
1: और उसकी वहाँ तक ले जाना है तो हर क्षेत्र में हम बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के पीछे युवाओं का हाथ होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज हम देख रहे हैं कि हेल्थ, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, वो स्पोर्ट्स एक तो आजकल कमर्शियल भी होते जा रहे हैं, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए भी होते जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि शारीरिक हेल्थ के हिसाब से भी स्पोर्ट्स को बहुत मेन माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन केवल फिजिकल हेल्थ है तो हमारा यूथ सशक्त है ऐसा हम कह नहीं सकते
0: जी।
1: कहा जाता है तन के साथ साथ मन स्वस्थ होगा।
0: बिल्कुल,
1: जब तन और मन स्वस्थ है तो धन अपने आप आएगा। तो तन मन धन ये तीनों होंगे तो जन भी अच्छा होगा। तो उसके लिए तन के लिए तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे जो यूथ है चाहे जिम जाते चाहे अलग अनेक प्रकार की डाइट लेते हैं स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन जो फोकस की कमी है वो है मन को कैसे हम स्वस्थ करें शक्तिशाली करें।
0: जी,
1: तो वही लक्ष्य लेकर ये मैराथन का आयोजन हमारा हो रहा है कि ये मैराथन भी हम देखते हैं विश्व में बहुत होती है
0: जी,
1: लेकिन एक ऐसी ये माउंट आबू इंटरनेशनल मैराथन है जिसका फोकस मन के ऊपर रहता है। तो ये मैराथन हम दौड़ते हैं लेकिन कभी हमने सोचा है कि जीवन की भी हमारी ये मैराथन है वो कितनी लंबी है।
0: बिल्कुल,
1: और उसमें कितने हमारे संबंध के प्रॉब्लम आते हैं, कारोबार के प्रॉब्लम आते हैं, शरीर के प्रॉब्लम आते हैं, कितने प्रॉब्लम आते हैं। तो जो उस प्रॉब्लम को सहज रीति से पार करता है वही जीवन के मैराथन में विन होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो यहाँ जो मैराथन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मन को भी हमको इतना स्वस्थ करना है, सशक्त करना है युवाओं का कि हमारी युवा तन से और मन से स्वस्थ होंगे तो ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और मन को स्वस्थ करने की आज दुनिया में कोई दवा नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। तो ब्रह्मा कुमारीज में यही लक्ष्य लेकर ये मैराथन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच भानु भाई, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी। हम तन से तो स्वस्थ रह सकते हैं लेकिन मन से स्वस्थ रहने का एक बहुत ही ज़रूरी उपाय होता है। तो भानु भाई एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो भी हमारी मैराथन की जो टीम है जो हम कार्य कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या उत्साह है, कैसा उत्साह चल रहा है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा इस साल?
1: जी, कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या उत्साह है टीम
0: जी,
1: में
0: जी,
1: लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टीम के पहले ये मैराथन का क्रेज पूरे भारत में और विश्व में इतना है कि जनवरी से ही हमको फोन आना शुरू होते हैं।
0: क्या बात है,
1: कि रनर्स का भी बहुत उत्साह है
0: जी,
1: कि भाई जी ये मैराथन कब होने वाली है, क्या डेट है, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे। तो रनर्स में भी उत्साह है और जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर जो भी हमारे वॉलेंटियर्स है तो मोस्टली हमारे संस्था के हैं और इस संस्था में जो भी वॉलेंटियर्स है या जो ऑर्गेनाइजर है उनका लक्ष्य ये रहता है कि हम विशेष करके भारत की यूथ की और पूरी विश्व की किसी न किसी नए प्रकार से सेवा करते रहे। तो जो दादी जी ने हम सबको एक पालना दी है और एक उत्साह भरा है और एक सेवा भाव हर एक के मन में भरा है तो हर एक को ये इंतजार रहता है कि अगस्त में कब आएगा कि अगस्त और हम कब इस सेवा में सहभागी हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से इसमें उमंग उत्साह है और मैं आपको कहना चाहूँगा रेडियो मधुबन के माध्यम से कि इस मैराथन की तैयारी मार्च से ही शुरू हो जाती है कि जैसे ये मैराथन आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मैराथन है तो एम से रजिस्ट्रेशन कराना, वेबसाइट बनाना, फिर इसके मेडल टी शर्ट्स और जो टाइमिंग मैट होती है तो जो पूर्व तैयारी है
0: जी,
1: तो वो मार्च से ही शुरू हो जाती है और जून आते आते फिर जो भी हमारे मैराथन को हम सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए एक छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। तो आप आश्चर्य कहेंगे कि मैराथन को सफल करने के लिए 46 डिपार्टमेंट बने हुए
0: 46 डिपार्टमेंट
1: बने हैं, जैसे प्रशासन से परमिशन लेने से लेकर पुलिस प्रशासन की सहयोग लेने के लेकर, तो ऐसे फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आप देखेंगे कि वेबसाइट बनाना, रनर्स का रजिस्ट्रेशन कराना, तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग की तैयारी होती है, रूट में रिफ्रेशमेंट पॉइंट होता है, मेडिकल की बातें होती है, फिनिशिंग की बातें होती है, तो ऐसे बहुत सारी तैयारी होती है, मेडल बनाना होता है
0: जी।
1: तो 46 डिपार्टमेंट है। और जून आते आते फिर ये सारा मीटिंग्स का जो सिलसिला है
0: जी
1: ये मैराथन का शुरू होता है। और बहुत उमंग से मतलब हर एक समझता है कि ये मेरे मैराथन है,
0: हाँ बिल्कुल।
1: इस भाव से सभी तैयारी करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो बेसिक तैयारी होती है वो लगभग हमारी पूरी हो गई है। अब जो बात है कि फील्ड में हम उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए, तो उसकी मैराथन की जो मीटिंग से वो भी 15 दिन से शुरू हो गई है। एक एक वॉलेंटियर्स को बुला के उसकी समस्या सुनना, उनको क्या फैसिलिटी चाहिए, वो वाट ट्रैक पर कैसे कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, जो रनर्स को कोई भी दिक्कत ना हो, तो एक छोटी छोटी बातों का मीटिंग्स हमारी चल रही है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कई रनर्स जो आते हैं
0: जी
1: कि उनका ये कहना होता है कि हम इतने सारे मैराथन में जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारीज की जो मैराथन है, दादी प्रकाशमणि मैराथन है, ऐसी तैयारी कहीं नहीं होती है।
0: बात है
1: जी, आप जैसे देखेंगे कि अभी आप देखेंगे 9 तारीख को मैराथन है, लेकिन
0: जी
1: 6 तारीख से ही रनर आना शुरू हो रहे हैं, 7 तारीख को आएंगे तो उनके रेलवे स्टेशन से या
0: लाना
1: कॉम्प्लेक्स तक लाना, फिर उनको 2-3 दिन के लिए अकोमोडेशन, भोजन की व्यवस्था, और जो भी उनकी किट होती है, टी शर्ट्स वगैरह, बीप नंबर वगैरह, तो वो सारा होता है। और ख़ास जैसे मैंने कहा कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए हमने खास 7 और 8 तारीख को
0: जी
1: जो 3M रिट्रीट रखी है, माइंड मेडिटेशन मैराथन, तो वो 2 दिन का रिट्रीट हमने रनर्स के लिए रखा है, जिस

0: जिससे उनका मन भी सशक्त हो जाता है। तो ये भी हमने उसमें ऐड किया है। और फिर 9 तारीख को जैसे संडे है तो 5 बजे से 5:30 बजे तक सारे रनर्स ट्रैक पर आते हैं और फिर वार्म अप करते हैं। फिर 5:30 से 6 बजे तक जो भी हमारे अतिथि आते हैं एक फ्लैग ऑफ के लिए, तो वो प्रोग्राम चलता है और 6 बजे फिर एग्जैक्ट मैराथन शुरू हो जाती है।
1: ओके।
0: लेकिन इसमें जो आपने एक बात कही कि इस बार इस मैराथन में नया क्या है
1: जी,
0: तो नए की बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैराथन है, ये अपने आप में एक नवीनता है
1: जी।
0: और दूसरा कि इस मैराथन में जितने भी रनर्स दौड़ते हैं, तो पहले हमने 3.5 घंटा इनका टाइमिंग रखा था, तो जो 3.5 घंटे में पहुंचते हैं उनको हम एम सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिलता था और मेडल्स भी देते थे
1: जी।
0: लेकिन इस बार हमने जो ट्रैक को देखते हुए और इंटरनेशनल नियमों को देखते हुए 4 घंटा इस बार टाइम दिया है, तो 1/2 घंटा जो टाइम है रनर्स को एक्स्ट्रा दिया है, तो एक नवीनता है। दूसरी बात कि इस बार जैसे भले वो 4 घंटे के बाद भी कोई पहुंचता है
1: जी,
0: समझो 5 घंटे में पहुंचता है, तो भी उनको हम मेडल देंगे।
1: वाह, क्या बात।
0: क्योंकि ये मैराथन में आना, उमंग दिखाना और इस ट्रैक को पूरा करना,
1: हाँ,
0: यही अपने आप में एक रनर्स के लिए अचीवमेंट है।
1: बिकॉज ये ट्रैक भी वैसी है कि आपको माउंट चढ़ना है, इट्स नॉट अ फ्लैट ट्रैक, ये आपको चढ़ना है,
0: ट्रेल मैराथन है। तो इसीलिए भले 5 घंटे में भी आएंगे तो सबको हम जो मेडल है क्योंकि उसके हकदार है, क्योंकि वो इतने दूर दूर से आते हैं और कुछ अचीव करके जाए, तो उनके मन में अगर नहीं देते मेडल तो थोड़ा 2-4 मैराथन में हमने देखा कि थोड़ा वो निराश हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार हमने वो मेडल देने का भी हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने फाइनल किया है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो कैटेगरीज है वो भी हमने इस बार इस मैराथन में बढ़ाई है। पहले एक ओपन कैटेगरी होती थी और एक वेटरन कैटेगरी होती थी, लेकिन इसमें काफ़ी गैप हो जाता था, तो जिससे एक 18 साल का रनर्स दौड़ता है और एक 40 साल का 45 साल का रनर दौड़ता है, तो उनके एज डिफरेंस बहुत हो रहा था, तो काफ़ी रनर्स का सजेशन था। तो हमने इस बार हमारी जो भी मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर ब्रदर्स हैं उनसे बात करके इस बार और एक कैटेगरी बढ़ाई है। तो जैसे ओपन कैटेगरी जो होती है 18 से 40 साल तक रहेगी मेल फीमेल में, दूसरा मास्टर कैटेगरी रखी है 41 से 60 तक 60 साल तक, और फिर जो वेटरन कैटेगरी है 61 से अबव रखी
1: है। तो दिस टाइम आपने ये किया कि हमने 45 टू 60 अबव जो भी हमारा वेटरन था 41 से जो हमारा वेटरन था उसके बदले हमने उसको मास्टर कर दिया,
0: मास्टर कर,
1: एंड 60 को हमने वेटरन कर दिया,
0: वेटरन कर 60 अबव को वेटरन कर दिया। तो ऐसी काफी इसमें नवीनताएं की है, और जैसे कि हर किलोमीटर पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, उनको नींबू पानी है, जो भी रिफ्रेशमेंट के लिए रनर्स के लिए जरूरी होता है वो हमने हर किलोमीटर पे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि मेडिकल फैसिलिटी इस मैराथन में बहुत अच्छी रहती, लगभग 9 एम्बुलेंस इस ट्रैक पर रहते हैं, और फिनिश पॉइंट पे भी पूरा जो रनर्स दौड़ के आते तो वहाँ 150 बेड का हम एक टेम्परवरी पूरा वहाँ एक वार्ड बना देते हैं, तो जिसको जैसे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, कोई इंजरी होती है, कोई सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब प्रकार का वहाँ व्यवस्था हम सभी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नवीनताएं इस बार रखी हुई है।
1: थैंक यू सो मच भानु भाई, आपने इतनी सारी हमें नवीनताएं दिखाई। तो देखिए दोस्तों, इस साल बहुत कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है। एक तो हमारी कैटेगरी हमारे लिए बढ़ गई है, दूसरा हमारे लिए भाई जी ने 3M की जो रिट्रीट में हमें माइंड मेडिसिन और एक बार आपने बताया माइंड मेडिसिन और
0: माइंड मेडिटेशन और
1: मैराथन, यस, तो उसकी भी हमारे पास तैयारियां है। तो ये बहुत सारी तैयारियां, नई विशेषताएं हमें देखने की मिलेगी। और एक और सवाल भानु भाई, लास्ट आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जिसकी ये अभी एक हफ्ता बचा है, सिर्फ एक वीक, अगले 9 तारीख को आप जैसे बता रहे हैं मैराथन है, तो क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ अभी भी तैयारियों में बाकी है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें है अभी बैलेंस बाकी है?
0: नहीं, जैसे तैयारियों की बात जो हो गई है,
1: जी
0: तो मेरे ख्याल से कि कहेंगे कि 75% लगभग तैयारी हो गई है,
1: जी
0: और 25% जो बाकी है वो ऑन द फील्ड में हमको करनी है। वो हमारी शुरू होगी 6 तारीख से, कि जैसे कि वेलकम बैनर लगाने हैं, वेलकम गेट लगाने हैं, फिर हम जो रूट पे मार्किंग करते किलोमीटर्स के
1: जी
0: या बोर्ड लगाते हैं वो हमको लगाने हैं, और जो रनर्स आते हैं, मतलब जैसे कि 6 तारीख से रनर्स आएंगे, तो उनको जो उनकी किट होती है जिसमें उनको टी शर्ट्स है, बीप नंबर है,
1: जी
0: और जो मैराथन का शेड्यूल है, और जो नियम बनाए हैं हमने
1: जी
0: कि भाई इस मैराथन में आपको ये रूल्स रेगुलेशन के साथ ही दौड़ना है, तो वो हम उनको देते हैं।
1: ओके
0: बाकी मैक्सिमम तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। हमारी काफ़ी पहले, जैसे मैंने बताया, मीटिंग्स भी इसमें हो गई है।
1: जी
0: अब वो क्या होता है कि 8 और 9 तारीख, ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि वो 2 दिन में हमको फील्ड पे पूरा वर्कआउट भी हो गया है, लेकिन उसको अप्लाई करना होता है।
1: ओके
0: जैसे फिनिश पॉइंट पे गेट लगाना है, वहाँ पे मेडल पहनाना है, ब्रेकफास्ट हम सभी को देते हैं, प्राइज सेरेमनी होती है, तो इस प्रकार से तैयारी हो रही है। और मैं आपके FM रेडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे प्रशासन का भी हमको बहुत अच्छा सहयोग है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य फॉरेस्ट के तरफ से है, PWT की तरफ से है, तो बहुत अच्छी तरह से सहयोग हमको मिल रहा है। क्योंकि और ये ट्रैक ऐसा है तो इसमें हर जगह पुलिस की व्यवस्था चाहिए होती है।
1: जी
0: स्टार्टिंग पॉइंट होता है, छिपाबेरी होता है, सात घूम होता है, सिटी में जहाँ कट्स है वहाँ पुलिस व्यवस्था हमको लगती है, फिनिश पॉइंट पे लगती है,
1: जी
0: तो उनका रोल होता है। और ये मैराथन की विशेषता ये है कि इसमें सब लोग इन्वॉल्व होकर ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे दौड़ने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं,
1: जी
0: ऐसे केवल ब्रह्मा कुमारी केवल ऑर्गेनाइजर नहीं है, मेन ऑर्गेनाइजर तो ब्रह्मा कुमारीज है, लेकिन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइजिंग में। जैसे कि CRPF के एम्बुलेंस वो हमको देते हुए, और उनके जवान रूट पे सेफ्टी के हिसाब से वो अपना सेवाएं देते हैं। आर्मी से हमको सहयोग मिलता है, एयरफोर्स से मिलता है,
1: जी
0: और जो अबू रोड और माउंट आबू की जो अलग अलग संगठन है, यूनियन है,
1: जी
0: उनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे नगर पालिका, फॉरेस्ट हो गया, टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, BJP युवा मोर्चा है, भारत विकास परिषद है, तो हर प्रकार के जो भी संगठन है, कम से कम 18 से 20 संगठन
1: बाहर से
0: बाहर से जो आबू और आबू रोड से, तो उनका भी पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है।
1: बहुत बहुत
0: तो सब मिलके ये एक आबू जैसे कहते हैं ना, तपस्वी की भूमि है, तो ये भारत जैसे महान देश है और आबू एक आध्यात्मिक स्थल है, तो इस आबू की धारा से पूरे विश्व को एक संदेश जा रहा है।
1: बहुत बढ़िया
0: आध्यात्मिकता का संदेश भी है, लेकिन एकता का और शांति का संदेश भी है। तो इसके लिए सब उमंग उत्साह से बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा 75% तो पूरी हो गई है, लेकिन 25% जो तैयारियां है वो भी 1-2-3 दिन में
1: ऑन फील्ड वाली
0: पूरी हो जाएगी। और बहुत अच्छी तरह से अभी तक हम देखते हैं कि सबके सहयोग से और परमात्मा के ब्लेसिंग से अभी तक ये मैराथन बहुत निर्विघ्न और बहुत सक्सेसफुल हुई है। और इस बार भी जब हम अच्छे भाव से कोई
1: जी
0: कार्य करते हैं, सेवा भाव से वो कार्य करते हैं, समाज के भले के लिए कार्य करते हैं,
1: जी
0: तो सबसे पहले भगवान की मदद भी हम सबको मिलती
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल मिलती है
0: तो उसके मदद से भी ये कार्य बहुत सहज हो जाएगा।
1: थैंक यू सो मच भानु भाई। जैसे आपने कहा कि भगवान की मदद मिलती, सही है बिल्कुल, आपने कहा कि जब हम कोई ऐसा सही कार्य करते हैं तो भगवान की हमें मदद ज़रूर से मिलती है। थैंक यू सो मच भानु भाई, आपने अपना कीमती समय इस वक्त, आप जानते हैं हम आप बहुत बिजी है इस वक्त, मीटिंग्स आपकी ऑर्गेनाइजिंग सब चल रहा है, और आपने अपना समय, कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भानु भाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को भी कि जो इस FM रेडियो के माध्यम से पूरे गांव और पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट, तो क्या मैं समझता हूँ मेहसाणा तक भी इसकी रेंज जाती है
1: जी
0: और आगे पाली तक भी इसकी रेंज जाती है।
1: जी
0: तो इसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता और एक आध्यात्मिकता का संदेश और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो मधुबन के माध्यम से पूरे समाज को, पब्लिक को जा रही है।
1: जी
0: तो रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा।
1: जी थैंक यू सो मच भानु भाई। और दूसरा, हम जानते हैं हमारे लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी के मन में बहुत से सवाल है, बहुत कुछ आप पूछना चाहते हैं हमारे कमिटी की टीम से, तो हम कोशिश करेंगे हम आपको डेली किसी न एक भाई या कोई भी एक हमारे साथ जुड़े कमिटी की तरफ से और हमारे प्रश्नों का हमें जवाब दे। तो आप हमें बिल्कुल से कॉल कीजिए और आपके प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415 पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैराथन के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछना चाहते तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बनते हैं अगले नगमे की और अगला नगमा हम सुनते हैं। तब तक बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, और अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना चित्रलेखा मूवी से। गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी, आवाज़ से अपने इसे सजाया था उषा मंगेशकर जी, संगीतकार रोशन जी। जी हाँ, गाए तरसाए जिया राय, बहुत ही मतलब आप सुनिए इसका जो राग है, बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया था। और रोशन जी की इसमें म्यूज़िक डायरेक्शन थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रोशन जी ने ऐसे भी म्यूज़िक दिए हैं, क्योंकि रोशन जी की अगर आप देखेंगे, जी हाँ, ऋतिक रोशन जी के दादाजी राकेश रोशन, राजेश रोशन जी और उनके पिताजी ने जब फिल्म में जब म्यूज़िक डायरेक्शन का काम किया है, तो किस तरह की म्यूज़िक लेवल को इन्होंने बढ़ाया है तो वो हम सभी जानते हैं। और इस तरह का म्यूज़िक भी उन्होंने दिया, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने मैराथन के बारे में सुना, तो बिल्कुल से आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 2026 की सुबह 5 बजे मैराथन का होने वाला है आगाज, जहाँ पे सभी धावक, सभी रनर्स पूरे भारतवर्ष से, विदेश से भी कई लोग आते हैं, केनिया से भी आते हैं, यूके से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं। कई बार इस वजह से इसको इंटरनेशनल हाफ मैराथन का नाम दिया गया। और आप सभी जानते हैं, तो हम सभी भले हम फिजिकली ना दौड़ रहे हो, लेकिन अपने मन से, अपने विचारों से हम भी दौड़ेंगे उस दिन, विश्व बंधुत्व की दौड़ को दौड़ेंगे और सभी का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। और उस उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सभी लाइव रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5 बजे से दादी प्रकाश मनी इंटरनेशनल हाफ मैराथन में। और पूरी पल पल की जानकारी आपको रेडियो के द्वारा आपको दी जाएगी, तो हम भी उस वक्त महसूस करेंगे कि हम भी उसी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, और भी कोई सवाल हो आपको मैराथन के रिगार्डिंग, आप चाहते हैं अगले साल आपको दौड़ना है, या फिर कोई भी ऐसी जानकारी आप चाहते हैं मैराथन को लेकर के, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल भी हमारे साथ कोई ना कोई जुड़ेगा और हम उनसे भी करेंगे बातें, और आपके जो सवाल है वो हम पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमसे बिल्कुल फ़ोन करके बता सकते हैं। नंबर आपको पता है 9414151415, यानी कि 9414151415 पे। जी हाँ, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। और आप सभी को पता है सावन है, अगस्त का महीना है, तो कैसे ना हम गाने ऐसे ना बजाए जहाँ पे हम झूम झूम के सावन को बुलाए। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ दोस्तों, बढ़ने से पहले ही कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, तो उनसे पहले हम करते हैं बातें। हेलो,
2: नमस्कार भाई।
1: नमस्कार भुरीलाल जी, कैसे हैं आप? किसका? शकील बदायूनी जी का जन्मदिन है। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज आपने। जी बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं हम आपका ये गाना बजा देते जल्दी से, इस गाने के बाद तुरंत ही हम ये गाना बजाते हैं। और शकील बदायूनी जी को हम उनके जन्मदिन की बधाई दे भी दे देते हैं। थैंक यू सो मच भुरीलाल जी, आपने हमें ये याद दिलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और फिर करते हैं जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम अपने वेलबींग के बारे में बात करते हैं या अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर देखते हैं, तो प्रायः सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अनेक आयामों के बारे में हम समझते आए हैं। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के नीचे की जो परतें हैं वो भी हमें समझ में आ रही हैं। प्रायः जब हम अपनी तबीयत खराब है ये बात कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। जब तक वो शारीरिक गड़बड़ी दिखती नहीं है तब तक हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या ऐसा संभव है कि हम स्वास्थ्य को बिगड़ने से पहले पहचान ले? क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है? अगर ये समझ में आ जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि हम स्वस्थ बने रहें? ऐसे ही विषयों पर सही जानकारी हासिल करना आवश्यक है जिससे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकें। रेडियो मधुबन की यही कोशिश है कि हम ऐसी सही जानकारियां आप तक लेकर आए जिससे हम सभी स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य कहते ही हम आज अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही स्वास्थ्य समझने लगते हैं। जब तक शरीर में कोई गड़बड़ी, किसी प्रकार की व्याधि दिखाई नहीं देती या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, असहजता महसूस नहीं होती, तब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान देते ही नहीं है। आज हम स्वास्थ्य के अनेक परतों के बारे में जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि पर भी हमारा चिंतन चलता है। तो ऐसे में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को सही तरीके से आप कैसे देखते हैं? क्या स्वास्थ्य के विषय में बेहतर समझ होने से क्या हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं?
1: अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, ये जरूर संभव है। जैसे इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि हमको बादल दिख रहे हैं और तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी, तो हम घर से एक छाता पहन के निकले। तो इसी तरीके से यदि हमको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमें क्या चीज नुकसान कर सकती है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप ही क्या एग्जाम्पल लें भैया, जो अगर हम आबू रोड स्टेशन पे रहते हैं तो हमको गर्मी लगती है और अगर हम सीधे कोई गाड़ी या टैक्सी लेके ऊपर माउंट पे चले जाते हैं तो हमें ठंडक लगने लगती है। तो हम अब नीचे में टी शर्ट में या एक पतला कुर्ता में घूम रहे हैं तो ऊपर जाके हमें एक पतली जैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और अगर आपको सही ज्ञान है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि आप क्या चीज जो आपको फायदा कर सकती है, क्या चीज आपको नुकसान दे सकती है, तो आप अपने आप को ज्यादा बचा लेंगे।

0: मित्र रिश्तेदार की जरूरत है जो हमें अगर समझा देता है कि ये चीज तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन दोनों को नुकसान कर रही है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। अधिकतर जगहों में ये देखा गया, कोई गुरु अगर है वो बता देता है कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए चीज अच्छी नहीं है, तुम छोड़ दो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। एकदम यही बात है, अगर आपको मालूम है कि आपको ये चीज नुकसान कर सकती है, आप अपने आप को बचा लें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें, तो आप मेंटली फिजिकली और सोशली तीनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।
1: ये बात समझ में आती है कि स्वस्थ रहना संभव है अगर हम थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, हमारा भोजन खान पान इत्यादि चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना सहज है, ये बात समझ में आती है। आज स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम कई बीमारियों को आम समझ लेते हैं, या हम समझते हैं कि ये तो कॉमन चीज है, ये होना तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है डायबिटीज। पिछले दिनों हमने डायबिटीज के विषय पर बहुत गहराई से चिंतन किया और उसको बेहतर तरीके से समझा, और एक दूसरी बीमारी जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आम रीति बोलचाल में सुनने को मिलता है वो है बीपी। लोग कहते हैं कि आप कोई डायबिटीज बीपी की गोली तो नहीं लेते, ये जैसे दोनों साथ साथ की बात की जाती है। और बीपी के बारे में जब हम समझने की प्रयास कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, क्या चीजें हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर को समझकर उसका सही निदान, किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसका सही निदान क्या है, इन चीजों को भी हम समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जब हम हृदय रोग से संबंधित चीजें हो या बीपी से संबंधित चीजें हो तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, वो है डैश डाइट। हमारे कई श्रोता मित्रों के लिए नई चीज होगी, मगर जो लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं वो इन चीजों को ज्यादा सुनते होंगे, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि ये डैश डाइट है क्या, इसके बारे में आता
0: डैश डाइट इसके बारे में बात करें तो ये है डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका सीधा साधा ये मतलब है कि हम भोजन में ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर पाए। और अब सबसे अच्छी बात इस डैश डाइट की है कि हमारा मतलब ये अमेरिका में विकसित देशों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है, और उन्होंने अब हमारे भारत में भी इसके बारे में लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। डैश डाइट कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम साधारण भाषा में ये समझिए कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हाइपरटेंशन को, अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भोजन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले भी बात की कि बहुत ज्यादा चाय पीने से, बहुत ज्यादा कॉफी पीने से, सिगरेट पीने से और शराब या अल्कोहल पीने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और सबसे पहली बात, जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो कहा जाता है कि ये चाय कॉफी सिगरेट और शराब या जिसमें भी निकोटीन होता है इसको प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। अगर हम बहुत सिंपल परिभाषा में बोले कि जिस चीज को रिसर्च करके अमेरिका और यूरोप के कंट्री के रिसर्चर्स ने, डाइटिशियन ने, डॉक्टर्स ने ढूंढा, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने बातों में बहुत पहले बता रखा था कि आप सब्जी फल और अनाज खाइए, पूरा अनाज खाइए, आप घी की मात्रा, मांस मछली, इसको मांस मछली एकदम नहीं खाइए, घी को बहुत कम खाइए, तेल को बहुत कम खाइए, आप नमक को एकदम कम कर लीजिए। तो डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन में हम सबसे पहले जो चीज को कंट्रोल करने या एकदम कम करने की बात करते हैं वो है नमक। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहता है कि आप नमक की जगह थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए जिससे खटास आ जाए, आप कुछ ऐसे मसालों का हल्का प्रयोग कर लीजिए

0: जिससे आपके स्वाद में उतनी परेशानी ना हो। पर अगर आपको जरूरत है तो आप करीब 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक नमक रोज खा सकते हैं। सोडियम के लिए ये बोला जाता है कि 2.5 ग्राम तक आप नमक दिन में खाइए। आप अपने जो आपका पूरा भोजन है उसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि आपको खूब सारा फल खाना है, खूब सारा सलाद खाना है और आपको होल व्हीट ग्रेन्स जो है उसको खाना है। अगर यंग जनरेशन के लिए मैं बात करूं, जिन आजकल तो बहुत छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो चीज को उनको छोड़ देना चाहिए, वो है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। ये श्रोता मित्रों को जान के अचंभा होगा कि इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कैफीन और शुगर और इवन सॉल्ट का भी कंपोनेंट होता है। तो कृपा करके अगर हम फ्रोजन फूड को, कोल्ड ड्रिंक को, आइसक्रीम को, इसको अगर हम छोड़ दें तो हम अपने आप को हाइपरटेंशन से बचा पाएंगे। हमें खाना क्या है? हमें खाना है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलेड, घर में बना हुआ भोजन। उसमें तेल और नमक की मात्रा हमें कम रखनी है। हमको जहां तक हो सके थोड़ा सा नमक को नींबू से चेंज करना है कि जिससे हमें खट्टापन थोड़ा सा मिल जाए जो हमारा काम कर पाए। बस ये एकदम सरल भाषा में डैश डाइट का मतलब है।
1: अब ये बात समझ में आती है कि हम नमक की मात्रा को लेकर सजग हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम तो ये बात समझना आवश्यक है कि नमक को हम इतना हानिकारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई, अक्सर ये चीज कहा जाता है अनेक जगहों पर, ये कहावतें हैं कि नमक से स्वादिष्ट कुछ नहीं, अगर एक चिटकी नमक डालो तो स्वाद बिल्कुल ही बदल जाता है, स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, इत्यादि लोग कहते हैं। और खास तौर पर जब हम देखते हैं कि हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, या कहीं पार्टीज वगैरह पे जाते हैं, या कहां पर भी जब हम डाइनिंग टेबल पे नमक की शीशी रखी हुई देखते हैं और लोग सोचते हैं ये तो अच्छी चीज है, स्वाद वर्धक चीज है, इसको हम ऊपर से छिड़क लें। कई बार लोग सलाद के ऊपर नमक छिड़क लेते हैं, या किसी चीज में जैसे दही खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल लेते हैं। तो ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस सी नजर आती है कि नमक तो अच्छी ही चीज है, इसमें खराबी क्या है?
0: भैया, नमक में सोडियम है। नमक को अगर हम केमिकली ब्रेक करें तो वो सोडियम क्लोराइड है और हमारे हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हमारे हृदय को सिकुड़ने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास ज्यादा सोडियम होता है तो हमारा हृदय तेज गति से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए नमक का एक कॉम्पोनेंट है सोडियम, उसको रोकने की बात की जाती है। इसमें जो नमक है उसको NaCl कहते हैं और NaCl का जो सोडियम है ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, नमक जो है वो शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, तो इसकी वजह से हम जब नमक ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और हमारा खून की का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए वो जो प्रेशर है ब्लड का तो बढ़ जाता है। नमक के लिए इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि एलोपैथी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो थोड़ा सा काम करना कम कर देती हैं कि अगर हमें नमक जो है वो अगर हम सॉल्ट को खा रहे हैं, तो इसीलिए नमक को रोकने की बात की जाती है कि अगर नमक ज्यादा रहेगा तो वो हमारे शरीर में, बॉडी में पानी को जो है वो रिटेंशन करेगा, उसका हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी रक्त की धमनियां हैं उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए नमक को हम भोजन में कम करने की बात करते हैं।
1: यानी ये जो हम टेबल सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फलों के ऊपर जैसे अभी वाटरमेलन खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, या फिर ककड़ी या खीरा खाते हैं, तो कई चीजों के ऊपर नमक छिड़कने की आदत जो है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमें नहीं करना चाहिए?
0: भैया, प्रकृति ने अपने स्वाद दिया है। हम लोग एक पुरानी बीरबल और अकबर की कहानी भी कहते हैं कि भोजन में सबसे स्वादिष्ट क्या है तो बोलता है नमक। आपने भी अभी एग्जाम्पल दिया कि एक चुटकी नमक डालते ही खाने का स्वाद जो है वो बदल जाता है। सबसे बेसिक बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति ने अपना स्वाद दिया है, तो भैया वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी या तरबूज ये बिना नमक डाले भी खाया जा सकता है। और आप खुद देखते हैं कि नमक और नींबू दोनों डाला जाता है, तो जिनको भी अगर ये ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें नमक को रोक लें और आप प्लीज नींबू का प्रयोग करके खीरा और ककड़ी को खा लें। तरबूजे में प्लीज उसको अवॉइड करें, तरबूजा खुद इतना मीठा है, उसमें इतना अच्छा पानी है, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो प्लीज नमक डाल के उसका स्वाद न डिस्टर्ब करें।
1: एक और चीज जो प्रायः हम देखते हैं कि हम चीजों को स्वादिष्ट बनाने के प्रयासों में ये भूल जाते हैं कि इसका शरीर पर असर क्या होता है, और ऊपर से नमक इन चीजों में ऐसा इस्तेमाल करना, और खासकर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आज आपने डैश डाइट के बारे में बताया, तो ये आखिरी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये डैश डाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं, या सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे फॉलो करने की जरूरत है?
0: अगर आप हफ्ते में दो दिन डैश डाइट में कोई भी चमत्कारिक चीज नहीं है, वो एक बेसिक बात ये बोलती है कि फल खाइए, सब्जी खाइए, और आप का मन करे और आप होल व्हीट खाइए, मतलब चोकर समेत आटे की रोटी खाइए, ब्राउन राइस खाइए, छिलका लगा हुआ चावल खाइए, आप मिलेट्स खाइए, तो एक सिंपल की बात है कि जो हेल्दी फूड है वो डैश डाइट का पार्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया गया है कि नमक कम खाने की बात की गई है। अगर आप डैश डाइट हफ्ते में दो या तीन दिन करते हैं, मतलब आप खूब फल, खूब सब्जी, खूब सलाद, खूब सारा होल व्हीट ग्रेन खाते हैं, नमक कम खाते हैं, तेल और घी कम खाते हैं, तो आपका वजन भी कम होगा। आप ये हल्का भोजन है और इससे कोई भी कर सकता है कि जो भी कर ले उससे उसको फायदा ही होगा, क्योंकि एक तरह से स्वस्थ भोजन है जिसमें सिर्फ हेल्दी खाने की बात कही है, कम नमक खाने की बात करी गई है और शाकाहारी भोजन करने की बात की गई है।
1: बहुत स्पष्टता से आपने ये बात हमको कही कि हम डैश डाइट के बारे में सिर्फ ये न सोचें कि ये सिर्फ बीपी के मरीजों के लिए है, मगर हम सभी लोग भी इसका पालन कर सकते हैं, और अगर हफ्ते में हम एक आध दिन भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम उठाते हैं, ये बात समझ में आती है। प्रायः ये चीज देखने को मिलती है कि लोग ये सोचते हैं कि घर में कोई एक बीपी का मरीज है तो उनके लिए अलग भोजन हो और बाकी लोग नॉर्मल भोजन करेंगे जिसमें अधिक मात्रा में नमक हो या इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये चीज स्पष्ट होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक नहीं है, मगर घर में जो एक व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। हम सब अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबको धीरे धीरे इन बदलावों को लाने की जरूरत है, जिससे हम ज्यादा सब्जियां खाएं, चुकर सहित आटे की रोटियां खाएं, नमक की मात्रा को कम करें। इन सभी चीजों को समझकर हम भी एक स्वस्थ समाज की रचना करने में, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ राष्ट्र की रचना में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़े, उन्होंने हम सभी श्रोता मित्रों के लिए सुलभ मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य में उपलब्ध कराया। आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने बीपी की इस समस्या के लिए डैश डाइट कैसे कारगर है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने ही भोजन में अगर इन परिवर्तनों को लाते हैं, जैसे डैश डाइट का परिवर्तन उन्होंने बताया, तो उन छोटे छोटे परिवर्तनों से हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और घर परिवार में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपी के मरीज हैं उनको भी ठीक करने में हम सहयोग दे सकते हैं, उन्हें भी हम बेहतर स्वास्थ्य की ये तोहफे प्रदान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़े हुए और भी विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सच्ची दोस्ती वो नहीं जो हर दिन बात करे, सच्ची दोस्ती वो है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए।
2: रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास और अपनेपन से बनते हैं, और ईश्वर करे कि हमारी मित्रता, हम सभी की मित्रता हमेशा प्रेम, सम्मान और शुभ भावनाओं से भरी रहे।
1: बिल्कुल बच्चों, तो देखा आप भी अपने फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप डे विश किया होगा और स्कूल में भी मनाया होगा। वैसे तो ऑफिशियली कल 2 तारीख को था, लेकिन हम तो कभी भी फ्रेंडशिप डे मना सकते हैं।
2: हाँ, वैसे तो हर दिन ही मित्रता दिवस है ना परी।
1: तो इसलिए बच्चों, दोस्ती कोई शब्द नहीं, एक एहसास है। हर खुशी में मुस्कान और हर गम में विश्वास है।
2: दूरी चाहे कितनी भी हो, दिलों का साथ बना रहे, यही दुआ है हमारी, दोस्ती सदा यूं ही खास रहे।
1: रिश्तों की भीड़ में जो अपना बन जाए, वही तो दोस्त है। बिना कहे जो दिल की बात समझ जाए, वही तो दोस्त है।
2: दुआ है हर कदम पर खुशियाँ आपका साथ निभाए, और हमारी दोस्ती यूं ही उम्र भर मुस्कुराती जाए। तो बच्चों, आपकी भी जो दोस्ती है वो ऐसे ही हमेशा बनी रहे, और हर कदम पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले।
1: हाँ बच्चों, तो एक अच्छा फ्रेंड बनके रहना, अपने फ्रेंड्स को मदद करना, उनका साथ निभाना, ऐसे नहीं सिर्फ खुशियों में ही साथ दे।
2: सही कहा परी। तो चलो बच्चों, अभी तो आगे भी कार्यक्रम बाकी है, और तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
1: सपनों की सैर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों आ जाओ रेडियो के पास जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और हम फ्रेंडशिप डे मनाने भी वाले हैं। तो चलो आज दोस्ती के ऊपर ही आज बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं। आज आपको मोर और गिलहरी की कहानी सुनाएंगे। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर और एक चंचल गिलहरी रहती थी। मोर अपने रंग बिरंगी पंखों के लिए मशहूर था और गिलहरी तो बच्चों अपनी फुर्ती और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर थी। एक दिन मोर उदास बैठा था। उसने गिलहरी को कहा, मेरे पंख तो सुंदर है लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, काश मैं आसमान में उड़ पाता। बच्चों सोचो गिलहरी ने क्या जवाब दिया। गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी में कुछ खास होता है। देखो मैं पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ और तुम बारिश में नाच करके सबको खुश कर सकते हो। तो मोर ने गिलहरी की बात सुनी और उसका मन हल्का हो गया। उसने गिलहरी से कहा, तुम सच कहती हो, हमें अपनी खूबियों पर गर्व होना चाहिए। तो बच्चों उस दिन के बाद मोर और गिलहरी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते, हंसते और जंगल में बाकी जानवरों को भी सिखाते कि सच्ची दोस्ती वही है जो हमें हमारी अच्छाइयों को पहचानने में मदद करे, है ना बच्चों? तो इसीलिए बच्चों ऐसे ही फ्रेंडशिप डे नहीं मना लेना, लेकिन इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि दोस्ती का मतलब क्या है। एक दूसरे की मदद करना, उनकी खूबियों को सराहना। हर किसी में कुछ खास होता है, बस हमें उसे समझना चाहिए। ऐसे अच्छे फ्रेंड्स बनके रहना बच्चों। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तो बच्चों, तेनालीराम की किताब लेकर मनी दीदी आ गई है और इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनी है, 99 का चक्कर, जिसमें तेनालीराम ने उस मोची को फंसा दिया है। और महाराज ने जब उससे पूछा कि 99 रुपए की थैली तो तुमने उस मोची के कमरे में रखवा ली, तो इससे फरियादी को कैसे फायदा मिलेगा? तो तेनालीराम ने अपनी युक्ति बताई कि महाराज, थोड़ा तो धीरज आप धरिए, क्या हुआ? लेकिन मोची में पैसे वाला बनने की लालसा है, वो मखमल की थैली में मिले 99 रुपए में अपने 1 रुपए मिलाकर पूरे 100 में बदलेगा, उसे खर्च नहीं करेगा। उसके बाद इन 100 रुपए को 200, 200 को 500 में बदलेगा और ललाई तो उठेगा। तो महाराज, अब मोची को तो 99 के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर महाराज ने बोला, लेकिन फरियादी को कैसे फायदा मिलेगा? तो तेनालीराम ने कहा, बस 7 दिन तक धैर्य रखे महाराज, और फिर आगे क्या हुआ चलो चलो मैं आपको बिना देर के पढ़कर सुनाती हूँ। महाराज मौन हो गए, लेकिन उनके मन में तेनालीराम के विचित्र सलाह का परिणाम जानने की उत्सुकता बनी रही। ठीक 7वें दिन वह फरियादी दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। जैसे ही उसे अवसर मिला, वो महाराज के सामने आया और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महाराज ने फरियादी से पूछा, क्या हाल है फरियादी, तुम्हारी समस्या बनी हुई है या? तो फरियादी ने तत्परता से उत्तर दिया, महाराज अब कोई समस्या नहीं है। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? महाराज ने विस्मय से पूछा। महाराज, जिस दिन मैंने मोची के कमरे में थैली फेंकी, उस रात मोची ने थोड़ी देर तक भजन गाया। उसके दूसरे दिन भी थोड़ी देर तक भजन गाया, लेकिन उसके बाद से वह रोज रात को जूते गांठने के काम में लगा रहता है। बाजार से लौटने के बाद भगवान के सामने दीप जलाकर प्रणाम करता है और अपने काम में लग जाता है। महाराज, मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है, मैं रोज रात को चैन की नींद सोता हूँ। महाराज ने देखा तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो समझ गए ना बच्चों, ये था 99 का चक्कर और कैसे इतनी छोटी सी युक्ति से तेनालीराम ने उस फरियादी की समस्या हल कर दी। तो चलो फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद, और अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे नई कहानी तेनालीरामा की। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, देखो अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हम पहुंच गए हैं। और याद है ना, पिछली कड़ी में हमने आपको पहेली पूछी थी, छप छप करके कूदे बच्चे पानी में खेले हंसते हंसते, बूंदों के संग नाच दिखाए, कौन सा मौसम वो कहलाए।
2: वो मौसम है बारिश।
1: बिल्कुल बच्चों, बहुत ही सटीक जवाब है बारिश। तो चलो, अभी फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, तो आप अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जल्दी से हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दीजिए।
2: हाँ बच्चों, आपके जो भी अच्छे फ्रेंड हो, चाहे आपकी सहेली हो, चाहे आपकी दीदी हो, भैया हो, जो कि आपको दोस्तों की तरह हमेशा मदद करते हो, तो उनके लिए भी आप मैसेज दे सकते हो।
1: हाँ बच्चों, तो जल्दी जल्दी ले लो हाथ में मोबाइल और लिखना शुरू कर दो मैसेज।
2: हाँ, और अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे आपके ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो परी, अभी क्या करना है?
1: बच्चों, अभी तो करना है भगवान को गुड नाइट। उनको भी दोस्त बना लो और उनकी गोदी में सो जाओ।
2: हाँ, दोस्त बना के उनसे भी मीठे मीठे बातें तो करने पड़ेगी ना। और दोस्त से तो कोई बात छिपाते नहीं है, तो अपने दिल का हाल, जो भी आज आपने कारनामे किए हैं, अच्छा किया या बुरा, वो अपने खुदा दोस्त को बताना भूलना नहीं।
1: हाँ बच्चों, तो चलो हम भी आपके प्यारे दोस्त करते हैं गुड नाइट।
2: स्लीप टाइट।
1: Goodbye. सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। और बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनेंगे, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा, तो आप सभी तैयार हो ना बनाने के लिए, तो जरूर आप सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जरूर सुनेंगे आप। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। पुनः दोहरा रही हूँ आज के विचार को कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक राजा

वैभव आदि है उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ, ना कि अन्य किसी के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर के राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे तब आप क्या करेगी? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती। यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के राजा को और भी क्रोध बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बुढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर के जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बुढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने के कारण गरीब और बुढ़ा हो गया था। उस समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत ही कष्ट उठा करके राजा को जंगल से वह बूटी ला करके दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बन करके पुनः राजा ही करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने अपनी छोटी लड़की से क्षमा मांगी। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए सुन लेते पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर दर्द और बॉडी पेन हो तो क्या करेंगे? कितनी बार देखिए, अभी तो दीपावली का काम चल रहा है, साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई करते करते बॉडी पेन होने लगता है, थकान आ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे रे रे कब दीपावली का काम पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप है ना, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिए, सारी थकान भी दूर हो जाएगी, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप रोज ही हल्दी वाला दूध पीजिए। जब तक भले आपको भाता हो चाहे नहीं भाता हो, चाहे आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन जब तक आप ये जो दीपावली की साफ सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई त्यौहार आते हैं तो त्योहारों के वेलकम, दीपावली तो ऐसा त्यौहार है कि उसके वेलकम करने के लिए पहले से हम अपने पूरे घर को चमका देते हैं। तो थकान तो आती है, स्वाभाविक है, भले हम माइयों से काम लेते हैं लेकिन माइयाँ भी तो एक इंसान है ना, वो भी थक जाती है। तो सभी के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदेमंद है। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा सुनेंगे आप ध्यान से, दांतों में सुराख हो तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कपूर को महीन पीस करके दांतों पर उंगली से लगाइए, ठीक है, और उसे थोड़ा सा मलिए हल्के हल्के, सुराख हो कि आप अच्छी तरह मतलब साफ करिए पहले सुराख को, ठीक है, फिर मलिए उस पर, फिर सुराख के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा करके रख दीजिए, दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर दांत में सुराख है तो कपूर को महीन पीस करके दांत पर उंगली से हल्के हल्के से आप मलिए लगा करके, ठीक है, और तो इस तरह सुराख अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर सुराख में कपूर को कुछ समय तक दबाइए, ठीक है, दबा करके रख दीजिए, इससे दांतों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको और भी अगला नुस्खा सुना रही हूँ। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, साल भर के, सवा साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे इतना मीठा खाते हैं कि फिर कभी कभी उनको वो खरवा भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खरवा क्या होता है, तो गुदे की जगह पर ऐसी मीठी मीठी खुजली चलती है कि बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता है ना, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन मीठा ज्यादा खाते हैं ना, तो इस तरह गुदे की जगह पर खुजली चलती है मीठी मीठी। तो बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए कि आप केरोसिन का फोहा भर करके वहां पर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबा करके, फोहे को नहीं लगाना है, वहां घिस करके फिर फोहे को हटा दीजिए, तो खुजली तुरंत ही बंद हो जाएगी। केरोसिन का फोहा भर करके गुदे पर और थोड़े से अंदर की साइड में लगा करके फोहे को निकाल दीजिए, केरोसिन लगा दीजिए, तो तुरंत ही खुजली ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो धतूरे के पत्ते का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगाइए, इससे भी जो चुन्नी काटते हैं ना, क्योंकि खुजली क्यों चलती है, मीठी मीठी खुजली क्यों चलती है, चुन्नट काटते हैं, है ना, मीठा ज्यादा खाया है तो चुन्नट काटते हैं, इसलिए मीठी मीठी खुजली चलती है। तो धतूरे का पत्तों का रस निकाल करके उसे गर्म करके गुदा पर लगा दीजिए, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा, ठीक है। और अगर पेट के केचुए और कीड़े हैं तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला करके सुबह सुबह और दिन में और शाम को पीजिए। केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे। देखिए बच्चों का है ना पेट भी बड़ा दर्द होता है, अब बोल नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के क्या हो रहा है, तो इस तरह केचुए काटते हैं, कीड़े काटते, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तो एक बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में मिलाइए और सुबह दिन में और शाम को पीजिए, मतलब बच्चों को पिलाइए, ठीक है। बड़ों को काटते हो तो भी कर सकते हो आप, और बच्चों को इस तरह काटता है पेट दर्द करता है तो भी पिला सकते हो, तो इससे केचुआ कीड़े 4-5 दिन में मर करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, आजमा सकते हो और अपने बच्चों का स्वास्थ्य स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। चलिए प्रश्न पूछ लेती हूँ आज का, बहुत सुंदर प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। धात्री माता जिसके समझ लीजिए साल भर का बच्चा है, स्तनपान करता हो, तो स्वयं किस तरह का भोजन करे और बच्चे को किस तरह का खिलाए, ये प्रश्न है, जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में। यूं गई और यूं आई, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आप खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि भाई बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री हरि बहन जी।
2: जी जय माता दी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
3: बराबर स्वागत तो बराबर किया है, और दीपावली भी आ रही है
2: जी,
3: ऐसे मौके पे तो पटाखे छूट रहे हैं तो स्वागत तो होना ही चाहिए
2: जी। बोलिए आज के।
3: सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा, आपने सुविचार भी बहुत सुंदर दिया आज का,
2: धन्यवाद,
3: इसके लिए थैंक्स तो बनता ही है, बहुत ही सुंदर सुविचार था
2: जी, थैंक यू।
3: और देखिए वो तो चलो विषय चला गया, अभी ये आपने बच्चों की बात रखी है ना, तो बचपन याद आ गया है बिल्कुल
2: जी।
3: देखिए घर में जैसा होता है ना, और आस पड़ोस में मतलब जैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे ग्रहण करते हैं
2: जी।
3: जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही एक बात बताई थी, बच्चों माता पिता और बच्चों की
2: जी,
3: तो मतलब जैसा आप अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो, वो अपने बच्चे देख रहे हैं, तो वही सलूक अपने साथ में होने वाला
2: जी,
3: क्योंकि प्रभु ने भी यही कहा है कि देखिए जैसा तुम खुद आचरण करो, जैसा तुम अपने परिवार के साथ में सलूक करोगे ना, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है
2: जी।
3: तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि तुम अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा किसी के साथ में सलूक कीजिए, ताकि आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब
2: जी।
3: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा देखिए सबसे पहले बच्चों की गुरु होती है माँ
2: जी,
3: सबसे पहली गुरु वो है
2: जी।
3: तो घर में जो बच्चे सीखते हैं ना, वो ही सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने स्कूल में जाके मतलब पढ़ने जाता था, तो पेंसिल वगैरह चुराता था
2: जी,
3: तो उस समय उसकी माँ ने नहीं रोका, तो उसको बढ़ावा मिल गया
2: जी।
3: तो धीरे धीरे बड़ा होके वो बहुत बड़ी चोरियां करने लगा
2: जी,
3: तो उस समय उसको पुलिस ने पकड़ा, और अंतिम इच्छा
2: फांसी पर,
3: तो बोला मेरी
2: जी, फांसी की सजा दी गई उसको, तो उसने माँ को याद किया।
3: हाँ, तो माँ का कान उस समय काटा, किस लिए काटा वो आप समझ सकते हो ना
2: जी,
3: क्योंकि उस समय उसकी माँ ने रोक दिया होता
2: जी,
3: तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर, आभार आपका।
3: बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम रोशन कर सके
2: जी। जी
3: बहुत ये उसका बच्चा है
2: जी। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर विषय है, और बहुत ही अच्छे बात सुनने को मिली है कि देखिए प्रथम गुरु तो बच्चों की माँ ही होती है, घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप भी इस विषय में चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे बनेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि धात्री माता को किस तरह का खाना खाना चाहिए और अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए। हमारी बहनें सुन रही हैं तो भी जरूर जुड़े, भाई लोग जो अनुभवी है वो भी जरूर जवाब देवे, और विषय बहुत अच्छा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो कि किस तरह बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। हेलो,
4: हेलो नमस्कार उषा बहन जी, प्रणाम।
2: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली।
4: हाँ काफी दिन हो चुके हैं बहन जी, जो पहले कार्यक्रम चलता था तब कॉल किया था, और अभी जो हमारे रेडियो मधुबन में कुछ तकनीकी वजह की प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था, बात भी नहीं रही हो पाती थी, रेडियो मधुबन की कवरेज भी पूरी सही तरह से नहीं आ पा रहा था। तो 4-5 दिन से अब बिल्कुल सही रेगुलर आ रहा है, तो अब सुनाई अच्छी दे रहा है हमें।
2: क्या बात है,
4: और जी और सवाल भी बहुत ही अच्छा किया है, और बातें भी खुशनुमा जीवन की अच्छी की है। और रेडियो मधुबन में सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई मेरे, उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और काफी दिनों के बाद रेडियो में आया हूँ, तो इसलिए मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। बहन जी आपको प्रणाम, पूरे रेडियो मधुबन परिवार को।
2: थैंक यू भैया, आपको भी नमस्कार।
4: प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब देता हूँ।
2: जरूर,
4: जो सही है गलत है वो तो आप ही
2: कोई नहीं
4: जानते हैं।
2: अरे नहीं, ये तो जनरल बात है।
4: महिलाएं जो धात्री बच्चे जो बच्चा सुनिए से जो ऊपरता होता है, उसको दूध पिलाने वाली महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों खानी चाहिए, और पीले फल भी खाने चाहिए, और घी और तेल में जो बनाई अच्छी सी पकवान है वो भी खानी चाहिए, और बच्चे को बड़े प्यार से भी खिलानी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है।
2: जी जी,
4: और नमस्कार सभी श्रोताओं को। फिर से
2: विषय में आप चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, क्या कहेंगे आप?
4: बच्चों के साथ तो माता पिता और उनके घर में ऐसा भी प्यार से रहना चाहिए, बच्चों से प्यार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे शाम के समय जो पहले माताएं होती थी, दादी होती थी, वो अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें भी, तो बच्चे उनके अच्छी वो समझ पाते थे, उनमें सोच भी अच्छी होती थी। तो अब तो क्या है, तो माता पिता जो बच्चों की तरफ को ज्यादातर तो ध्यान ही नहीं देती है, या ये मोबाइल इंटरनेट का युग आ गया है, तो वो मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाती है, तो नहीं तो वो भी कोई ऐसी अच्छी जानकारी उसे भी मिलती है नहीं ले पाती है, तो ज्यादातर तो गेम ही खेलती है या वीडियो देखती है, तो माता पिता को और किसी रिश्तेदार का कॉल भी फोन के अंदर आता है तो वो भी नहीं उठाती है, जैसे घंटी साइलेंट कर रख देती है बच्ची। तो ऐसे माता पिता होते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, अच्छी कोई बातें बनाए, अच्छी कहानियों उनको सुनाए, और अपने घर में और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है तो बच्चे अपने अच्छे बनेंगे, और सुदृढ़ और संस्कारी बच्चे है तो वो स्कूल में माता पिता का और टीचर का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और अच्छा बनेगा।
2: बहुत खूब, आभार आपका दयाराम जी, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इस विषय को, बहुत बहुत आभार।

0: तो बहुत ही सुंदर विषय है और बच्चों को किस तरह का माहौल देना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम चलो बच्चे नहीं हुए उसके पहले आप किसी भी तरह रह रहे हो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पहले की तरह झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो उसका असर तो बच्चे पर पड़ना ही है। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग कंचन जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई जी। तो आज का प्रश्न है कि धात्री माता किस तरह भोजन करे और अपने बच्चे को भी कराए। साल सवा साल का बच्चा है, माँ का दूध भी पीता है और ऊपर से भी उनको देना पड़ता है, तो वो धात्री माता किस तरह का भोजन करे और कैसे अपने बच्चे को भी कराए, प्रश्न है ये। फिर विषय बाद में बता।
1: हाँ जी, तो ये हरे शंकर जी का और प्रोटीन इसमें ज्यादा भोजन करे तो बच्चे को भी दूध का सेवन करे, ये सब करे तो बच्चे को भी इसमें से जो ये दूध तो माता का पिलाना ही चाहिए, बाहर का खुराक लेकिन माता का दूध जरूरी है।
0: जी। अच्छा, और आज का विषय यह है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि बच्चे संस्कारिक बने।
1: बच्चों के तो माता पिता के संस्कार हो गए तो बच्चों में आएंगे बहन जी।
0: जी,
1: जो बुरी कमाई करके घर में लाएंगे तो बच्चे, बड़े बच्चे देखेंगे, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमाई आई है। और दूसरी एक बात करूँ तो मोबाइल
0: जी,
1: मोबाइल का माता पिता ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे
0: जी।
1: ये आजकल का माहौल है तो इसमें खास माता पिता को ध्यान रखना है और जैसी बात करनी है घर में, बच्चे न सुने ऐसे कोई संस्कार इसमें न आए ऐसी हमें घर में रहना है।
0: जी
1: जी,
0: चले, बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका।
1: जी, दोस्तों का
0: जी। तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को किस तरह का माहौल देंगे। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही खराब हो, कितनी बार अड़ोस पड़ोस का माहौल भी खराब होता है। हमारे घर में अच्छा माहौल है लेकिन अड़ोस पड़ोस में अगर माहौल खराब है तो उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में ही खुश रहते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, और जब बच्चे जब उनके घर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि झगड़े हो रहे तो भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे किसको कहते हैं, बच्चे तो महात्मा की उपाधि बच्चों को मिली हुई है, इनोसेंट होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से असर होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो घर पर भी आकर के, क्योंकि बात तो पूरी समझ नहीं पाता है, अधूरी बात करता है, तो माहौल सिर्फ अपने ही घर का नहीं अड़ोस पड़ोस का भी अच्छा होना चाहिए। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छी बातें भी सुन रहे हैं
0: जी।
2: और पहले तो मैं बताऊँ दीदी, जब आपने कर्मों का विचार दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा
0: जी, थैंक यू।
2: क्योंकि वो हम देखते हैं कई बार
0: जी,
2: इसी विषय पर जरूर एक बार चर्चा जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है
0: जी,
2: एक बार वो विषय जरूर लीजिए
0: जी,
2: अच्छा विचार वाला
0: जरूर जरूर।
2: और आप जो बात बहुत अच्छी बताई आज, तो बच्चों की बात बताइए, तो बच्चों के तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बच्चे जैसे पड़ोस में कई बार दीदी क्या होता है कि पड़ोस के बच्चे इतना तूफानी, मैं बताऊँ हमारे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ मैं
0: जी।
2: एक बच्चा इतना दीदी तूफानी, इतना तूफानी की बहुत हमारे, तो दूसरा बच्चा बहुत सीधा था, अच्छा था, लेकिन इसके साथ मिल गया तो आज वही भी ऐसा हो गया है
0: जी, जी,
2: तो माँ बाप बोलते हैं तो कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे करते बोलते रहते, छोटा सा बच्चा है फिर भी, तो जैसा माहौल वैसा बच्चा होता है। आज हम देखते हैं
0: जी,
2: कई परिवार ऐसा है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे को हम अच्छे बच्चे के साथ रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो तो इसके पास रहेगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा
0: जी। जी, और आज का प्रश्न भी है कि धात्री माता को किस तरह का भोजन करना चाहिए और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए।
2: मैं धात्री माता को वो समझा नहीं देती मैं सबसे वो समझना
0: जैसे नन्हे बच्चे होते हैं ना, नन्हे बच्चे होते हैं वो माँ का फीड करते हैं, है ना, आठ महीने के साल भर के बच्चे माँ का दूध लेते हैं वो, तो माँ को किस तरह का भोजन करना चाहिए ऐसे समय में और अपने बच्चे को भी कराना चाहिए?
2: वो तो दीदी चाहे भोजन में तो उसको जरूरत है, कोई जो हमारे यहाँ दाल भात बोलते हैं अच्छे खुराक जो हल्के खुराक
0: जी जी,
2: ज्यादा भारी खुराक खाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए भारी पड़ता है,
0: जी जी
2: हल्के खुराक खाए, लीला शाक भाजी खाए, दूध मात्रा में लेना भी जरूरी है क्योंकि दूध से भी बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी दूध पिलाना जरूरी है। अभी तो क्या दीदी पाउडर आ गया है, मैंने बताया कई लोग को पाउडर पिलाते हैं बच्चों को, तो बच्चा इतना मोटा हो जाता है, मैं मेरे परिवार की बात करूं
0: जी,
2: तो इतना पहले दुबला पतला था, वो पाउडर का एक डब्बा उससे पिला दिया था, आज देखो तो इतना बॉडी का हो गया था, मैंने बोला तो इतना बारीकी हो गया कि हमने पाउडर पिलाया
0: जी जी,
2: ऐसा पाउडर तो नहीं पिलाना चाहिए
0: जी, बिल्कुल बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए जी,
2: नहीं बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, इससे शरीर भारी हो गया है बहुत
0: जी,
2: तो कभी कभी माता ऐसे पिलाती है तो लेकिन नहीं पिलाना चाहिए उसको अच्छा दूध। पहले तो दीदी क्या था, हम तो जब छोटे थे तो हम तो बकरी के दूध पीते थे,
0: बहुत अच्छा है बकरी का दूध तो सबसे बेस्ट है,
2: हमारे घर पे ही बकरिया थी जब हम छोटे थे, तब हमारा दो बकरिया थी, तो हम सभी भाई बहन बकरी का दूध पीते बड़े हुए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरिया का दूध सभी वनस्पति के मिला हुआ आता है
0: जी,
2: तो वही अच्छा रहेगा, लेकिन आजकल वो नहीं है, तो बस जो आता है वही जो चिलाता है छेली रहता है वो खाते थे
0: जी जी,
2: बस लेकिन हल्का खोरा खाएंगे तो बच्चा भी अच्छा रहेगा और माता पिता भी माँ भी अच्छी रहेगी
0: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार जी। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, जुड़िएगा, नंबर हमारे है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो, आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हो, आइए सुनते हैं।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था, पर यकीन मानो उस बचपन में दम था। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चे उसमें ढलेंगे और उस अनुसार ही वो बनेंगे। क्या कहेंगे आप? आपका विचार क्या है, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए? जुड़िएगा इस विषय में, चर्चा जरूर आप करिएगा, हम भी आपकी राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और इस सुंदर से विषय में आप भी अपनी चर्चा अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। बात चल रही थी माहौल की कि बच्चों को माहौल कैसा मिलना चाहिए। देखिए घर की बात तो पहले ही होती है, और आप सभी ने कही ही है कि भाई सबसे पहले तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाहर का। लेकिन बच्चे क्या है, या तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ खेलेंगे, या अपने रिश्तेदार जो काका ताऊ इनके बच्चों के साथ खेलेंगे, तो कितनी बार क्या है कि भले भाई भाई है लेकिन एक भाई के घर का माहौल अलग और दूसरे भाई के घर का माहौल अलग। अब बच्चे तो खेले बिना नहीं रहेंगे, जाए बिना नहीं रहेंगे, उसका भी असर पड़ता है। जैसे कुछ शिकायतें सुनने को मिलती है कि ताऊ के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, अब वो आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जा तू यहाँ से, हमारे घर से जा। जैसे बच्चे जाते हैं अपने बड़े पापा के यहाँ पर, तो बड़ी मम्मी है बाहर निकाल देती है, गेट बंद कर देती है कि जाओ तुम यहाँ से, अभी नहीं आओ। बच्चे मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए भी देखा है। अब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे क्या समझते हैं, वो तो अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। लेकिन महिलाएं पुरुष इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, नहीं आना है अभी, जाओ यहाँ से, भले बच्चा रो रहा है लेकिन फिर भी दरवाजा बंद कर देते हैं कि नहीं आना है, जाओ यहाँ से। तो वो बाल मन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों का। वो रोते रोते भले अपने घर में आता है, भले उसके मम्मी पापा प्यार से उसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के कहीं ना कहीं अंदर से लग जाता है। फिर भी बच्चा तो बाल मन होता है ना, फिर जैसे जाने देते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह आज तो मुझे आने दिया घर में, क्योंकि अब एक भाई के एक ही बच्चा है, बड़े भाई के 2-3 बच्चे हैं, तो अब वो अकेला बच्चा क्या करेगा, अपने भाई बहनों के साथ ही खेलेगा ना, बड़े पापा के उधर ही जाएगा। तो इस तरह का माहौल भी बच्चों को मिलता है, इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। और आजकल हर माता पिता यही चाहते कि एक बच्चा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे का भी कम सोचते हैं। एक बच्चा हो गया बहुत हो गया, चाहे बेटी है चाहे बेटा है बहुत हो गया। लेकिन जब उनको कंपनी चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी हमारे बरोबरी के चाहिए कि भाई हमारे को भी कोई कंपनी मिले तो अच्छा लगे। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चे भी बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पड़ोस में हो चाहे अपने ही परिवार में हो 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे को आने ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए माहौल अच्छा बना के रखना है, सिर्फ अपने बच्चे का ही नहीं सोचना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी सोचना है कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे है वो भी है तो एक परमात्मा के ही संतान है ना, तो उनको भी प्यार दो और घर में उनको आने दो। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। गोपाराम जी कैसे हो?
3: बहुत अच्छे विचार आपके सुन रहे हैं
2: जी।
3: घर बैठे वो गंगा आती है
2: जी,
3: वो वाली बात है। अलग अलग भाइयों की बहनों के सुझाव आती है, सुनते रहते हैं
2: जी जी जी।
3: और मेरे पास एक बहन आई थी थोड़े दिन पहले
2: जी,
3: वो कुछ ये कॉफी पीने की ऐसा कोई रखते है
2: जी,
3: वो लोग मालूम तो पड़ ही जाता है
2: जी,
3: फिर मैंने उनको कहा मैं बाबू तुम्हारे दाल दर मेरे को दूर हो जाएंगे, अब पैसों की कमी नहीं रहेगी
2: जी।
3: तो उसने क्या जवाब दिया था, नहीं नहीं एक कूपी के पीछे के 10 रुपए मिलते हैं।
2: अच्छा
3: एक अच्छा एक बात, दूसरी बार अभी मैं एक दुकान पे बैठा, एक स्कूल ड्रेस में लड़का 10वीं 11वीं का होगा
2: जी,
3: उसने पूछा कि भाई सिगरेट है अंदर?
2: ओहो
3: क्या पता था, व्यापारी ने मुझे देख के मना किया, वो जाना फिर वो तो गया। मैंने कहा मार साहब के लिए लेने आया क्या? नहीं नहीं ये तो क्या पीते है, और को मौका मिले तो वो पी भी लेते हैं क्या।
2: अरे रे,
3: अब ऐसा माहौल भी बन रहा है
2: जी।
3: और दूसरा संस्कार का आपने बात बताई, तो बच्चों में क्या होता है कि दो प्रकार के संस्कार होते हैं। अब उसके माता पिता के यहाँ का अलग संस्कार होते है, और ननियाल मामा की माँ के अलग होते है
2: जी।
3: ये दोनों का तालमेल बिठा के आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ऋषि जो थे ना
2: जी,
3: वो ये विचार देने का ही काम करते थे, गांवों में घूमते और जगह जगह जा करके
2: जी।
3: आज भी कई कई है, ऐसी बात नहीं है
2: जी,
3: लेकिन ये बहुत कम हो गया है
2: जी।
3: वो माँ बाप कमाने में लगे कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा और अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, और वो मालूम नहीं कि सिगरेट पी रहा है
2: जी।
3: और क्या क्या कर रहा
2: है, बिल्कुल बिल्कुल
3: उसका ध्यान नहीं रखते। थोड़ा हंसी मजाक जैसा भी बताऊं आपको, एक भाई नया नया शादी करके आया, उसके घर वाली अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करने लगी
2: जी।
3: लोग आके उसको बोलने लगे, अरे तुम्हारी घरवाली ऐसी क्या मतलब झगड़ा करती है? तो उसने कहा भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरी सासू जी के पास में जाओ ना क्या।
2: अच्छा क्या बात है बहुत अच्छी बात है कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो, सास ने शिक्षा संस्कार दी है बेटी को तो उनके पास जाओ। सही है, जब कुछ बातें हो जाती है तो माँ तक, चाहे बेटा बिगड़े चाहे बेटी बिगड़े, पिता के पास कोई नहीं भेजेंगे, माँ के पास ही भेजेंगे कि जाओ अपनी माँ के पास, जबकि माँ तो अच्छी शिक्षा संस्कार ही देती है अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को, लेकिन फिर भी नाम माँ का आता है। और जब कोई अच्छे नंबर से पास होता है या फिर कोई अच्छा काम करता है तो उस समय पिता बड़े फक्र से कहते कि वाह मेरा नाम रोशन कर दिया, और बिगाड़ा है तो माँ का नाम कि तुम्हारा बेटा है तुम्हारी बेटी है तुम जानो, ऐसा भी होता है। खैर बात चल रही थी बच्चों के संस्कार की, तो ऐसे देखो एक घर की बात नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे परिवार वाले हो, बच्चे को आने नहीं देते हैं घर में, तो उसका भी बच्चों बाल मन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए देखिए अपने बच्चे हैं वो ही पड़ोस के बच्चे हैं वो ही अपने परिवार के बच्चे हैं, तो उनको भी आने दीजिए। जबकि देखिए आप दूसरा के घर में बच्चे जाएंगे ना तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने जो भाई बहन है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनके साथ कम्फर्टेबल महसूस करेंगे कि अरे वाह मेरे दोस्त है या मेरे भाई है, ये फीलिंग उनके अंदर आएगी। अपने घर में चाहे कितने भी मस्ती करती हो करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है माताएं परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरों के घर में वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हेलो
4: हेलो बहन जी, परिवार के
2: हाँ जी कंचन भाई,
4: ऑफलाइन ऑनलाइन
2: ऑन एयर
4: जी। परिवार के जो बच्चे के वो साथ अपना बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्या है कि जो परिवार के बच्चे है न वो परिवार के पड़ोसी जी हर रोज झगड़ा करते हैं, ये संस्कार बच्चों में आया है
2: जी।
4: और बच्चे भी गालियां, ये बच्चा गालियां देना शुरू कर देता है
2: जी।
4: तो ये अभी मैं ही बताऊं, मेरे बेटे का बेटा था दिव्यांशु, तो ये हमारे यहाँ आया तो कुछ गालियां देने लगा, तो मैंने बोला कि ये कहाँ से सीखा
2: जी।
4: तो ये बोले, मेरी बेटी बोली कि भाई ये पड़ोस वाला एक है वो बच्चा वो रोज खेलने के लिए आता है इससे सीखा है
2: जी।
4: तो ये थोड़ी सावधानी रखने की थोड़ी जरूरत
2: है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
2: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ऐसा भी होता है कि जब अपनी उम्र के बच्चे गाली गलौज करते हैं तो बच्चे सीखते ही हैं, इसलिए माताओं को पिताओं को चाहिए कि भाई अपने बच्चे को किस तरह का माहौल देवे। बहुत सारे देखो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो माता पिता वो घर छोड़ करके दूसरे घर में भले किराए पर चले जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए वो लड़ाकू माहौल झगड़ा वाले माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो यही सोचते कि हमारा तो जीवन बीत गया लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे माता पिता उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में चले जाते हैं, चाहे भले वो किराए पर रहेंगे, खुद का घर हो, फिर भी वो छोड़कर चले जाएंगे, किराए पर चढ़ा देंगे या बेच देंगे। इसलिए देखिए बच्चों को माहौल देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा का मन स्वस्थ रहेगा, संस्कारिक बनेंगे और उनके ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा और वो बच्चे भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपका नाम भी करेंगे। इसलिए माहौल अच्छा दीजिए, घर का भी, अड़ोस पड़ोस का, साथ का, उन किस तरह के बच्चों के साथ बच्चे रह रहे हैं ये भी ध्यान देना जरूरी है। संग का रंग जरूर लगता है, बड़े होने के बाद वो कहते ना कि जब घड़ा पक जाता है फिर उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन कच्चा घड़ा होता है तो उसको जिधर आप मोड़ेंगे उधर वो मुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए और हमेशा घर का माहौल अच्छा बना के रखिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए सुनते हैं गीत, परंतु प्रश्न आज का है कि धात्री माता किस तरह का आहार लेवे और किस तरह का आहार अपने बच्चे को देवे। प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। और आइए सुनते हैं गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आशियाना के किचन में आज बनाएंगे टमाटर पनीर पिज्जा। भाई पिज्जा तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। खैर कहते हैं कि पिज्जा है, ब्रेड की कोई भी चीज है, वैसे बहुत कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार खाने में कोई नुकसान नहीं। 6 महीने में 5 महीने में एक बार तो आप बना करके खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। और ऐसी चीजें तो बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं। घर में नहीं मिलते तो फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जा करके खा लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम घर में ही बना करके खिला देवे, ताकि हमारे नजरों के सामने तो बच्चे रहे और हमें पता तो चले कि बच्चे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते इन चीजों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या है कि माताएं कंट्रोल करती है या बनाती नहीं है, कोई कोई को आता भी नहीं है बेचारे को, कैसे बनाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर जा करके खा लेते हैं, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे, 5 साल के 6 साल के बच्चे भी ये चीजें बहुत पसंद करते हैं। देखते हैं बाहर तो या फिर अड़ोस पड़ोस में तो जिद करते हैं कि हमें भी पिज्जा खाना है। तो पिज्जा भी तरह तरह के बनते हैं, लेकिन आपको क्या है, पौष्टिक पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ टमाटर और पनीर का। ठीक है, तो जरूर बना करके खाइएगा और जरूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। अब माताएं अक्सर क्या है कंफ्यूज हो जाती है, हर एक के घर में तो ओवन नहीं होते ना, तो माताएं कैसे बनाएगी। फिर वो यही सोचती है कि कैसे बनाऊं, ओवन ही नहीं है घर में। तो बच्चे जिद करते तो यही कहते जाओ बाहर जाकर के खा लो। लेकिन अगर ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, बाटी का कुकर तो हर एक के घर में होता है ना। भाई राजस्थान है, राजस्थान में तो दाल बाटी का ज्यादा ही क्रेज है, तो कुकर तो घर घर में रहते हैं। बस उस कुकर में भी आप बना सकते हो, ओवन की जरूरत नहीं। ठीक है, और है अगर ओवन तो फिर ओवन में बनाइए, साधन है तो यूज करिए, नहीं है तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बाटी का कुकर भी नहीं है तो छलना तो सभी के घर में रहता है ना, बस नीचे तवा और ऊपर छलना रख दो और जो भी आप जैसे बेकरी आइटम बनाते हो उसमें बना दीजिए। तो अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ टमाटर पनीर पिज्जा के, कि आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच लेना है मक्खन, 6 टमाटर ले लीजिए, 200 ग्राम पनीर ले लीजिए गोल गोल कतले में कटा हुआ, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है, और फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफाइंड तेल है तो वो लीजिए, नहीं तो कोई सा भी जो भी तेल आप घर में खाते हो ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। फिर 2 बड़े चम्मच ले लीजिए मक्खन, 6 टमाटर लेना है, 200 ग्राम पनीर लेना है और 1 बड़ा चम्मच सोया साग की नरम पत्तियां लेनी है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च या फिर लाल मिर्च, वो आप पर छोड़ा है कि आप क्या पसंद करते हैं, काली मिर्च पसंद करते हैं लाल मिर्च। ठीक है, अब बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ओवन गरम करिए, अगर ओवन है तो, नहीं है तो कुकर रख दीजिए गैस पर। फिर आप पहले पिज्जा का बेस, इसके ऊपर तेल चुपड़ करके 5 मिनट इसको आप कुकर में थोड़ा सा बेक करें, ओवन है तो ओवन में बेक करें, नहीं तो कुकर में, फिर निकाल दीजिए बेक करके। ठीक है, अब टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए, सब के ऊपर ये नमक काली मिर्च सोया साग की पत्तियां को बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक आप बेक करें कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है, आप बाटी के कुकर में ये रख सकते हैं या छलने पर रख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई चिपके नहीं और दूसरी बात है कि ये जले नहीं, आंच इस तरह आपको रखना है। ठीक है, ओवन में तो हमको पता होता है भाई इतनी डिग्री में कर ले तो हो जाएगा, लेकिन गैस पर आप अगर आप बाटी के कुकर में या छलने में बना रहे हैं तो आंच हमेशा मध्यम रखिए और बीच बीच में देखते रहिए कि सुनहरा हुआ या नहीं, तैयार हुआ या नहीं, फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कुकर और छलने में बनाने का, लेकिन छलना डायरेक्ट नहीं रखना है गैस पर। ठीक है, नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो आग को इतना डायरेक्ट पहुंचाता नहीं है, नहीं तो फिर वो तो बनेंगे ही नहीं, जल जाएंगे। डायरेक्ट छलना रखेंगे तो डायरेक्ट आग पहुंचेगी तो जल जाएगा, और कुकर तो वैसे ही हाइट पर होता है, तो कुकर रखने के बाद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, स्लो कर दीजिए गैस को और आप डायरेक्ट इस तरह बेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा,
कि आपके पास कुकर है, छलना है, जो भी है रखिए गैस पर और गैस चालू करिए। अगर छलना रख रहे हैं तो नीचे तवा, फिर छलना रखिए, कुकर रख रहे हैं तो डायरेक्ट कुकर रखिए, ओवन है तो ओवन को गर्म करिए। पहले पिज्जा बेस पर आप तेल चुपड़िए और तेल चुपड़ करके 5 मिनट तक इसको बेक करिए, ठीक है। फिर निकाल करके आप टमाटर और पनीर को बेस पर सजा करके ऊपर से पिघला हुआ मक्खन फैला दीजिए। सबके ऊपर से आप नमक, काली मिर्च और सोया साग की पत्तियां भी बुरक करके पिज्जा को इतनी देर तक बेक करिए कि पनीर पर सुनहरापन आ जाए।

दे सकते हो और एक दिन पहले आप बता सकते हो कि रेसिपी आप देंगे। ठीक है, आइए सुनते हैं गीत। परंतु प्रश्न बड़ा अच्छा है कि धात्री माता किस तरह का भोजन करना चाहिए, धात्री माता को और अपने बच्चे को भी किस तरह का आहार देना चाहिए। जवाब जरूर देंगे, नंबर है 94-14-15-14-15 और सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपको विचार भी दिया है कर्मों के ऊपर, और नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं। छोटे बच्चों का अगर चुन्नट काटते हैं तो क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जरूर आप करिएगा। और रेसिपी भी बहुत अच्छी आपको सिखाई है, पिज्जा, पनीर टमाटर वाला पिज्जा जरूर बनाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बड़ी अच्छी हुई है कि बच्चों को माहौल अच्छा देंगे तो बच्चे संस्कारिक बनेंगे, और जरूरी भी है क्योंकि पहले के समय में तो 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। तो चलो वो नहीं, वो कपूत निकला तो दूसरा सपूत निकल जाएगा। माता पिता निश्चिंत थे कि कोई न कोई तो हमारी सेवा कर ही लेंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए तो बच्चे 1 या 2 ही होते हैं। और पहले का और अभी के माहौल में बहुत फर्क है। पहले कैसा भी था लेकिन माहौल अच्छा मिलता था। आज हम कितने भी स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं फिर भी माहौल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल देवे तभी बच्चे संस्कारिक बनेंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न यही था कि धात्री माता किस तरह का खाना खाए और बच्चों को भी खिलाए। तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, दयाराम जी लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई झोटाना से और कुपाराम जी कोजरा से। किसी ने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर किसी ने कहा है कि भाई लगभग तो सभी ने यही कहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाए। फिर किसी ने कहा कि भाई महिलाएं तो नहीं जा सकती है, पति ला करके देंगे तभी तो महिलाएं खा सकेगी। तो पतियों को चाहिए या जो भी सब्जी लेने जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और फल फ्रूट हरी पत्तेदार सब्जियां लाए। तो देखिए सभी का जवाब सही है, सभी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। तो बिल्कुल जरूरी है कि जो धात्री माता है, जो बच्चा स्तनपान कर रहा है और बच्चे को भी खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि साल भर के बच्चे 9 महीने, 10 महीने के, 12 महीने के बच्चे खाली माँ के दूध से अगर पेट नहीं भरता है तो उनको भी हल्का आहार देना पड़ता है। और अगर माँ के दूध से चल जाता है तो फिर तो ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए साल भर के बच्चों को, क्योंकि वो माँ के जो खुराक है, माँ का जो फिट करता है बच्चा, उस दूध में सारे ही पौष्टिक तत्व आ जाते हैं। इसलिए माँ को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है धात्री माता को कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, थुल्ली खिचड़ी ज्यादा खाए, उसमें अच्छा सा घी डाल करके खाए, है ना, और थोड़ा सा नवसेका खाए, ठंडा होने के बाद नहीं खाए, नहीं तो सर्दी खांसी की तकलीफ होगी तो बच्चों पर भी असर होगा। और दूध जरूर पिए और फल फ्रूट भी खाते रहे। और अगर बच्चे फिर भी आपके दूध से बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है तो बच्चों को भी आप, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनके दांत तो नहीं है, तो आप उपमा अगर बना रही है तो उपमा में कुछ मत डालिए, खाली घी में सेक करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके एकदम ढीला ढीला बनाइए। चाहे तो आप उसमें थोड़े से छाछ या नींबू डाल सकते हैं और ढीला ढीला बना करके एकदम राबड़ी की तरह, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले राबड़ी की तरह बना करके बच्चों को चम्मच से खिलाइए तो आसानी से खा लेंगे और सूजी नुकसान भी नहीं करती है। फिर आप जैसे कि फ्रूट, बच्चों को फ्रूट के जूस पिला सकते हो थोड़ा बहुत। और अगर जैसे बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला है तो केले को तो आप हाथ से मैश करके भी खिला सकते हो। ड्रैगन फ्रूट है उसको भी आप मैश करके खिला सकते हो। तो जो मैश हो जाते हैं हाथ से उसको आप हाथ से खिलाइए। और अगर बच्चे नहीं खा सकते, जैसे अनार के दाने नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं है तो चबेंगे नहीं, तो उसका जूस पिला करके आप दे सकते हो। तो इस तरह धात्री माता को भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी खाने का पूरा ध्यान रखना है, संतुलित आहार खाना है, ना कि ऐसे भारी भारी भोजन, ऐसे समय में दाल बाटी या मक्की की रोटी, इस तरह भारी खाना नहीं खाना है, क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हो सकता है उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, और अब मैं आपको एक प्यारी सी बच्चों पर ही कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कविता का शीर्षक है झूला। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नबको छूले। हे बहार सावन की आई, हे बहार सावन की आई, देखो शाम घटा नब छाई। अब फुहार पड़ती है भाई, अब फुहार पड़ती है भाई, ठंडी ठंडी अति सुखदाई। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर के नब को छूले। कुहुक कुहुक कर गाने वाली, कुहुक कुहुक कर गाने वाली, प्यारी कोयल काली काली, बड़ी सुरीली भोली भाली, गाती फिरती है मतवाली। हम सब भी गाकर झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले। मोर बोलता है उपवन में, मोर बोलता है उपवन में, मस्त हो रहा है नर्तन में। चालक भी चातक भी बोला वन में, चातक भी बोला वन में, आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले, पेंग बढ़ाकर नब को छूले।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM में कार्यक्रम हिंसा को नो में खूब खूब स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि लिंग और अंतर विभागीयता के अंतर्गत निम्न वर्ग समाज के लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। एक तो उनको जाति में बांट दिया जाता है, फिर ऊपर से ठप्पा भी लगा दिया जाता है कि जो जिस जात का है उसे वही काम करना है। जैसे कि नाई है तो उसे बाल ही काटने हैं, महिला है तो उसे झापाई कराना है, चमार है तो उसे जूता ही सिलना है, कुम्हार है तो उसे मिट्टी के बर्तन ही बनाना है, वगैरह वगैरह। निम्न वर्ग समाज की महिलाओं के साथ तो और भी गलत व्यवहार होता है। एक तो वो महिला है, ऊपर से निम्न वर्ग की है, तो फिर उनके साथ क्या क्या नहीं होता है पूछिए मत। महिला चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसे जाति के अनुसार काम तो करना ही है, ऊपर से जजमान के हिंसा का शिकार भी बनना है। जैसे बात बात पर शक करना, यहाँ नहीं छूना वहाँ नहीं छूना, वगैरह वगैरह। वैसे बड़े शहरों में इस तरह का व्यवहार न के बराबर है, फिर भी छोटे छोटे गांवों में आज भी इनके साथ इस तरह का व्यवहार होता ही है। तो सुनेंगे आप एक ऐसा नाटक जिसका विषय है लिंग और अंतर विभागीयता।
1: आज आपको ले चलते हैं आबू के आंचल में स्थित एक ऐसे गांव में, जहां कुछ परिवार रहते हैं जो निम्न वर्ग के हैं, और इनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और यह किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: सीता, ए सीता सुन, अपना सेठ जी का घर में शादी है तो काम करवा थूपरी जाजे, मार थोड़ा काम है इन वास्ते।
3: मैं तो कोनी चाहूं था का सेठ जी रा घर है, बड़ा बड़ा घर रा चोचला ही न्यारा हो गए। एक तो पिदेला हो गए, ऊपर से इज्जत भी कोनी करे, गलत नजर से देखे।
2: थारी बात साची है, फिर भी काई करा सीता, जानो तो पड़ी, जो अपनो काम है आपा कोनी करा तो कुण करी, अन पैसा की भी तो जरूरत है।
3: मैं पढ़ी लिखी हूँ तो और कोई काम भी कर सकूं।
2: आपनो समाज पढ़ाई कोनी देखे, काम कोनी करा तो ताना मारे, अन खरी खोटी सुनावे जो अलग।
3: केड़ो सिस्टम है, शादी वे मौत मरकत वे, तो जो जनी जात को विने वो काम तो करनो ही है।
2: बात बात में कर जे, पहला जा मोड़ो बेजाई।
3: आपड़ी बाल की छोटी है, मैं क्या जाऊं?
2: अपना पड़ोस वाला चाची राटे छोड़ दे, अनंत तू जल्दी जा।
3: हाँ जाऊं।
1: तो देखा दोस्तों, आखिरकार सीता पढ़ी लिखी होती है फिर भी जाति के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाती है और सेठ जी के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर किस तरह की बातें होती हैं, आइए सुनते हैं।
3: खम्मा गणी सेठानी जी,
4: आगे तू घनी देर लगा दी, कद की थारी बात ना आयलू, टाइम पर आना जोई जे ना।
3: माफ कर दो सेठानी जी, अभी टाइम पे आऊं।
4: थारो धनी कोनी आईयो?
3: वे काम सुकटी बहाने कया।
4: तू पानी भर दे और झाड़ू पोछे लगा दे, और दूसरी जात की छोरी हो वे तो इन्हें बर्तन माजवा के लिए ले ना जे।
3: ठीक है सेठानी जी।
1: सीता सेठ जी के घर पर सारा काम फटाफट निपटा देती है और अपने घर जाने की परमिशन लेती है। सेठानी जी फिर से याद दिलाती हैं सीता को बर्तन मांजने के लिए किसी लेडीज को लेकर आने के लिए। सीता उसके लिए हाँ कहती है। तो देखते हैं सीता को कोई बर्तन मांजने वाली महिला

0: मिलती है या नहीं।
1: कटे जाना या भाभी सा
2: जेठ जी राटे शादी है तो मैं काम करवाएगी तो बर्तन माजबा आई कई मारे साथ में।
1: मैं तो और भी कटे ही बर्तन माजबा जाऊं, मने टाइम माली तो मैं आपने बताऊं।
2: काई किस्मत है थारी, तो कितनी ऊंची जात की है, पर थारो पति छोटी जात को है, इन वास्ते थने भी एड़ा काम करना पड़े। तू कतरी बड़ी गलती कर दी है घर सु भागन शादी करवा की।
1: भाभी सा जात सु कोई लेनो देनो कोनी, या तो लोगारी थिंकिंग ही एड़ी बनगी, अणी जात्रा मनक है तो याने यो ही काम करनो। खैर छोड़ो, मने टाइम माली तो मैं जरूर आऊं, से मने आवाज दे जो, ठीक है?
2: ठीक है, मैं भी जाऊं, राम राम।
3: ता तो आगी तने सेठानी जी कई बोलिया तो कोनी, केड़ो रहे हो आज को दिन?
2: सेठानी जी थोड़ा बोलिया, खैर सब ठीक रहो, पर बर्तन माजबा वाली छोरी चारी वाके तो मैं रोशनी ने क्यों।
3: ठीक है चाल सीता, खानो खाला आपा, अच्छा पाचो सुबह जल्दी उठनो।
0: निम्न वर्ग के समाज में महिला और पुरुषों के साथ तो अन्याय होता ही है, लेकिन उनके बच्चे भी दुर्व्यवहार के शिकार बनते हैं। इधर सीता को अपने पड़ोस में रहने वाली रोशनी बर्तन मांजने के लिए मिल जाती है। अगली सुबह सीता रोशनी को लेकर सेठ जी के घर जाती है। वहाँ पर इनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है आइए देखते हैं।
2: बेटा आप स्कूल जाओ, मैं काम पर जा रही हूँ।
4: माँ आपको पता है रोशनी आगे की गुड़िया स्कूल लगने आती आजकल?
2: वो क्यों बेटा?
4: मम्मा मम्मा वो बच्चे गुड़िया तो चिल्ला रहे थे नीचे जाके तो नीचे जाती है मुझे दूर आजम से तो वो बहुत रोए उसके बाद स्कूल भी नहीं आए।
2: यो तो खूब गलत है, सर बच्चा ने कही क्यों को
4: नहीं चलने को सही बोला।
2: केड़ा लोग है, स्कूल में भी भेदभाव, पढ़वा को हक तो हर जात का बच्चा ने है, घना माता पिता भी एड़ा हो गए जो खुद का टाबर ने बचपन से भेदभाव कर वो सिखावे, बच्चा रो कोई दोस्त को नहीं। तू जा बेटा स्कूल, मैं रोशनी चाची ने काम करवा के लिए आवाज दे। रोशनी ए रोशनी चाल मारा साथ में काम करवा।
1: हाँ भाभी सा।
2: थारी बच्ची कटे?
1: घर पे है, पर आप क्यों पूछ रहे हो कई हुआ?
2: अरे भाई स्कूल होना चाहिए ना इन टाइम पे, इन वास्ते पूछियो।
1: भाभी सा छोटी स्कूल जावे तो सब बच्चा भी ने चिड़ावे, तू नीची जात की है, अटे मत बैठ, वटे मत बैठ, यो मत कर वो मत कर। मारी बच्ची खूब रोई तो मैं स्कूल छोड़ा दी दो, और वस्यान भी स्कूल जान कई करी, मारी न्यान लोगा का घर का काम ही तो करना है, तो बस घर को काम सीखो।
2: थारा जेड़ा लोग ही समाज में भेदभाव ने बढ़ावा देवे है। अरे तू स्कूल जाती, टीचर से बातचीत करती, बच्ची पढ़ी तो वे सके आगे जान नौकरी करे, और समाज अपने आप ही चुप हो जाए, पर तू तो डायरेक्ट बच्ची ने स्कूल से छुड़ा दी थी। हुँ?
1: चालो सेठानी जी रो घर आ गयो, मैं बाने उभी हूँ, आप अंदर बोलन आओ।
2: हाँ ठीक है मैं जाऊँ।
5: सीता आगे तू, बर्तन माजवा वाली ने तो लेन आई?
2: हाँ सेठानी जी बाने उभी है, आप बात कर लो।
5: मैं कई बात करूँ? तू कह दे बर्तन माजे और वीने कह जे घर रे माई कोनी आवे, मारे मेहमान है, वीने देख ली तो पानी भी कोनी पीवे, समझा दीजिए। ठीक है मैं जाऊँ।
2: रोशनी ये बर्तन पड़े है तू माज दे, मैं भी जाऊँ, मैं भी फटाफट झाड़ू पोछा कर लूँ, पानी भर लूँ, पछे आपा साथ में घरे चला। ठीक है?
1: ठीक है भाभी साहब।
2: ठीक है तो मैं भी जाऊँ, फटाफट आपा काम करा।
6: अरे ये पैसा फीका पड़ा, कई करूँ अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पैसा है अब मैं किन्हें बताऊँ। ठीक है मैं सीता भाभी जी ने बोलाऊं।
7: अरे बर्तन धोवा वाली अंदर आ गई? ए ए तू अंदर क्यों आई, चल बाहर निकल। भाभी जी भाभी जी अटावो।
5: अरे तू अंदर क्यों आई, तने कियो तो ने बाहर बर्तन माज।
7: ए छोटी जात वाला विश्वास रे लायक कोनी हुए, चल चल बाहर निकल।
2: काई हो रोशनी?
1: भाभी सा जटे में बर्तन माज रही ही वटे यो पैसा पड़िया हा, और बाने कोई दिखियो नहीं हो, तो मैं आपने केवा का वास्ते मायने आ गई।
2: ये लो सेठानी जी पैसा, मैं गरीब हा, भले छोटी जात का हा, पर ईमानदार हा, माणी जाति की वजह से माने और माँ का बच्चा ने ठाका जेड़ा मोटा लोग गड़ी गड़ी जलील करो हो, और माँ का जेड़ा छोटी जात वाला सब कुछ सहन करन था को काम करा हो। चल रोशनी चल आपा।
5: ठीक है ठीक है ठीक है, आज तो काम हो गयो, काले टाइम पे आ जो।
0: तो देखा आपने, छोटी जात समझ करके इनसे यह सारा काम तो करवाते हैं, लेकिन बात बात पर इनका अपमान भी करते हैं, जाति को लेकर के ताने भी मारते हैं, और इतना ही नहीं बुरी नजर से भी देखते हैं इनको। तो आइए देखते हैं सीता और रोशनी किस तरह की बातें कर रही हैं और जब यह काम करके घर पर जाती है तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है यह भी देखते हैं।
1: भाभी सा ये अपने आपने ऊंची जाति वाला समझे है, पर एक आदमी आयो जो दारू पी रखी ही और मने घूर घूरन देख रहे हो, मैं तो दरब गी, वे सके ये पैसा भीका वे वे।
2: तो तू मने क्यों कानी भी
1: काई केती भाभी सा, ये लोग अपने छोटी जात का समझन कई का कई इल्जाम लगा देवे, अपना साथ में कई भी कर देवे, जाने के ये छोटी यात्रा है अपनो कई बिगाड़ को नहीं सके, इन वास्ते में चुप रही।
2: असान दरप पासु काम को नहीं चाले, अपनी गलती होवे तो दरपनो, बाकी सुनबा की कोई जरूरत को नहीं, अपनो भी तो आत्मा सम्मान होवे।
1: बात करता करता घर आ गयो, कई ठा नहीं पड़ी, पर यो कई भाभी मारा घर रा बाने अतरी भीड़ क्यों वेरी है, अतरा लोग क्यों इकट्ठा हुआ है।
8: रोशनी तारो धनी अतरो बीमार है तो विने छोड़ने तू कटेगी, बस थने तो घूमबा फिरवारो शौक है।
2: यो कई बोल रहे काकी जी आप, या तो मारा साथ में काम करवा आई, काम नहीं करी तो बच्चा ने खिलाई कई, इको को धनी तो शराब में डूबियो रेवे तो या भी घर में बैठी रही।
8: हाँ ठीक है बड़ी आई काम करने, तुन आरो धनी यानी दुनिया में कौन नहीं रहे हो, पांच लोग काम आरे निपटानो है।
2: ठीक है काकी जी, फिर रोशनी ने लाइन मायने जाओ, मैं मारा घर वाला ने बुलाइन लाऊ।
3: अरे सीता काई होयो, अतरी घबरायोड़ी काहे लाग रही है।
2: जल्दी चालो थे, रोशनी रा घर वाला रो देहांत हो गयो और लोग भी ने ताना दे देन परेशान कर रहा है।
3: अरे लोग क्यों ताना मार रहा है रोशनी ने, वो तो कई कमा तो भी कोनी, ऊपर से शराब पीन रोशनी रा सारा पैसा ले जातो। चल सीता जल्दी चल।
2: अरे थे सब यू काई कर रहा है रोशनी रा साथ में, चूड़िया क्यों उतार रहा, अरे ये तो बाल कटवारी तैयारी कर रहा, अरे काला कपड़ा क्यों पहना रहा, चलो हटो हटो।
8: तो काई करा, इको श्रृंगार करा कहीं, अबे इन्हें कीड़ा दिखानो है, इको पति तो गयो भगवान रे अठे, अने अत्री तो ठा वेणी जोजे के पति गुजरिया बाद महिला ने कैन रहनो जोजे, अबे आ सवा महीना तक गर्ती बारे नहीं जा सके, कोई भी शुभ कार्य भी ना कर सके, ने इको पति रो सारो कामकाज इन्हें ही करनो है।
2: कामकाज बोले तो
8: क्रिया कर्म सु लगान बारहवीं तेरहवीं रो सारो काम,
2: यो सब कही है आदमी का बदला में अगर या चली जाती तो यो सब करतो ही को आदमी।
8: पागल हो गई कर तू, वो तो आदमी है, वो तो चाहे तो दूसरी शादी कर सके, पर आदमी रह गया बाद औरत कोई भी ना कर सके, बस पूरा हो गयो वे को। थे सुनियो को नहीं, आपरा पड़ोस में बिरजू रे पत्नी रो देहांत हो गयो, तो बिरजू दो महीना बाद ही शादी कर ली थी, बच्चा ने कौन राखे,
2: यो खर्चो हो जो कौन उतारी,
8: वो तो या जाने, समाज में रहना हुए तो सब करनो पड़ी।
3: सीता तू वच्चे मत पड़, जो समाज को मामलो है।
2: अरे की करनी पड़ू, सगला जना जाने, रोशनी रे घर भी किराया रो है, या लोगारा घर का काम करन खुद को पेट भरे और खुद का बच्चा ने पाले, आदमी दूसरी शादी कर सके क्योंकि उनका बच्चा ने कौन पाले, तो रोशनी रा बच्चा ने कौन पाली, आदमी बाने जा सके, सारा प्रतिबंध महिला रा लिए है, औरत के यो को नहीं करनो, औरत के वो को नहीं करनो, समाज यो के ही फलानो वो के ही, आदमी ने पूरी छूट और औरत का साथ में ही सारा नियम लागू, एडो क्यों, आखिर समाज बनायो कौन, आपा ही ना, समाज की प्रथा समाज की प्रथा, एडी सोच ने बदलो और समाज में महिला व पुरुष रा बच्चे समानता लाओ। रोशनी यो काई भी नहीं करे, काम भी करी और बाने भी जाई, मैं देखू कौन है इन्हें मजबूर करवा वाला।
3: वाह सीता वो तो थारा साथ में हूँ।
0: तो देखा दोस्तों निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ किस तरह का अन्याय होता है, भल वो ईमानदार है फिर भी उसको शक की नजर से देखा जाता है, कुदृष्टि भी डालते हैं, जानते हैं कि अगर पकड़े भी गए तो यह किसको शिकायत करेगी, क्या कर लेगी हमारा, वगैरह वगैरह। अगर पति की मृत्यु भी हो जाती है तो सारा दोष पत्नी पर थोपा जाता है, जैसे पत्नी ने कोई गुनाह किया, पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति बाहर भी निकल सकता है, दूसरी शादी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो यह समाज के नियम बनाने वाले इंसान ही है। सीता ने बहुत अच्छा फैसला लिया और रोशनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, बस आवश्यकता है हिम्मत बनाए रखने की।
9: तो देखा दोस्तों निम्न वर्ग की महिलाएं किन हालातों से गुजर रही है, एक तो ऊंची जात वालों का प्रेशर, ऊपर से समाज की कुरूतियाँ, इससे महिलाएं टूट जाती हैं और स्वयं के प्रति ठोस डिसीजन नहीं ले पाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर सीता जैसी महिलाएं भी होती हैं, जो स्वयं को तो मजबूत बनाती ही है, साथ ही दूसरों की मदद भी करती है। जैसे रोशनी की, रोशनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जिससे कि उसका और उसके बच्चे के जीवन में बुरा प्रभाव पड़े। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हमारे आसपास भी इस तरह का माहौल तो नहीं है। अगर है तो सीता की तरह हमें भी मदद करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको आज का विषय है लिंग और अंतर्विभागीयता बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव या अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। ऐसे ही कार्यक्रम लेकर मिलते रहेंगे। अभी आपसे लेते हैं अनुमति और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर इस नाटक को बेहतर समझने के लिए सुनेंगे आप आरजे उषा के द्वारा एक कविता।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है। तो हमें बहुत खुशी मिलता है सबसे मिलते, तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते। तो आज हमें खुशी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआ में हम पहुंचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में। और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, बीरबर आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज़ से होगा, भले हमारा वीडियो नहीं लेकिन आवाज़ लगेगा। तुम्हारा हूँ नाम
1: कुमारी, फुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम फुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजा बहन।
0: जीजा बहन बहुत अच्छा।
1: इंद्रा बहन।
0: इंद्रा बहन कहाँ से तुम? कौन सा गाँव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के? सब बगेरी तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं ना, सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता टाइम पर।
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता है, यहाँ पर सास बैठे होंगे है ना, सास है क्या ये? हाँ, इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गनगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदाय के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुँचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और हमारा साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है, व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में, ये जो गीत गाए मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है, ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना, दोनों का लड़का वाले ना लड़की में,
1: लड़की में,
0: लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप, लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जे ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराए घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से पेयर घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर, जाएगी तुम?
1: नहीं
0: नहीं जाएगी क्योंकि इतना दुख दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराए घर, इसलिए लड़की को

0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है। इस तरह मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमको सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मान कर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर इधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस आस्था से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है, माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिलती है, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं, ये सब मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया, लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत,
1: मेला
0: जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है, तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं, कुछ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो जाते हैं आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने इस तस्प से, इसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोल भाई ये उनका देन है, भावना है, बोला हमारा माता है बहन का भी आवाज़ आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: सुमित चौहान।
0: सुमित चौहान, वाह कहाँ से आप आए?
1: यूपी।
0: यूपी से आए, वाह इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
1: काफी सालों से हो गए, 1.5 साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा लगता है। जी। बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते हैं।
1: शिव ही शक्ति है, हर जगह शिव ही शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से जितना मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव से जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही हैं, शिव सिर्फ एक ही हैं।
0: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वर विश्वविद्यालय का जो बगर स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, जैसे अपना इंट्रोडक्शन में बताया। और जो बगर में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता है 4-5 एकड़ का जमीन है।
1: हाँ, कम से कम
0: यहाँ से पानी, यहाँ पूरा मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
1: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है इसलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता, पवित्रता और हरा भरा मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब ही लोग सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई देखो हर जगह जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
0: यहाँ पर हम देखे पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल हर सीजन में फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
1: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब उलाब के पौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
0: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
1: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया वो चूहते थे,
0: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
1: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, नहीं अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले का मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए आराम से, मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
0: जी जी,
1: जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
0: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
1: ये मेरी मम्मी माता श्री।
0: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
1: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप है और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थी उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
0: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा, श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो,
1: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती हैं। देखो माँ का प्यार माँ ही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माँ ही होती है,
0: इसमें माँ का अवदान को कभी भूलने पे। एक तो घर में जैसे लोग की माँ है, ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता, तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
1: पिता तुम्हें पिता ये है वो सब, मतलब
0: परमात्मा का कृपा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्योंकि जब इस तरह आकाशवाणी में आते हैं बा टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन चलो हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज़ को भी दुनिया सुन रहे हैं, क्यों हम क्या कहना चाहते हैं, चाहे गीत का माध्यम से हो। जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं, माता पिता का, क्योंकि उनका देन है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए, हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा। और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं, वो देते रहते हैं। तो प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
1: पेड़ पौधा देखो सबको लगाना चाहिए। पेड़ पौधे से क्या है, जो हमारा ये वृक्ष देख रहे होंगे आप, आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी, कितना सारे
0: 6 फुट 7 फुट है।
1: हाँ, अब देखो कितने फल लगे हैं, अब यहाँ जो इतने पौधे लगे इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं आप। कल तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से, अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर। अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा, कूलर की हवा, पंखे की हवा, बस यही है। अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसे चलता है बस चलने दो,
0: सभी का सोच ऐसे होने से चलने दो भाई, हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
1: साथ वैसा सबका विकास
0: ऐसे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा जो आने वाला पीढ़ी को उनके लिए भी तो रखना चाहिए ना। हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपना लालच का चलते ग्रीडी होकर हम ले लेंगे, तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा,
1: ये जब
2: बारिश भी नहीं होगा टाइम
1: कुछ पर? टाइम पर ना बारिश होगी ना कुछ होगा। अभी देखा होंगे कितनी अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई, ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया, प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती। अगर जब बारिश नहीं होगी, जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी। पर यही है कि अब मैं यही कहूँगा कि ठीक है जो भी है
0: ठीक है, इतना नाराज से आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया। और फल फ्रूट्स
1: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं, और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान और ये वो हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा का मतलब गौ माता की भी, अपने माता पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब आप अपने से बड़ों की इज्जत करो। आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया, वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है अब।
0: इसका कारण वजह क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, ये तो खराब है ना,
1: ये तो खराब है। बस वो क्या समझाए, यही तो है ना कि मतलब जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले हमें अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से अच्छा दे रहे हैं, जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा,
0: जैसे संग ऐसे रंग,
1: जैसे संग वैसे रंग
0: जैसे पानी
1: जैसा देश वैसा भेष,
0: जैसे पानी वैसे पानी,
1: वैसे पानी
0: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या
1: निकलेगा। आजकल तो इतने शराब, इतने स्टूडेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सब, ये शराब
0: सब तो हो रहा है, इसलिए कला क्लास का अच्छा दुनिया लाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे। इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा। तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा, और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें, इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे। तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने कहेंगे, माताएं बोलते वंश मोर, हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे, माताओं को भी लेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं, हमें खुशी है आज बड़ों का साथ छोटे भी काम नहीं है, हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो क्या नाम है?
4: फुली कुमारी।
3: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
4: 11वीं में।
3: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं और बाद में। तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
4: पापा मम्मी बहने भाई।
3: कितना भाई कितना बहन?
4: 7 बहने 1 भाई।
3: बापरे 7, हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है। और शक्ति सेना का पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
4: हाँ।
3: अरे वाह, पैसा कहाँ से आते हैं इतना बहन को पैसा? पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते?
4: काम करते पाइपलाइन का।
3: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ?
4: सोनिया।
3: सोनिया कौन सा क्लास हो?
4: 7वीं
3: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
4: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
3: हाँ चंडेला, सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का, बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गाँव बताओ?
4: तेलपुर, अम्बावीरी, गिरवर, गिरवर बाट और चनार।
3: अम्बावीरी?
4: अम्बावीरी बोला था।
3: अरे वाह। और तेलपुर फली
4: बोल दिया।
3: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम जानते हैं?
4: नहीं मैडम आए।
3: अच्छा और एक छोटी सी कन्या है, हेलो क्या नाम है?
5: सिरमी।
3: हाँ कौन सा क्लास?
5: 7वीं।
3: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
5: कपड़े और खाने का।
3: वाह बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे?

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ऐसे एक को देखकर एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, भाग लेते और अपना बात को रखते। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कई बार। अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा ज़रूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है। खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे।
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छे हैं सरोज जी। वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है तो हम आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
0: गाना नहीं छोड़ा।
1: हाँ।
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। हाँ। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई वहाँ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
0: अच्छा।
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिले में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई। लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया,
0: लड़कियों को नहीं,
1: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
0: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
1: हाँ, परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं। खेत का भी करते थे, जैसे जमींदार है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की खेती करते थे, काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
0: बाहर नहीं जाना,
1: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहने हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो, गाँव में तो होती है रूढ़ीवादी समाज होता, तो वो बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से बाप फिर हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
0: आपके माता पिता का भी मन था?
1: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का, वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
0: समाज? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
1: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया।
0: स्वीकार कर लिया?
1: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार कर।
0: उनकी तो भावना भी थी और
1: बहुत भावना थी दीदी, उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तने कहीं भेज दूं, उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते,
0: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे,
1: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे, कहते थे वे तो गाड़ी चला स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो भाई थोड़ा सा छिया

0: का बहुत प्यार प्रेम बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी। दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
1: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं,
0: हाँ ये
1: रखा,
0: चीज मैंने दीदी अकेले में, मैं
1: हिम्मत
0: जैसे
1: रखी
0: रसोई
1: आपने।
0: में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी,
1: बिल्कुल।
0: ये तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोक क्या नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ने नहीं
1: नहीं,
0: पाई।
1: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, तो
0: हाँ
1: उन कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी
0: हाँ
1: हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोजी, मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
0: ठीक है दीदी,
1: जी
0: ओम शांति।

0: ओसार।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोजी की आवाज में। सरोजी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
0: हाँ दीदी,
1: है ना। क्या क्या गीत है ये, क्या आपने सोच के से बनाया, क्या मन में आया आपके?
0: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से।
1: अच्छा,
0: तो ये गुनगुनाते गुनाते ये गीत बन गया।
1: क्या बात है।
0: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है।
1: सही बात है, शब्दों से संगीत,
0: शब्दों से संगीत बनता है
1: और भावना ईश्वर से।
0: ईश्वर के लिए मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वे शब्द निकले, उसका संगीत बन गया।
1: क्या बात है। अच्छा सरुचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
0: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब देखती हूँ, गा देती हूँ।
1: बचपन से भी आप ऐसे गाते थे?
0: हाँ, बचपन से ही। जैसे माँ है ना, दूध बिलोती थी ना पहले गांव में, दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोकगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो पहले आटा पीसती थी, तो मेरी माँ ऐसे करती थी तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब
1: गाना आ
0: शुरुआत
1: गया।
0: होगी। हाँ, मन आया मेरे को, मैं गाने लगी बस।
1: अच्छा, तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
0: जी
1: याद है?
0: जी
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको
0: हाँ जी
1: याद हो?
0: जी दीदी,
1: जरूर। हाँ जी,
0: मैं आपको एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।

0: जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
0: जी दीदी,
1: कभी जब
0: कभी
1: चुकाया
0: नहीं
1: नहीं
0: चुका,
1: जा
0: कोई नहीं चुका
1: सकता,
0: सकता।
1: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: दीदी मेरी माँ है ना,
1: हाँ
0: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी माँ ने कदे मतलब हाँ एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमकाया कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
1: हाँ
0: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे अपनी
1: माँ की सेवा।
0: माँ की सेवा।
1: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
0: जी
1: अलग
0: दी
1: अलग चीज़ों में। और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
0: जी
1: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया। और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
0: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना जिस टाइम भी घर पा होगा ना, या
1: बंद हो गया। हाँ
0: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता, वो सोएगा नहीं,
1: अच्छा
0: इतना वो सोए नहीं गा। देखो देखो मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
1: अपने घर में देखा
0: हाँ
1: आपने।
0: बहुत अच्छा
1: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
0: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। उसके लिए शब्द नहीं है,
1: छप नहीं है।
0: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
1: इच्छा ही
0: कि
1: नहीं
0: और
1: रहती
0: किसी की
1: है।
0: सेवा करें। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
1: महसूस किया आपने।
0: महसूस। हाँ मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना वो दो लगा, और ऐसी ही भाभी घर में आएगी, मतलब घर सवर गए, बहुत प्यार करती हर मतलब आने वाले से भी। कोई घर चला जाता है, मेहमान आते हैं, तो वो कभी ये नहीं देखती कि भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाभी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
1: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
0: हाँ,
1: परिवार
0: ऐसा
1: है
0: परिवार
1: ना,
0: नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: ऐसी भाभी नहीं मिल
0: मैं
1: रही।
0: सुनती हूँ गाँव में हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं,
1: अच्छा।
0: मतलब पूरा गांव में हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कह देना, एक जम्या, तो तने नो समझ ले दसा के बरोबर जान दिया ये,
1: अच्छा।
0: जो तेरी इतनी करता है।
1: एक 10 के बराबर है।
0: हाँ 1:10 के बराबर है।
1: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
0: हाँ
1: की, बुजुर्गों की सेवा से मिलती है,
0: दीदी, हमारे घर
1: किसी
0: में
1: और
0: ना
1: चीज से
0: मैं
1: नहीं मिल
0: आपको
1: सकती
0: एक छोटी
1: कभी।
0: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
1: अच्छा।
0: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा मैंने को मेरा भाई इतना बागवान, और इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
1: कोई
0: बताऊं
1: कमी
0: कि
1: नहीं।
0: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा, आज भगवान ने उस भाई की वजह से, भाभी की वजह से हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो गांव का एक राजा बनता है जब भाई, कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है, उसने कभी किसी की बद्दुआ नहीं ली,
1: मदद की ना उन्होंने
0: मदद की
1: सबके।
0: लोगों की। वो कभी नू नहीं देखता भी तेरे घर में, देखो मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तो सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से, मतलब मैं कहूँ ना जान जिगर, जो माँ दूध पिलाओ ना, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
1: इतना ही प्यार है।
0: हाँ मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
1: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
0: मेरा छोटा भाई है मेरे से।
1: कितना छोटा है?
0: मेरे से 5-6 साल छोटा। उस
1: 5-6 साल छोटे हैं।
0: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता है। ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा।
1: देखा नहीं आप?
0: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन,
1: मेरी बहन है।
0: अब जैसे मैं
1: आपको, उन्होंने दुआएं भी बहुत कमाई
0: तो मैं से आपको बोल दूं दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वो आपको भाई अच्छे से बोलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे, वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं,
1: बस आए हैं उतना ही।
0: वो ये कहते हैं है। कि हमारे ऊपर है ना जो मेहमान अपने घर आता है ना वो एहसान करता है, आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है। जो हमारे घर आते हैं ना रातें भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
1: इतना
0: नहीं
1: प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा,
0: ऐसा कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे।
1: अच्छा,
0: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था, लेकिन जब ज्यादा हो जाता था तो
1: सारा काम हो जाता है।
0: हाँ, बहुत। हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया भी इतने बच्चे हैं। हमें सारी बहनों के 11 बच्चे सब
1: सब आ जाते होंगे साथ,
0: तो उसके बहन भाई सब उसकी मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो 24 बच्चे रखने, तो क्या आज के टाइम में तो 2 बच्चे भी रखने में
1: बहुत काम होता है उसमें,
0: है ना। और मेरे बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ। अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले।
1: अच्छा,
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने।
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा।
0: वो छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह देना आए सागरी आ जा सो जा, उनका मैंने नींद ही नहीं आती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी।
1: हाँ।
0: दीदी उनका खाना मतलब भाभी है ना, 4-4 महीस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना।
0: हाँ, बड़े दिल वाले, फरोक दिल।
1: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
0: दीदी?
1: किसी को
0: मतलब
1: या आप गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने, मेरी माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोकगीत, कोई भजन जो हमारी श्रोताओं का आज आप सुना
0: है? जो मेरे से सुनती है वो।
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक है, मैं सुना रही हूँ। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
1: अच्छा,
0: ठीक है
1: जी।
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: रचदी।
1: क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे उस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी, जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं, अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई, अच्छी बुरी। लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई, तुम अपना वेस्ट ना करो समय, भाई भगवान की बातें करो, भगवान के भजन करो। तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधी करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधी है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान न रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा, क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ,
1: कि वो समय कहते हैं ना, जो समय की कीमत नहीं समझता फिर समय उसकी कीमत भी
0: दीदी। फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना, इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान दरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना, वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा। लोग

0: तो मैं किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं, भगवान मिलन के प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भी ज्योति क्या चीज है। वे तो भगवान का रूप है ना, है, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस, सब गाते हैं, मैं भी गाती,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था, हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें। अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें, भाई ये क्या शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरू जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ। तो ऐसे ही भी भगवान मुझे शक्ति दो, जैसे भी फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुस्करा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके, सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ, उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना। जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना। ऐसे वायु, जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो जैसे हवा है, हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्यदेव है, हे सूर्यदेव जैसे सुबह सूर्यदेव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्यदेव देखो कहीं भी आप है ना, तो जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सकता है ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो, शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना, उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना, तो उसमें फिर भगवान का स्मरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा,
1: जिस खुशी
0: दिन,
1: रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली है,
0: हाँ जो खाली है आज कुछ। कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली लगता रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा।
1: अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि, जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है?
0: हाँ दीदी,
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना, कभी अपने पास ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर, मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

नच गई है मनवाज सोनी मुरली की, हे फल छोड़े मन डाली, छोड़िए डलिया छोड़ी फल की। ऐसी

0: दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है,
0: संगीत साधना भी है। और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं। उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गाने नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी चार लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी, जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दीदी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडू भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास।

0: कह रहा था इसको मैं है ना भाई इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी, खाना बनवा लो उस पर कैसा ही भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना है,
0: भावना की समझ है उसको
1: उनको।
0: अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू हो गई है।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती, 5 साल में लग गई है।
1: बहुत छोटी सी अभी
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन होते ना उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार
0: कृष्णाय वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को
0: जो अब ये
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे, कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिवन

0: चुनरी। जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, भाई जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है, संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
0: आनंद आएगा,
1: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा।

0: संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखे,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या
0: कैसा,
1: लग रहा
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस
1: नहीं।
0: दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं। जहाँ दिमाग आता है फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ
0: संगीत के पीछे पागल हो जाओ। कहते हैं ना पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: बहुत लेजेंड्स हुए
0: है ना,
1: और वो तो स्वर कोकिला भारत,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, उस गायक तो थी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो है ना। अनुराधा, अनुराधा मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं,
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी,
1: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। 4 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो आज बाबा ने बताया कि तकदीर जगाने की तब्दीर क्या है, अर्थात पुरुषार्थ की विधि कौन सी है। तकदीर जगाने की विधि है आत्म अभिमानी बनना। बाबा कहते जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतनी तकदीर हमारी जगती जाएंगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चों को बाप का राइट हैंड बनना है, और राइट हैंड बनना अर्थात राइटियस कर्म करना। कभी भी कोई भी प्रकार के भाव स्वभाव में आकर के संस्कारों की टक्कर नहीं खानी है। बाबा ने आज बताया, क्रोध का भूत भी कोई कम नहीं है। क्रोध का भूत भी ऐसा है जो ईश्वर का सामना करने में भी देरी नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अटेंशन रखना है कि कभी कोई भाव स्वभाव में आकर के क्रोध के वशीभूत या कोई भी विकारों के वशीभूत नहीं होना है। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, विकारों पर जीत पाना। और जैसे ही विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं तो हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है। उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं। द्वैत मत अर्थात दो अलग अलग मत हो जाती है, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। सबसे पहले तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा स्मृति भी जागृत कराते हैं, साथ में श्रेष्ठ तकदीर की विधि भी बताते हैं कि बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं, हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं, सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तकदीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है। तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं।
तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, यह तो सबके लिए बहुत सहज है। यहाँ तो जवान हो बुजुर्ग हो, सबके लिए ये पढ़ाई बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, सामने कोई छोटा बच्चा बैठा होगा तो बाबा कहते ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति निंदा दुख सुख इन सब बातों को तुम समझ सकते हो, आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है, आत्मा तो एक रस ही होती है, आत्मा तो एक रस ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, विज्ञान कस्तूरी जैसी सौगात है, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं, आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको ये थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है, बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की, शिव बाबा गीता सर्मनाइजर है, ये स्टैंप सहज बन सकेगी। बाबा ने प्रेरणा दी बच्चों को, शिव बाबा की स्टैंप बनाओ, शिव बाबा गीता सर्मनाइजर है, यह स्टैम्प सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूं। बुढ़िया भी यह तो समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, उसने यह चित्र, हाँ कौन सा चित्र, ब्रह्मा बाबा का, तो शिव बाबा के पास आए हैं जो विचित्र है, जिसको अपना शरीर नहीं है, उसने इस चित्र यानी इस तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्पररी चित्र धारण किया है, पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांतिधाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, शांति के लिए पुरुषार्थ करते, बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले, इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है, तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। जीवन से जब तंग हो जाते तो कहते इसे तो मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं का रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं, कहाँ देंगे, नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते मैं संगम पर आता हूं, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूं, दोनों के बीच में आता हूं। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठी नहीं रह सकती,
बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर, अभी हम संगम युग पर है, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है, बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको दुख से छुड़ाए कहां ले जाता हूं, हरि के द्वार ले जाता हूं। ये ज्ञान की बात है, यहां बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई। हरि द्वार, कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है, पहले हरि द्वार आएगा, सतयुग को हरि द्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को

शालिग्राम तो अविनाशी है ही है, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं, शालिग्रामों को पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पति तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुप तू कर, सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। क्रिसमस ट्री में छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं कि कैसे परमधाम से इस संसार रूपी वृक्ष में अवतरित होते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष में अलग अलग शाखाएं हैं, वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर सब जाएंगे। जब ऊपर से सब आत्माएं नीचे आ जाती है, खाली हो जाता, फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता, इन चरम चक्षु से देखा नहीं जाता है। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा इतनी छोटी, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है, कौन सी बात, कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है, तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, पतित वहां जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर, जब एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो, श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। समझदार भी कैसे बनते हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं वही समझदार बनते हैं, वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, राइट हैंड है ना। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हर बात में राइटियस बनो, हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए, तो राइट हैंड

अर्थात जो राइटियस कर्म करने वाले और उसकी निशानी कि बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। मत और गत वा गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। बाबा कहते मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा वह ईश्वर जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं है। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूं। वह भी ड्रामा में नोंद है, उनको आप ही मिल जाता है। भक्ति का फल आप ही, जैसी भक्ति जिसकी वैसा फल उसको मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। बाबा कहते हैं भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते उनको वह फल देने वाला मैं ही हूं। भले किसी की भी भक्ति किया लेकिन फल देने वाला तो परमात्मा ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है कि कोई भी देवता फल नहीं दे सकता है, परमात्मा को ही देना है और उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। जैसा जिसका पुरुषार्थ उस अनुसार उसको फल मिल जाता है। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, मीठे मीठे बाबा को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनाना, यह है शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है। कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। बाबा कहे ये बेहद की नॉलेज तो बच्चों में जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए अर्थात बच्चों को आगे आना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है दिल्ली। कितनों के हाथ में गई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है। विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वेत मत बड़ा नुकसान करती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जहां दो मत हो गई तो बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं।
नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व न करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात ही नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता, फिर तो बाप कहते हैं, मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। अगर प्रेरणा से सिखलाना होता तो मैं आता ही क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे यहां तो पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात ही नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, वह तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है, यहां तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं। तो 3-3 इंजन मिली है तो पुरुषार्थ कितना फास्ट होना चाहिए। बाप कहते मैं तुमको पूज्य बनाता हूं, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा न हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है दो बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहां मनाते हैं, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी दो मते नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम यानी नियम वाले बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। संयम के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे वह कर्म करेंगे, वही संयम बन जाएगा, वही एक प्रकार का नियम बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। आज का स्लोगन है, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं
तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अच्छा ओम।